डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 7 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज का सनसेट होगा 5:28 पे, लेकिन बारिश के आसार आज बिल्कुल भी नहीं है। सो यस, एंजॉय द ट्यूजडे।

0: मेरी आवाज गूंजेगी।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: आ गया, आ गया, आ गया।
3: नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं हम रेडियो से। हम रेडियो बोले तो ऑफ कोर्स 104.2 एफएम के जरिए आप सुनते हैं, 87.7 भी है। अगर आप सिटी में घूम रहे हैं तो उससे भी ट्राई करिए, उससे भी आप हमें सुनिए। बढ़िया बॉलीवुड के सबसे बढ़िया गीत गुनगुनाने वाले और डांस करने वाले और एक महफिल सजाने वाले गाने हम यहाँ पे चलाते हैं। सो यस, आप रोवा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज उसके जरिए भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं। वहाँ पे भी आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। बट यस, अभी के लिए आप बने रहिए, मैं हूँ 3 बजे तक। बहुत सारी बातें करनी है, मैं फटाफट से कॉफ़ी बना लेता हूँ यार, क्योंकि लंच किया है मैंने। लंच नहीं, एक्चुअली ना ब्रेकफास्ट था, और ब्रेकफास्ट इतना हैवी था दैट आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग एनीथिंग राइट नाउ। सो व्हाई नॉट आई एक्चुअली हैव जस्ट अ कॉफ़ी। व्हाट यू थिंक गाइस, साथ में कुछ लेना चाहिए मुझे? मे बी डिपेंड्स, बट इफ यू थिंक आई शुड ट्राई समथिंग एल्स तो मुझे बताइए। बट यस, आप बने रहिए, कहीं मत जाइए। शुरुआत करते हैं आसमादी परी ज्योति नूरन की आवाज में। ये आप गाना एंजॉय करिए। पर यस, मैं आपके लिए और भी चटपटी खबर लेके आऊंगा। होम सिक रेमेडीज के लिए आप रेडी रहिएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजिएगा मुझे, मैं सुनता हूँ, मैं फाइंड आउट करके एंड देन आई विल गेट बैक टू यू विद द इन्फॉर्मेशन। बट आप रेडी रहिए होम सिक रेमेडीज के कुछ कॉन्टेंट के लिए।
1: बचाओ क्या?

0: वेलकम बैक। वेल ये जैसे गाना खत्म होता है उसके बाद तो डेफिनेटली एक सुपर हीरो का जन्म होता है, क्रिश, जिसका नाम है, इफ यू नो द फिल्म क्रिश, बहुत ही अमेजिंग फिल्म लगी मुझे, आज भी बहुत पसंद है। यू नो, अगर आज भी कहीं टीवी पे आ जाए या फिर कोई सोशल मीडिया हल्की सी क्लिप आ जाए तो आई डोंट स्किप इट एंड आई एक्चुअली लव इट, क्योंकि काफ़ी नॉस्टैल्जिक तो है ही और काफ़ी मेमोरीज भी है। आपको थोड़ा फनी साउंड करेगा या फिर हो सकता है आपको थोड़ा वियर्ड साउंड करूँगा मैं, कि मूवी जब ख़त्म हुई ना, मैं आई थिंक 9th standard में था, ये 9th या 10th standard में था मैं इंडिया में, एंड द टाइम व्हेन द फिल्म, मेरा कज़िन भी आया था, तो एकदम, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ना पॉकेट मनी मुझे उतनी ज़्यादा मिलती नहीं थी, तो आई यूज़ टू सेव मनी जहाँ जहाँ पे भी मुझे जितना भी होता था मुझे सेव करने को मिलता, जैसे कभी पापा ने दे दिया 10 रुपये 20 रुपये जो भी है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद जैसे कभी नानी के यहाँ गया, कभी दादी के यहाँ गया, तो वहाँ से भी पैसे वैसे मिलते रहते, तो मैं सेव किया करता था, मेरी ऐसी बुरी आदत नहीं थी। आई यूज़ टू कलेक्ट अ लॉट एंड देन यूज़ टू स्पेंड ऑन लाइक जैसे बाइंग माय छोटे मोटे जो क्लोथ्स होते हैं वो, कुछ खाने के जो मन हो गया तो मैं उससे करता था, बिकॉज पॉकेट मनी फिक्स नहीं थी। सो मेरा कज़िन आया था तब, हम मूवी देखने गए थे ये क्रिश, और वहाँ पे जब फिल्म ख़त्म हुई तो सचमुच मैं भाग के ऐसे ही आ रहा जैसे मुझ में पावर हो, सुपर पावर हो। इतना फनी, अब मेरे को इतना फनी साउंड, मतलब अब मैं सोच के इतना मेरे को हंसी आ रही कि यार मैं क्या करता था यार, लिटरली आई वाज डूइंग दैट। बट आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे कोई है जो सुपर हीरो देखने के बाद, कोई फिल्म देखने के बाद यू ऑल्सो हैव ट्राइड, फॉर एग्जांपल शक्तिमान के बहुत बड़े फ़ैन हैं लोग, और उस टाइम पे ऑफकोर्स डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने ट्राई तो किया होगा, बट यस, अगर आप उनमें से एक हैं, अगर आपने कभी ट्राई किया तो मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और शेयर करिए आपके थॉट्स। वैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो फिल्म मैं देखने गया था, यू वुड बी ईदर यू विल बी वेरी सरप्राइज, अगर आप बड़े शहर में हो से हो तो, अगर आप छोटे शहर से हो तो शायद आप सरप्राइज नहीं फील करोगे, बट यू नो हाउ मच द टिकट कॉस्टेड मी दैट टाइम, जब मैं 9-10 में, क्योंकि मैं अपनी पॉकेट मनी से, मैं और मेरा कज़िन गए थे 9-10 आई थिंक 13-14 साल के थे, और वो ऑब्वियसली फिल्म जो थी अलाउ कर देता हमें, और हम बाहर से इतना ₹50 का, जो कि आज की तारीख में आई थिंक समवेयर अराउंड लेस देन $1 है यहाँ का करेंसी एक्सचेंज करें तो, बट वो उससे मैंने खाने पीने भरपूर बैग भर के लेके गया था, क्योंकि उस टाइम पे ना बच्चों को चेक नहीं करते थे, बड़ों को चेक किया करते थे कि भाई तुम क्या लेके जा रहे हो, बट बच्चों को चेक नहीं करते थे, उसका एडवांटेज हमने लिया और हम बाहर से खाना खरीद के लेके गए थे अंदर। तो यू नो हाउ मच टिकट कॉस्टेड, ₹35, ₹35 ओनली, लाइक आई थिंक 60 सेंट्स आई वुड से यहाँ के हिसाब से, बट मैं बात कर रहा हूँ 20 जब ये क्रिश फिल्म आई थी, आई थिंक 2007 की थी ये। बट यहाँ पे कोई है जो लगता है हु वुड लव टू शेयर कि जब उन्होंने फिल्म देखी अपने पैसे से पहली बार तो कितने की पड़ी, कोई है यहाँ पे मुझे जो शेयर करना चाहे अपने नॉस्टैल्जिक यू नो मेमोरीज, 0800-004-866 इज द नंबर जहाँ पे आप मुझे कॉल करिए और शेयर करिए। एक का मैसेज आया मुझे, वो कह रहे हैं, आर्यन इनका नाम है, ही सेड दैट आई नेवर सीन एनी फिल्म इन इंडिया बट आई हैव सीन ओवर हियर एंड इट कॉस्टेड मी $12, और दैट इज़ गुड यार, आई मीन $12 का तो मुझे भी याद है, जब मैं पहली बार न्यूजीलैंड आया था, आई थिंक इट वॉज रीडिंग सिनेमा इन एन एम कागल, और वहाँ पर मैं पहली फिल्म देखने गया था, ऑफकोर्स वो पहली बार नहीं था, बट उसका भी $12 ही था, बट दैट इज़ स्टूडेंट डिस्काउंट की वजह से, आई थिंक वैसे शायद $15 ऐसा कुछ होगा। एक और मैसेज आया है, नॉट सुपर हीरो बट आई वॉज इन स्कूल एंड शिवा मूवी केम एंड आई केम बैक होम एंड टुक माई चेन कवर ऑफ माई साइकिल, और रे बाप रे। शिवा ये कौन सी फिल्म है? शिवाजी महाराज ऐसा कुछ, शिवाजी करके कुछ है शायद, रजनीकांत की, राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार ये तो बड़ा रिस्की काम किया आपने, तो चेन कवर ऑफ माई साइकिल, ओ नागार्जुन, राइट परफेक्ट। वेल गेस, अगर यहाँ पे कोई कॉल करना चाहे 0800-004-866 आप फ़ोन उठाइए और मुझे कॉल करिए और शेयर करिए अपनी कुछ नॉस्टैल्जिक मोमेंट, जो आप बचपन में जब फिल्म देखने गए होंगे तो वो कितने की पड़ी थी एंड क्या आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, आप शेयर कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी बात बताई है, बट यस 5599 से नंबर जहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हैं कि यू नो क्या कैसा एक्सपीरियंस। एक और मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि हेलो केतन, लवली लिसनिंग टू यू, एंड वेरी नाइस टॉपिक. सॉरी मेरे को बस ओपन करने दो, वो नीचे चला गया. ओके यप, नाइस टॉपिक. इट कॉस्टेड मी ओनली 2 rupees व्हेन आई वॉच फर्स्ट फिल्म, बट नॉट इन थिएटर. इट वॉज द बैकयार्ड ऑफ माई होम विलेज, होम विलेज. या ओ दैट इज सो कूल यार. मतलब आप कब की बात करें, 2 rupees. आई डोंट रिमेम्बर यार, मेरे पापा ने कभी बताया होगा शायद इतना इतना प्राइस हुई होगी, क्योंकि मेरे पापा कभी फॉन्ड नहीं थे यार फिल्म देखने के. एंड ही वॉज लाइक इवन ही वॉज नॉट इवन नॉट इन फेवर ऑफ मी गोइंग टू थिएटर एज वेल. पता नहीं, उनको लगता था शायद मैं बिगड़ जाऊंगा. ऐसी फिल्में आती थी बॉलीवुड में, तो शायद उनको लगता था कि पता नहीं क्या दिखा देंगे और मैं बिगड़ जाऊंगा. बट यू नो बॉयज आर बॉयज, लाइक यू नो, मैं जो जिस चीज के लिए रोका जाता है वही हम करते हैं. आज लगता है कि क्यों करते थे, बट वी हैड अ फन यार, वी हैड अ फन. बट यस, एक कॉल आ रहा है, कॉल उठा लेते हैं. There you go. Hello. Hello. Hello. देवी प्रसाद घर पे है? अब फोन ही रख दिया यार. कुछ बोला ही नहीं. नाराज हो गए क्या? अरे भाई मेरे को नाम नहीं पता था इसलिए मैंने देवी प्रसाद बोला. एनीवेज कॉल करिएगा. अब लग रहा है अगर कॉल आएगा आपका शायद तो ऑफ एयर नहीं आ जाए. वापस आ गया है. लेट्स पिक इट अप. हेलो.
1: हेलो.
0: हाय, किससे बात हो रही है?
1: दिस इज अर्शदीप. हाउ आर यू?
0: गुड गुड. हाउ आर यू अर्शदीप?
1: वेरी गुड. मैं हमेशा लिसन करती हूँ पर फोन करने का मुझे मौका नहीं मिलता, और आज मुझे मौका मिला तो मैंने बोला क्विकली गिव यू अ कॉल. वेरी गुड टॉपिक. आपने क्रिश देखा था? मैंने कोई मिल गया देखा था न्यूजीलैंड में, तभी आई थिंक $10 या $12 का टिकट होगा. एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक आई वांट द स्कूटर.
0: स्कूटर? अच्छा वो वाला. ओह नाइस.
1: जो बच्चियों के वो बात स्कूटर होता है ना, हाँ, तो अभी हाँ. मैं उसी पे स्कूल जाऊंगी.
0: अरे तो, क्या बात है यार, मतलब आप तो काफी टाइम हो गया यहाँ पे.
1: हाँ तो मुझे लगा कि मेरे पास स्कूटर होगा कहीं लगे ना, देन वी लुकिंग कि कहीं एलियन आ जाए, कितना मजा हो वो भी हमारा.
0: यार न्यूजीलैंड में आई डोंट थिंक एलियन कभी आएंगे यार. न्यूजीलैंड में मेरे को नहीं लगता एलियन, बहुत दूर पड़ता है. उनको बोले कि यार ये यहाँ खूबसूरती देखनी है तो आ जाओ. ऐसे
1: फनी आर यू से दैट. अभी मैं नेटफ्लिक्स पे वो देख रही हूँ रेजिडेंट एलियन, उसमें है कि कैसे एक एलियन ह्यूमन बन के यहाँ पर रह रहा होता है.
0: ओह गुड गुड टॉपिक है. मैं एक बार देखता हूँ उसका ट्रेलर, देखता हूँ मैं कैसे. क्या नाम बताया मूवी का?
1: उसका सीरीज है रेजिडेंट एलियन.
0: रेजिडेंट एलियन. ओके ओके. डू यू रिकमेंड?
1: और आजकल मुझे एक गाना बहुत पसंद आ रहा है, सेफार 2.
0: अरे थैंक यू दिल बनाने के लिए मेरा. बट यस आप बोल दीजिए यहाँ पे यार, जो भी लिसनर है वो भी सुन लेंगे जाके.
1: मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज प्ले करें आप अभी शो पे मेरी रिक्वेस्ट पे.
0: मैं थोड़ा सा चला देता हूँ, बिल्कुल चला देता हूँ. निकी और पूछ पूछ ये तो इसी मौके के लिए तो मैं वेट करता हूँ.
1: नहीं नहीं, दैट वाज रियली गुड. आई वाज लाइक ओके, अभी तो मैं उस पे डांस रील बना के अपने पेज पे डालूंगी, देन आई टैग यू. बट इट्स रियली कूल.
0: दैट विल बी रियली रियली ग्रेट.
1: यार जान, अभी आप इंटरनेशनल हो जाओगे तो फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ ना कि हाँ मैं भी फोन करके केतन से बात करती जब आपको ऐसे अवार्ड्स वार्ड मिलेंगे, तो हम थोड़ा ऐसे खुद क्लेम कर लें कि न्यूजीलैंड से गए थे.
0: कॉपीराइट पहले ही है. नाइस नाइस. बट पता नहीं यार, ये तो बहुत लंबा सफर है. एनीवेज मैं पूरा तो गाना नहीं चला पाऊंगा, बट यस हियर इज सम ग्लिम्प ऑफ माय सॉन्ग फॉर यू हर्षदीप.
1: थैंक

Welcome back. Let's hear what the podcast has to say. हम काफी मेहनत करते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के पॉडकास्ट हम लेके आते हैं. सबसे पहले पॉडकास्ट से याद दिला देता हूँ दैट आप रोवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज रोवा ऐप के जरिए ही आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं. ऑनेस्टली यू नो, इतने सारे कंटेंट हम लेके आते हैं. वहाँ पे भी एक रील का सेक्शन है जहाँ पे हम जो भी रील्स डालते हैं, जस्ट इन केस अगर आप मिस आउट करो हमारे इसमें पेज पे, इफ़ यू डोंट वांट टू और इफ़ यू डोंट फॉलो, आप रोवा ऐप के जरिए, अगर आपके पास ऐप ऑलरेडी है तो आप डेफिनेटली हमें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी. दैट मीन्स अगर आप न्यूजीलैंड से बाहर भी घूमने जा रहे हो तो भी आप हमें सुन सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. बट यस, लेट्स टॉक अबाउट कुछ कंटेंट जो हमने लेटेस्ट डाला है. अनफिल्टर्ड में इस हफ्ते मिल रही है एक शनील लाल से, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और यंग न्यूजीलैंडर्स ऑफ द ईयर 2023. क्या बात है. कन्वर्सेशन में बात होगी LGBTQ+ राइट्स, रेसिज्म, रिप्रेजेंटेशंस, कन्वर्सेशन थेरेपी बैन, ट्रांसजेंडर इश्यूज और इक्वालिटी पर एक ऑनेस्ट और इनसाइट डिस्कशन को मिस नहीं करना चाहिए आपको. फुल ऑडियो के लिए आप हमें बस ड्राइव लिखे और टेक्स्ट भेज दीजिए 5599 पे. ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए ऑफ कोर्स आप हमें BF लिख के 5599 पे भेज दीजिए, ताकि विजय एंड पूजा की जो बिट्स एंड कन्वर्सेशन है वो आपको डेफिनेटली हंसाएगी. सफाई 2.0 थोड़ी देर पहले बात हुई थी, केतन कुमावत यानी कि मैं एक नया गाना लेके आ चुका हूं. सफाई 2.0 यहां पे अवेलेबल है. सो यस, एड शेरन और अरिजीत सिंह के हिट सुपर सफायर के हिंदी रीमेक है, जो हिंदी पंजाबी रीमेक है, जो ऑकलैंड में और काफ़ी न्यूजीलैंड के जो नॉर्थ आइलैंड के जगह जगह हमने ट्रैवल किया है और काफ़ी एक रोड ट्रिप, बढ़िया सी खूबसूरत रोड ट्रिप भी हमने करी है. तो यस, उसका बहुत ही बढ़िया फीडबैक भी मिल रहा है. सो डेफिनेटली आपको वो सुनना चाहिए. जस्ट सर्च सफायर केतन ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, यू विल गेट द वीडियो. एंड यस, एक और चीज़, हमारे बाकी शोज भी जरूर सुनिए आप अपने फेवरेट अनाउंसर्स के साथ. दिन भर एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और मस्ती का फुल डोज मिलता रहेगा आपको. सो यस, स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद हम 104.2 FM के जरिए.

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम ड्राइविंग यू होम
4: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
7: वो भी आई लव यू वाला।
6: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसी ने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
7: अच्छा आप तो
6: आए आए बताओगे।
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
8: G'day Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
0: Lunchbox with Keithan.
9: Aisa bajaunga na, ki tere kaano mein roz meri awaaz goonjegi. Hum.
10: Chutney Shots.
11: स्वागत करते हैं लंच बॉक्स शो में फिर से। फटाफट से न्यूज़ पढ़ लेते हैं यहाँ पे चटनी शॉट्स के सेगमेंट में। एक फ्लाइट प्लेन क्रैश लैंडिंग के बाद उल्टा होकर रनवे के पास रुक गया। अच्छी बात यह है कि पायलट और पैसेंजर दोनों सेफली बाहर निकल गए हैं, ये कैंटबरी से खबर है। अथॉरिटीज अब इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वैसे ऑकलैंड से ट्रैफिक अपडेट, सदर्न मोटरवे पर तीन गाड़ियों की टक्कर के बाद काफ़ी देर तक ट्रैफिक स्लो रहा, लेकिन अब रोड दोबारा ओपन हो चुकी है और ट्रैफिक नॉर्मल फ्लो में आ गया है। इकोनॉमी की बात करें तो न्यूजीलैंड की एनुअल इन्फ्लेशन 4.1% तक पहुंच गई है, जो दो साल से भी ज़्यादा टाइम का हाईएस्ट लेवल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल प्राइसेस में तेजी इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। इंटरनेशनल अपडेट्स में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडियन गुड्स पर 50% टैरिफ अनाउंस किया है, और इस डिसीजन से दोनों देशों के ट्रेड रिलेशन पर काफी असर पड़ सकता है। अलास्का से एक अनयूजुअल स्टोरी भी सामने आई है। वहां अथॉरिटीज के पायलट के प्लेन सिर्फ 6 पैक बियर कैरी करने से एलिजिट रूल ब्रीच को लेकर सीज करना चाहते हैं, और ये केस काफी डिस्कशन में है। स्पोर्ट्स अपडेट में ऑकलैंड एफसी का एक और की प्लेयर क्लब छोड़ चुका है, जबकि टीम अभी भी नए हेड कोच की तलाश में है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप से फाइनल के बाद अर्जेंटीना के प्लेयर्स और स्पेन की सेलिब्रेशन के दौरान हुई कन्फ्रंटेशन की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। एंटरटेनमेंट से क्रिस्टोफर नोलान ने अपकमिंग फिल्म द ओडेसी को लेकर स्कॉलर्स ने उनकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर सवाल उठाया है, और ऑस्कर विनिंग एक्टर डैनियल डे लेविस, जो माय लेफ्ट फुट के लिए मशहूर हैं, उनका 81 ईयर्स में डेथ हो गई है, ये खबर आई है फिल्म दुनिया से। और आखिर में एक पॉजिटिव अपडेट, माओरी वर्ड्स जो है वो आरोहा को एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप ने दुनिया का सबसे खूबसूरत वर्ड डिक्लेयर कर दिया है, जिससे न्यूजीलैंड की माओरी लैंग्वेज को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है।
0: दिल से दिल तक
4: ब्रॉट टू यू बाय NZPMI। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज थ्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट NZPMI.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर क्या हाल, 14 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 5 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज का सनसेट होगा 5:28 पे। वैसे दिन बहुत ही खूबसूरत है, शायद आपको बादल दिख जाए, बट सनी रहने वाला है ओवरऑल।

क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। बने रहिए अंटिल थ्री। मैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया हूँ, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, तो बस आप एंजॉय करें। शुरुआत करेंगे कैसे बनेगी सरकार। हे भगवान, एक तो सरकार वर्ड पता नहीं क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, और अभी वैसे भी हीट टॉपिक हो रखा है सरकार अलग अलग कंट्रीज में, आई गेस। बट यस, एंजॉय करो ये गाना विद्या गोपाल डॉक्टर पल्लवी श्याम की तरफ से ये बनाया गया है, तो आप उसे एंजॉय करिए। और हम लेके आते हैं कुछ नई चटपटी खबर थोड़ी देर में। बट यस, इस आर में बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, बॉलीवुड से लेके देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपको खबर दूंगा। और प्लस आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में थोड़ी बात रह गई है, तो वो उसके बारे में बात होगी कि आज के दिन एक्चुअली क्या हुआ था। बचाओ क्या?

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। जल्दी से फोन उठाइए और मुझे लंच टाइम रेंट लाइन के लिए कंटेंट भेज दीजिए, एक मैसेज करिए और बताइए, शेयर करिए मेरे साथ कि कौन सी ऐसी चीज हुई है आपके साथ रिसेंटली जो आपको बहुत ही परेशान कर रही है या की है। यस, आप शेयर कर सकते हैं कोई भी इंसिडेंट जो ऐसा हुआ है वाइल यू नो ट्रैवलिंग एनीवेयर। आई नो अभी काफ़ी हीट टॉपिक हो रहा है आसपास रिगार्डिंग व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, बट आप उसके बारे में भी शेयर कर सकते हैं। काफ़ी मैं मैसेजेस देखता हूँ सोशल मीडिया पे दैट सम पीपल आर हैप्पी, सम पीपल आर नॉट हैप्पी। आप वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं 5599 पे। बट यस, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आप सब रेडी रहिए। 5599 इज द नंबर।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हाय एंड वेलकम टू द 80s। वी लव एसिड वॉश जींस एंड ओवरपावरिंग aftershave as much as the next guy. But we also have some out-of-date notions about HIV you don't want to keep. Fact is, HIV can't be passed on through everyday contact like shared food, hugging, or kissing. And with your modern-day treatment, people with HIV can stay well and have zero chance of passing it on to partners. Out of date on HIV? Get the facts at healthnz.govt.nz/HIV.
2: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
3: Please use your imagination for the following ad.
4: If I won Powerball, the first person I'd tell would be... and would surprise all our friends by...
3: Imagine winning $35 million this Wednesday. Play in store or online.
5: And phir Mrs. Singh se maine pucha, "Inna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho?" Boli, "Bas, mera focus hai."
6: "Achha,
5: batao, tuhanda focus. Sada kuch nahi."
6: Mrs. Singh.
7: Are pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne.
8: Modern classic chic style kitchens, Focus Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahu. Call 09281-3050 or visit focuskitchens.co.nz.
9: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
10: What if your next holiday wasn't just a holiday?
11: But the adventure everyone talks about.
10: Imagine chasing waterfalls.
11: Wandering lush rice terraces.
10: Catching unforgettable sunsets.
11: And relaxing at iconic beach clubs.
10: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk.
11: Discovering incredible temples.
10: Tasting world-famous street food.
11: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
12: Lunchbox with Ketan.
13: Mujhe pasand hai ladka.
12: Hum. Lunchtime rant line.
14: Welcome back. You are listening to Lunchbox. चलिए बात करते हैं उन messages की जो आपने मुझे भेजे हैं. एक मैसेज आया है, वो एक्चुअली टॉपिक दूसरा है, उसके बारे में बात होगी, लेकिन उससे पहले जो लंच टाइम रेंट लाइन के लिए जो मैसेज आए हैं वो आए हैं नेहा. नेहा हेयर from Takarini. Today's rant is about people who don't say thank you when you hold the door open for them. Wow, that is really interesting. That is very good topic to discuss. काफी देखा है यार अपन ने, like एक पता है उससे ज़्यादा irritating पता है क्या लगता है? जो door hold नहीं करता है. Actually पता है मैंने realize किया कि India में या फिर मतलब ये चीज़ नहीं मैंने नोटिस की है, आई मीन नोटिस की है लेकिन ये देखा है मैंने कि वहाँ पे लोग इतना नोटिस नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें. तो मुझे यहाँ के सीखने को मिला और मुझे लगता है कि यार ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, दैट न्यूजीलैंड में आने के बाद ये चीज़ आपने सीखी है दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर एज वेल. ये काफ़ी मैंने देखा है. मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ऑफकोर्स सब ऐसे होते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बट जो मैंने नोटिस किया है वो अपफ्रंट मैं आपको बता रहा हूँ दैट इंडिया में मैंने काफ़ी नोटिस किया कि you know they just either bang or obviously जानबूझ के नहीं but without realizing वो door को hold नहीं करते हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ की बहुत ही बढ़िया habit है. well बताइए कौन कितने लोग यहाँ पे agree करेंगे मेरे साथ, आप मुझे response कर सकते हैं 5599 पे. and yes so और ऐसा बहुत बार हुआ है, you know जब इंडिया जाता हूँ चाहे मेरी फैमिली हो या फिर मैं कहीं पर भी घूमने जा रहा हूँ, so literally you know फैमिली को तो मैंने थोड़ा सुधार लिया है कि मैं मॉम डैड बहन जो भी है ऐसे नहीं करते हैं. बट वहाँ की गुड थिंग पता क्या है, जो यंगस्टर हैं जेंजी हैं आई डोंट नो हाउ दे आर लर्निंग इट और वेयर दे आर लर्निंग फ्रॉम, बट उनको इतना सेंस है दैट ये डोर वाली जो छोटी मोटी चीजें होती है, सिविक सेंस जिसको बोलते हैं हम, वो काफी मैंने नोटिस किया कि उनमें थोड़ी है। अब पता नहीं, शायद एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बदल चुका है इंडिया में, वो तो मेरे को आइडिया नहीं है। बट और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स काफ़ी मेरे नीस हैं और नेफ्यू भी है, और उनके जो फ्रेंड्स हैं उन सब का मैं देखता हूँ कि ये सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ सो ग्रेट यार। एक और मैसेज आया राकेश भाई का हैंडरसन से, वो कहते हैं, वाई डू पीपल क्यू सो क्लोज बिहाइंड यू एट द सुपर मार्केट, गिव अस अ लिटिल स्पेस। इस पर तो मैं क्या जवाब दूँ, लाइक आई डोंट नो, मैंने तो कभी ऐसा हुआ नहीं, मैंने ऐसी चीज़ नोटिस नहीं करी। बट अगर यहाँ पे कोई है जो इसका जवाब देना चाहे, फील फ्री टू कॉल मी 0800-004-866 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं 5599 पे। वैसे थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था रिगार्डिंग, मैंने पूछा था कि बचपन की अगर कोई ऐसे नॉस्टैल्जिक कहानी हो जब आप फिल्म देखने गए हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आप काफ़ी इंस्पायर हुए, तो एक और मैसेज आया। उन्होंने अपना नाम तो लिखा है, बट उन्होंने लिखा है कि व्हेन आई यूज्ड टू वॉच फास्ट एंड फ्यूरियस आई वांटेड टू ड्राइव रियली रियली फास्ट। ब्रो दैट्स क्रेजी ब्रो, काफ़ी रिस्की भी हो सकता था। ग्लैड अगर आपने नहीं किया तो गुड, और अगर आपने ट्राई किया है तो होपफुली वो एक वीडियो गेम्स में ही हुआ हो, बिकॉज ये सारा तो रिस्की होता है, ये सब नहीं ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट जो मैंने भी किया था वो भी सर ट्राई नहीं करना चाहिए, भाग के रोड पे, बीच रोड पे, क्योंकि इंडिया में ट्रैफिक, आप छोटे से गांव में भी जाओगे उसका भी ट्रैफिक वुड बी मोर देन न्यूजीलैंड का ट्रैफिक। सो या थैंक यू
12: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। आज के दिन यानी कि 21 जुलाई 1925 टे हाही रातना को ऑफिशियली न्यूजीलैंड में एक चर्च के रूप में रजिस्टर किया गया था और इस मूवमेंट की शुरुआत ताहू पोतिकी वायरेमू रताना ने 1918 में की थी। ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था बल्कि माओरी कम्युनिटीज के लिए एक उम्मीद, एकता और उनके अधिकारों की आवाज भी बना। वैसे बाद में इस मूवमेंट ने न्यूजीलैंड की पॉलिटिक्स पर भी काफी असर डाला और आज भी रताना चर्च हजारों लोगों के लिए फेथ और गाइडेंस का एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है और हर साल रताना पा में होने वाले सेलिब्रेशन में देश के पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल होते हैं। सच अ ग्रेट गेस्चर टू स्टार्ट दिस एंड नाउ यू सी वेयर इट्स स्टैंडिंग। सो क्रूज टू द टीम एंड ऐसी ही दिलचस्प बातों के लिए आप बस कनेक्टेड रहिए। अभी थोड़ी देर में आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आने वाला हूँ यानी कि जो लेटेस्ट खबर में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन बॉडी जस्ट कांट वेन स्पोर्ट्स गेट टू हॉट टू प्ले। ये टॉपिक पे मैं बात करूँगा थोड़ी देर में, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में बस मैं लेके आऊँगा।

0: वाला सॉन्ग तू मेरी मैं तेरा, राहत फतेह अली खान और अल्तमाश की प्रोडक्शन में ये बना हुआ गाना बहुत ही बढ़िया है। शदाब फरीदी भी इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने भी काफी अच्छा योगदान दिया इस गाने में और काफी खूबसूरत गाना है। वैसे इस खूबसूरती से याद है कि खूबसूरत शो होने जा रहा है वन ऑफ द लेजेंड, जी हाँ, जिनका गाना भी चला है राहत फतेह अली खान, प्रेजेंटेड बाय JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Productions and Shehzada Production. ये आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अमेजिंग शो। 25th of July को होने वाला है द ट्रस्ट एरिना में, एक मैजिकल इवनिंग होने वाली है, बहुत ही बढ़िया कवाली, सोलफुल स्टरिंग, कुछ सूफी के गाने और एक से बढ़कर एक बॉलीवुड और अलग अलग देशों के गाने जहां पे इन्होंने अपनी आवाज दी है राहत फतेह अली खान जी ने, वो गाने आपको सुनने को मिलेगा। आई एम एक्चुअली वेरी वेरी कीन एंड वेरी वेरी ईगर टू लिसन टू वन शो जिसका नाम है सांसों की माला। बहुत अमेजिंग सा लग रहा है यार मुझे आजकल, तो ये हो रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को मतलब ऑन लूप में वो गाना चल रहा है। ऑफकोर्स इतना नहीं जितना मेरा सफायर चल रहा है, बट स्टिल यू नो आई एम लविंग दिस सॉन्ग, तो वो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे अगर गा लें तो बहुत ही बढ़िया। और एक मेरी वाइफ खुशबू को बहुत पसंद है आफरीन, आफरी, ये वाला गाना बहुत ही खूबसूरत है। बट एनीवेज आप टिकट्स खरीद लीजिए टाइम से, आपके पास बहुत ही लिटरली सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। dryTickets.com पर जाके आप टिकट खरीद लीजिए। अमेजिंग शो है जो होने वाला है ऑन दिस सैटरडे 25th ऑफ जुलाई द ट्रस्ट एरिना ऑकलैंड में। लंच बॉक्स विद केतन, हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, SIF Rova Par.
1: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
2: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
4: Join our tribe!
3: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
4: join our tribe!
5: Lunchbox with Ketan.
6: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
5: इसके पीछे
6: हम।
5: Lunch के मंच पे।
7: लंच के मंच पे स्वागत करते हैं। एक दिल से दिल तक की बातें भी होगी, लेकिन उससे पहले आपको बॉलीवुड की खबर बता देता हूं। जी हां, वेटरन एक्टर संजय मिश्रा, इफ यू डोंट नो, ही इज वेरी कॉमिक पर्सन। काफ़ी फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी की है, इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी सीरियस रोल भी किए हैं। अगर आपको नहीं पता, एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, और काफ़ी सालों से, आई थिंक समेर अराउंड 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको थिएटर में। अगर आपको याद दिला दूँ, अगर आपने ऑल द बेस्ट देखी है, या फिर यू नो धोंदू जस्ट चिल करके बोलते हैं, या फिर अगर गोलमाल अगर आपने देखी है, तो उसमें जो डायलॉग होता है, अरे तू ऐसे कैसा चल रहा है रे जो काफ़ी वेटरन एक्टर संजय मिश्रा, काफ़ी थिएटर आर्टिस्ट है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी। उन्होंने एक्चुअली अपना पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया है। काफ़ी खुशी मिलती है यार जो डिजर्विंग लोग जीतते हैं नेशनल अवार्ड। जी हाँ, वैसे उन्हें फिल्म बक्षक के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। और इस मौके पर संजय मिश्रा ने कहा है कि एक एक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी फैमिली, फिल्म मेकर्स और ऑडियंस का बहुत ही शुक्रिया भी अदा किया है, और कहा है कि ये अवार्ड उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और स्पेशल भी है। सच ए ग्रेट थिंग, राइट? मैंने जैसे कि बताया कि यू नो जैसे ही कुछ खबर आती है इस बारे में, तो डेफिनेटली यार हर कोई बहुत ही खुश होता है दैट इतने लोगों ने अवार्ड जीता है। वैसे जस्ट टू लेट यू नो, आपको याद पता हो, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, बेस्ट एक्टर का मिला है अमेजिंग क्या नाम है एक्ट्रेस का मिला है यामी गौतम को, अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। और उसके बाद कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है इस बार का। सो ऑब्वियसली काफ़ी लोग सरप्राइज भी हैं, लेकिन काफ़ी और लोग खुश भी हैं। काफ़ी मिक्स रिएक्शन आया। आपको क्या लगता है, इस बार का जो नेशनल अवार्ड मिला है बॉलीवुड में, इंडियन फिल्म्स में, नॉट जस्ट बॉलीवुड बट इंडियन फिल्म्स में, क्या लगता है आपको? वॉज दैट यू नो जस्टिफिकेबल, या फिर आपको लग रहा है कि उनसे ज़्यादा तो ये डिजर्विंग थे? आपके रिव्यू 5599 पे बता सकते हैं। बट यस, एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक लेटेस्ट खबर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बॉडी अपने आप को इफेक्टिवली कूल नहीं कर पाती। इससे हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक या फिर सीरियस हेल्थ रिस्क का खतरा बढ़ सकता है। यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसमें बॉडी जो टेम्परेचर है वो एकदम से ड्रॉप डाउन नहीं होती, और उस चक्कर में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ प्रोफेशनल एथलेट्स हे भगवान, क्या हो रहा है आज अंग्रेजी मेरे तो लग रहा है पता नहीं क्या खा गया एनीवेज, सिर्फ प्रोफेशनल एथलेट से ही नहीं, बाकी वीकेंड स्पोर्ट्स प्लेयर भी इससे काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं। यानी कि यू नो जैसे लॉन्ग हो गए, या फिर जो सिर्फ कभी कभी खेलते हैं, जैसे कि बताया कि वीकेंड पे ही खेलते हैं, उनके लिए भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है। इसी वजह से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को मैच टाइमिंग, हाइड्रेशन ब्रेक्स और प्लेयर सेफ्टी पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, और फ्यूचर में एक्सट्रीम हीट के चलते कुछ गेम्स रीशेड्यूल या कैंसिल भी करने पड़ सकते हैं। अभी मैंने देखा है काफ़ी स्पोर्ट्स प्लेयर जो साइक्लिस्ट होते हैं, जो आर्टिकल आया वहाँ पे एक फ़ोटो डाला है जिसमें साइक्लिस्ट जो है उन्होंने एक आइस पैक लगा रखा है, एक जैसे बार होती है उस तरह का पैक लगा रखा है उन्होंने अपने शरीर पे।

0: नमस्कार नमस्ते सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में। फिर से मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं लंच बॉक्स शो से, ऑफ कोर्स हम 104.2 एफएम या फिर रो ऐप के जरिए। वैसे आप बस बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस सुनते रहिए। और अभी और भी कंटेंट में लेके आने वाला हूँ, इस बार भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक अमेजिंग सा वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेशन होने जा रहा है इस साल, जिसके अपडेट मैं थोड़ी देर में दूंगा कि क्या है, कैसे आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे और भी खबरें लेके आया हूँ मैं, बट शुरुआत करते हैं इस गाने से जिसका नाम है दुनिया फर्जी, निकिता गांधी और हंसिका पारिक की आवाज़ में।
1: बचाओ क्या

0: चलिए अभी लेटेस्ट खबर पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। अगर आपने अभी वुफिंगटन कासल का नाम सुना है तो उससे जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है और वो ये है कि वेलिंगटन के पास मौजूद एक लग्जरी प्रॉपर्टी जो कभी डॉग्स के लिए एक प्रीमियम रिट्रीट हुआ करती थी अभी भी नहीं बिक पाई है। मॉर्टगेज ऑक्शन में इसके लिए कोई बिड नहीं आई और सेल की डेडलाइन भी निकल चुकी है। अब लैंडर्स प्राइवेट ऑफर्स का इंतजार कर रहे हैं। वुफिंगटन कासल काफ़ी सालों से हेडलाइंस में रहा है और 2019 में यहाँ पुलिस रेड भी हुई थी जिसके बाद इस प्रॉपर्टी और इसके ओनर्स को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी सामने आई थी। इसी अनयूजुअल कहानी की वजह से इस पर एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। फिलहाल इस आइकॉनिक कासल का फ्यूचर क्या होगा ये तो पता नहीं, बट ये अभी बहुत ही जल्द हो जाए क्लियर तो उसी की अपेक्षा कर रहे हैं ओनर। बट यू नेवर नो, क्या कोई नया बायर इसे खरीदेगा या ये प्रॉपर्टी फिर किसी और वजह से हेडलाइन में आएगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आप जाइए, पता करिए और खरीद लीजिए इफ यू कैन।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
5: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
6: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
7: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है. हाँ,
9: अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस. फोकस साडा कुछ नहीं.
9: मिसेस सिंह.
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
11: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
12: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम. और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: चलिए बात करते हैं एक और अमेजिंग जो कि रिलेटेड है न्यूज। फीफा वर्ल्ड कप अभी स्पेन जीत चुकी है और काफी लोग खुश हैं, काफी लोग नाराज भी हैं। नाराज इन द सेंस नॉट लिटरली नाराज बट डिसअपॉइंट है, थोड़े डिसअपॉइंटमेंट है उनमें क्योंकि ऑब्वियसली वो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे होंगे, बट काफी लोग खुश भी हैं और काफी मिक्स रिएक्शन आ रहा है कि भाई डिजर्विंग टीम मिली है इन टर्म्स ऑफ यू नो स्पोर्ट्समैनशिप के लेके। अब इतना पता मतलब ऑनेस्टली बताना तो इसको इसके लिए ये सारी जानकारी के लिए तो बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए जो काफ़ी सालों से फुटबॉल को फॉलो कर रहा है। वैसे यस, एक और नई खबर पता है क्या, न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी अच्छी है। वो है टीवीएनजेड ने ऑफिशियली 2030 फीफा वर्ल्ड कप के एक्सक्लूसिव जो है ब्रॉडकास्टिंग राइट सिक्योर कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड के फैंस 2030 वर्ल्ड कप के एक्शन टीवीएनजेड के प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। और ये अनाउंसमेंट तब आई जब 2026 फीफा वर्ल्ड कप ने टीवीएनजेड के सारे स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। टूर्नामेंट के दौरान 20 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स रिकॉर्ड की गई और ऑल वाइड्स के मैचेस ने भी लाखों न्यूजीलैंडर्स को स्क्रीन के सामने बिठा दिया था। फाइनल मैच भी टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा देखे गए गेम्स में से एक रहा है। और टीवीएनजेड ने यह कहा है कि लाइव स्पोर्ट्स लोगों को एक साथ लाने की ताकत रखता है और इसी सक्सेस को देखते हुए उन्होंने 2030 वर्ल्ड कप के राइट्स भी सिक्योर कर लिए हैं। तो फुटबॉल लवर्स अभी से काउंटडाउन शुरू कर दीजिए क्योंकि 2030 फीफा वर्ल्ड कप भी न्यूजीलैंड में टीवीएनजेड के साथ देखने को मिलेगा।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेल वफाने बेवफाई अरिजीत सिंह नीति मोहन। वैसे आज एक खबर आई है अभी लेटेस्ट, बिकॉज अरिजीत सिंह का गाना चला था तो अरिजीत सिंह का एक गाना आया है। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इट हैज़ बिन रिकॉर्डेड बिफोर हिज रिटायरमेंट, लाइक जो प्लेबैक बॉलीवुड प्लेबैक के लिए रिटायरमेंट जो उन्होंने घोषित किया था ये उसके पहले रिकॉर्ड हुआ है बाद में, बट वॉट पीपल आर क्लेमिंग इज दिस इज एक्चुअली ही जस्ट केम आफ्टर द टू मच ऑफ रिक्वेस्ट। ऑफकोर्स यार स्पोर्ट्स तो है नहीं कि एक बार रिटायरमेंट ले लिया तो आप वापस नहीं आ सकते, डेफिनेटली यू कैन कम यार, ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस थी और ये कोई सरकार की तरफ से ऐसा कुछ था नहीं, तो यस फिर सरकार मेरे शब्दों में। एनीवेज तो ये चीज़ जो है वो आए हैं, और आवारापन 2 जो इमरान हाशमी की नई फिल्म आ रही है उसका गाना एक लॉन्च होने वाला है आज के दिन। आवारापन क्या लगता है कैसा होगा? मैं तो डेफिनेटली यार मुझे पता है कि ये गाना बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो यस आप फॉलो कर सकते हैं उन्हें, या फिर इमरान हाशमी को भी फॉलो कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगर हम यहाँ पे प्ले कर सकें जैसे लॉन्चिंग होगी उसके बाद, उसके लिए बस आप कनेक्टेड रहिए और सुनते रहिए हमारा हम रेडियो। वेल यस गरबा नाइट विद राज गढ़वी होने जा रहा है ऑकलैंड में, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कल्चरल सेलिब्रेशन। आप गरबा विद द सेंसेशनल राज गढ़वी लाइव देखने आ जाइए 1st of August महात्मा गांधी सेंटर ऑकलैंड में। वैसे eventstickets.co.nz पे जाके आप टिकट खरीद सकते हैं। मेक श्योर कि एस दोनों में है, इवेंट्स में भी है और टिकट्स में भी है। सो यस आप वो ले सकते हैं टिकट वहां से, और अगर आपको अगर कोई दिक्कत होती तो आप सुप्रीत शाह को कॉल भी कर सकते हैं 0224394736 पे। एंड यस हमारे लिसनर के लिए बहुत ही खास बात ये है दैट वी ऑलवेज थिंक अबाउट यू इन whatever competitions, whatever talk we do. So yes, आपके पास बेस्ट बात पता है क्या, बेस्ट चीज़ ये है कि आप जीत सकते हैं डबल पास। और वो कैसे जीत सकते हैं, आपको क्या कर लिखना है, आपको आर जी राज गढ़वी का इनिशियल है आर जी, आर बोले तो राज, जी बोले तो गढ़वी, ये आप लिखिए अपना नाम लिखिए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल कर सकूँ आप सभी को। और जो भी मैसेजेस भेजेगा और वो ड्रॉ में शामिल होने के बाद वन लकी विनर विल गेट डबल पास। वाओ

0: वेल यस, ये तो गाना था यासिर देसाई, विच आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि कब ये यहाँ आएंगे इन ऑकलैंड और परफॉर्म करेंगे. अमेजिंग वॉइस यार इनके, इनका मैं फैन बना था तब से जब से इनका एक गाना सुना था मैंने, दिल को करार आया, ये वाला. बस एक सवाल मेरा है आपसे, वो कौन सा गाना है जो सचमुच आपको काफ़ी मोटिवेट करता है जब ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जो आपको लगता है कि यार क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है मार्केट में, लाइक इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. आप मुझे बताइए, 5599 पे टेक्स्ट भेजिए और कोई ऐसा गाना सजेस्ट करिए जो सच मुझे रोंगटे खड़े करने वाला हो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी या फिर इन टर्म्स ऑफ समथिंग कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए. तो यस, आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं यहाँ पे 5599 पे. सोच रहा हूँ आज कवर करूँ उस पर. बट एनीवेज, एक नई चीज़ आ रही है, नई तो नहीं, काफ़ी टाइम से आपके सभी के कानों में हम डालते आ रहे हैं, द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं ऑकलैंड में परफॉर्म करने एक अनफॉर्गेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक अपने बेटे के साथ. जी हाँ, एक्सपीरियंस करें एक बहुत ही बढ़िया टाइमलेस हिट्स, काफ़ी बढ़िया सोल स्टरिंग कवाली, कुछ सोलफुल सूफियाना अंदाज और ऑफकोर्स बहुत ही इंटरनेशनल, अलग अलग लैंग्वेज में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है. अमेजिंग एक्सपीरियंस है. सो यस, यहाँ पे वो आएंगे ऑन 25th of July द ट्रस्ट एरिना में. जी हाँ, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है. प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन. टिकट ले लीजिए जल्दी से जाके drytickets.com पर, बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हुई है. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. हम
1: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
1: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
7: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
8: Sorry about that.
7: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
9: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
10: Non-stop Bollywood.
11: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
10: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
10: इसके पीछे
1: हम.
10: TikTok.
0: टिकटॉक के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है. वेल यस, एक बहुत ही अमेजिंग सा कंटेंट साथ में आया है, सामने आया है, जो ऑफ कोर्स यू नो ये सारी चीज़ें जो हो रही है कि आप सॉरी माय बैड, मैं एकदम से लॉस्ट हो गया था बीच में. बट यस, काफ़ी ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जैसे कि AI से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें बन रही हैं जिससे ऑफ कोर्स काफ़ी लोग ये तो सोच रहे हैं कि हाँ एआई चेंज कर रहा है दुनिया में ये सारी चीजें, बट ऑन द अदर साइड काफी ऐसी चीज है जो शायद आपके कंट्रोल में नहीं, और आप यू माइट बी फीलिंग कि यार ये शायद कहीं ये ना कर ले, यानी कि इसकी वजह से कुछ गलत ना हो। उसी के ऊपर एक काफी बढ़िया आर्टिकल आया जो कि बात कर रहा है एआई के बारे में, और उसका क्रेज जो है ना जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना ही तेजी से उसके लिए बनाने वाले डेटा सेंटर्स को लेकर भी लोगों ने काफी विरोध उठा रखा है। वैसे अमेरिका की अगर बात करें तो पहली बार एआई डेटा सेंटर्स के खिलाफ 42 स्टेट्स में 142 प्रोटेस्ट हुए थे, और प्रोटेस्टर का कहना है कि ये बड़ा डेटा सेंटर्स बहुत ही ज़्यादा बिजली और पानी कंज्यूम कर रहा है, एनवायरनमेंट पर प्रेशर भी डालता है, और लोकल अथॉरिटीज़ कम्युनिटीज से बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के प्रोजेक्ट अप्रूव भी किया जा रहा है, यानी कि विदाउट पीपल नोइंग, विदाउट आम पीपल नोइंग ये सारी चीजें हो रही है। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक सिर्फ 14% अमेरिकन अपने एरिया में डेटा सेंटर्स बनाने के सपोर्ट में है। लोगों की डिमांड भी है कि नए प्रोजेक्ट से पहले ट्रांसपेरेंसी रखें और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान भी रखा जाए और लोकल कम्युनिटीज की आवाज़ भी सुनी जाए। दूसरी तरफ टेक इंडस्ट्री का कहना है कि एआई और डिजिटल सर्विस के फ्यूचर के लिए डेटा सेंटर्स बहुत ही ज़रूरी है। उनके मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट जॉब्स और इनोवेशन लेकर आते हैं, यानी कि सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल के बीच का बैलेंस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लगता है आपको, ये चीज़ डेफिनेटली होनी चाहिए इन माई वे, आई थिंक इन वट आई फील।

वेलकम बैक। वेल, एक अभी ऑब्वियसली जाने का टाइम आया है, बट जस्ट एन अनाउंसमेंट, मैं कॉफी ब्रेक भी कर रहा हूँ। जी हाँ, सैंडी थोड़ा सा लेट हो जाएंगी, सो यस, ऑफ कोर्स शायद उनकी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है, तो वो बस आ रही है, बट शी विल बी जॉइनिंग फॉर द ड्राइव शो, सो डोंट वरी। मैं कॉफी ब्रेक के लिए भी यहाँ पे हूँ, अब तो लग रहा है सेकेंड कॉफी भी होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे पता है कि सवाल क्या है मेरा, रिलेटेबल ही है ऑफ कोर्स, आप कितनी कॉफ़ी पीते हैं पर डे, या फिर अगर चाय भी पीते हैं तो कितनी पीते हैं, आप मुझे 5599 पे जवाब दीजिए। उसके नुस्खे यानी कि अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, और अगर नहीं पीते हैं तो क्या फ़ायदा भी हो सकता है किस किस चीज़ों से। तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए कि आप दिन में अगर कॉफ़ी पीते हैं तो कितनी पीते हैं, और अगर चाय पीते हैं तो कितनी मार लेते हैं। जी हाँ, 5599 इज द नंबर।

0: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
3: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
4: Good afternoon. I'm Bridget Hay.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू कॉफी ब्रेक। वैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल किया था आपसे कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ह्यूमन राइट्स को लेके या फिर ह्यूमैनिटी को लेकर, तो कौन सा गाना जो है बहुत ही ज़्यादा सूट करना चाहिए। तो एक ने नीनू जी ने मुझे मैसेज किया है, वो कहती हैं भगवान है कहाँ रे तू। इतना प्यारा गाना यार, बहुत ही प्यारा गाना है। भगवान है कहाँ रे तू, एक ये गाना भी अच्छा है कि खून चला, ये भी गाना बहुत ही दमदार है। पर ऑनेस्टली सिचुएशन जो है वो ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। आप ऐसे आपकी क्या उसमें टिप्पणी है, आप मुझे 5599 पे भेज सकते हैं। बट ये सभी के लिए एक लेटेस्ट खबर में लेके आ रहा हूँ थोड़ी देर में, जिस पे बात होगी अबाउट द फ्यूनरल सर्विस टू बी हेल्ड फॉर स्टिल बॉर्न फाउंड ऑन ब्लेनम रोड। ये मैं जल्दी से न्यूज लेके आने वाला हूँ इस बारे में। कॉफी ब्रेक
1: विद सैंडी, उससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा हो जाती और सब बस कर देते सब।
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Streaming on Rover.
1: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
2: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
3: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
2: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
3: पर डेवलपमेंट के पैसे
2: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
4: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
5: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront. Even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा,
6: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह का
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: Well, अभी की खबर ये है कि मार्लबोरो से एक दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है और इस साल मई में ब्लेनहम के पास वायराउ बार रोड पर एक स्टिल बॉर्न बेबी मिला था और अब उस नन्हे शिशु के लिए 29 जुलाई को फेयर हॉल सिमेट्री के चिल्ड्रंस मेमोरियल एरिया में एक फ्यूनरल सर्विस रखी गई है ताकि उसे इज्जत और प्यार के साथ आखिरी विदाई दी जा सके। वैसे पुलिस ने बताया कि इस फ्यूनरल की तैयारी में लोकल बिजनेसेस और कम्युनिटी ग्रुप्स ने अपना समय और रिसोर्सेज डोनेट करके मदद की है, साथ ही फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी जारी की है ताकि बच्चे के परिवार तक पहुंचा जा सके। पुलिस की सबसे बड़ी कंसर्न अब भी बच्चे की मां की सेफ्टी और वेलबींग को लेकर है। अगर किसी के पास मामले से जुड़े कुछ भी जानकारी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, तो आप जल्दी से जितना जल्दी हो सके न्यूजीलैंड पुलिस को कॉल करिए 105 पे और जो भी इंफॉर्मेशन मिले आप उन्हें पहुंचाइए, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में। वैसे अथॉरिटीज का कहना है कि उनका फोकस माँ को जरूरी सपोर्ट और केयर दिलवाना भी है।
1: Bollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Well, थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था मैंने कि आप दिन में कितनी चाय पीते हैं और कितनी कॉफी पीते हैं, दोनों में से डजंट मैटर कि आप टोटल कितनी पीते हैं, बट अगर आप चाय लवर हैं तो चाय कितनी पीते हैं और कॉफी लवर हैं तो कॉफी कितनी पीते हैं, बिकॉज मैंने अभी मेरे हाथ फिलहाल दूसरी कॉफी हो रही है. सो यस, मैंने बताया था कि क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बताऊंगा. तो अगर आप कॉफी या चाय के शौकीन हैं तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिन भर में लगभग 400 मिलीग्राम कैफीन तक लेना ज्यादातर हेल्दी एडल्ट्स के लिए सेफ माना जाता है. इसका मतलब है कि करीब 3 से 4 कप कॉफी या 5 से 6 कप नॉर्मल ब्लैक टी. हालांकि हर इंसान की कैफीन टॉलरेंस जो है वो अलग अलग होती है. डजंट मैटर कि अगर एक इंसान ले सकता है उतना तो आप भी ले सकें, वो जरूरी नहीं है. सो बेटर है कि आप कंसल्ट करें डॉक्टर से या फिर ऑफकोर्स प्रिस्क्राइब्ड भी हो तो बेस्ट है. पर यस, कॉफी के फायदे क्या है ये भी आप देख लीजिए. अगर आप कॉफी लवर है तो एनर्जी और अलर्टनेस जो है वो बढ़ती है, फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है. एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है ये. कुछ रिसर्च के मुताबिक रेगुलर मॉडरेट कॉफी से टाइप 2 डायबिटीज़ और कुछ हार्ट डिजीजेस का रिस्क भी कम हो सकता है. और उसी के पर मैंने अभी अच्छी बताई तो ऑफकोर्स नुकसान भी जान लो. ज़्यादा कॉफ़ी से एंग्जाइटी, घबराहट और हार्ट पल्पिटेशन हो सकती है. नींद पर बुरा असर पड़ सकता है, खास करके शाम के बाद. और कुछ लोगों में एसिडिटी या पेट की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है. और अगर चाय लवर हैं तो उसके बारे में भी आप फायदा नुकसान सुन लीजिए. टी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं. ब्लैक और ग्रीन टी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है. चाय में कॉफी के मुकाबले कम कैफीन होता है, इसीलिए कैफीन का इफेक्ट जो है वो थोड़ा माइल्ड रहता है. बट अगेन सबके डिपेंड करता है कि आप उसमें मिक्स क्या क्या कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर टी है तो आप दूध डालते हैं, तो जितना मैंने सुना है दूध जितना डालोगे उतनी पावर जो है उसमें, एनर्जी जो है वो कम होती जाती है. दैट्स व्हाई पीपल से कि लाइक यू नो, अगर ब्लैक टी पीनी है या ग्रीन टी पीनी, दैट इज़ वे बेटर देन द टी विच यू गोना बी ड्रिंकिंग विथ मिल्क इन्वॉल्व्ड. वैसे नुकसान भी सुन लीजिए इसके. बहुत ज़्यादा चाय, खास करके दूध और चीनी वाली, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक्स्ट्रा शुगर और कैलोरीज बढ़ा सकती है. और एक्सेस टी आयरन एब्जॉर्प्शन का काम कर सकती है, इसीलिए खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा चाय पीने से बचना चाहिए. साथ ही ज़्यादा कैफीन वाली चाय भी नींद और एंग्जाइटी को इफेक्ट कर सकता है. स्पेशली जो मेरी हैबिट हुआ करती थी पहले, दैट वाइल ईटिंग यू शुडंट बी ड्रिंकिंग द टी एट ऑल. बहुत ही नुकसान हो सकता है, बहुत ही मतलब लिटरली आप एक तरह से पॉइजन बना सकती है वो. तो अगर आप खाना खा रहे हैं उसके आधे घंटे पहले और खाना खा रहे, मेरे ख्याल से 1 घंटा होता है, 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद, आपको डेफिनेटली चाय पीनी अवॉइड करनी चाहिए.
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हाँ.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Rebel's end of season sale is still on. Score up to 50% off the big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Plus, score a free Rebel Sport bag when you spend $50 or more. End of season sale is on now, only at Rebel Sport. See your life for T's and C's.
5: We've all been there. 6 p.m, traffic sucks, and that chicken for dinner, still frozen.
6: Ditch dinner dread and come home to HelloFresh. Tender kiwi lamb, salmon, juicy beef and local produce, ready in the fridge when you are.
5: Take back dinner time with HelloFresh.
7: Bollywood ka asli blockbuster.
8: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
9: चलिए बात करते हैं कौन कौन से हमारे कम्युनिटी में इवेंट्स हो रहे हैं जिसपे आप गौर फरमा सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। वेल, पहला सबसे पहले बताते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आप सभी को इनवाइट करते हैं एक फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो कि 22 एंड 23 अगस्त को होने वाला है बिर्किनहेड स्काउट्स हॉल में। अगर आपके पास स्किल्स है तो डेफिनेटली ये जो है इवेंट, ये जो कंपटीशन है आपके लिए बना है, आप पार्टिसिपेट करिए। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन फेसबुक पेज पे जाके आप कर सकते हैं, न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन, या फिर आप NZCA प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं उनके नंबर पर जो कि है 02109085067 पे। साथ में आप हेल्थ एंड वेल बीइंग एक्सपो 2026 का भी हिस्सा बन सकते हैं, वहां पे भी जा सकते हैं, कंप्लीटली फ्री एंट्री है जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है फीजी गिरमिथ फाउंडेशन न्यूजीलैंड एंड इन एसोसिएशन विद एंड फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिएशन। ये आप जाइए और देखिए जो कि होने वाला है 26 जुलाई को संडे के दिन, A1 इवेंट सेंटर में होने वाला है 731 ग्रेट साउथ रोड पापर टोटो में, सुबह 10 से लेके 3 बजे शाम के शाम दिन। काफ़ी कुछ वहां पे होने वाला है, जैसे कि फ्री स्क्रीनिंग होने वाली है, इन्फो ऑन कैंसर स्क्रीनिंग एंड अर्ली सिम्टम्स फॉर, उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में भी बात होगी, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एंड करियर भी होगी, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी काफ़ी ऐसी हेल्थ से रिलेटेड जो आपके सवाल होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डाइट क्या होनी चाहिए आपकी यू नो बॉडी के हिसाब से, वो उसके बारे में भी होगी। साथ में किडनी एंड हार्ट केयर के बारे में भी होगा और भी तरह तरह की है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है, जैसे कि फेस पेंटिंग है, किड्स एक्टिविटीज़ हैं, लाइट रिफ्रेशमेंट्स भी रखा गया है, हैम्पर गिवेज भी दिए गए हैं, योगा क्लासेस, जुम्बा भी है, लाइव परफॉर्मेंस भी है और काफ़ी कुछ और भी इवेंट्स है। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है किसी सवाल जवाब का तो sarohmich@hotmail.com सरोजनी दयाल जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्सपो प्रोजेक्ट लीडर है, या फिर आप शनीला महाराज को भी ईमेल कर सकते हैं shanilafgfnz@gmail.com पर। उसके अलावा श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में सेलिब्रेट किया जा रहा है अखंड रामायण पाठ जो कि 1st and 2nd of August को सेलिब्रेट किया जा रहा है, सुबह 7 बजे सैटरडे से संडे 10:30 तक ऑलमोस्ट। महाप्रसाद विल बी सर्व्ड एज वेल एंड न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी के लिए लेके आए हैं श्री राम लीला। जी हाँ, अगर आपको स्टॉल लगवानी है तो मास्टर अशोक को कॉल करिए 02117954 पे। एंड दैट्स ऑल फॉर द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज हैपनिंग ओवर हियर इन ऑकलैंड, लेकिन आप बने रहिए बिकॉज स्पोर्ट्स में आप क्या क्या इन्जॉय कर सकते हैं उस पर मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, बिकॉज ऑफकोर्स फुटबॉल खत्म हो चुका है तो क्या हुआ यार, और भी स्पोर्ट्स हो रहे वर्ल्ड वाइड जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑन साइट।
10: कॉफी ब्रेक विद सैंडी,
11: हमको गारंटी दी थी कि तुम सुशील हो सर्व।

वेल यस, फीफा वर्ल्ड कप तो हो चुका है खत्म, लेकिन अभी हाल फिलहाल और भी इवेंट्स चल रहे हैं। आज तारीख हो चुकी है 21 जुलाई, यानी कि 21 जुलाई के हिसाब से तो इवेंट जो है ना, टूर डे फ्रांस रोड साइकिलिंग, ये आप देख सकते हैं जो 26 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ई स्पोर्ट्स, ये आप देख सकते हैं पेरिस फ्रांस में, ये हो रहा है, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू ट्रैवल देयर। दूसरा और भी इवेंट्स हैं, जैसे कि UCI BMX रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, उसे आप एंजॉय कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। अपने पड़ोस देश में अगर आप जा रहे हैं तो ये ब्रिस्बेन में हो रहा है, अगर देखना चाहें ऑन साइट जाके तो आप देख सकते हैं। साथ में हैमबर्ग यूरोपियन ओपन भी चल रहा है जो कि 26 जुलाई तक चलने वाला है। एंड देन ICF किनोए स्लेलोम वर्ल्ड चैंपियनशिप, किनोए स्लेलोम ये हो रहा है, 25 जुलाई तक चलने वाला है जो कि US में हो रहा है। देन कल से और भी इवेंट्स शुरू हो जाएंगे, बट उनकी बात हम करेंगे कल। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, मजा आ गया आज के दिन, 4 घंटे अच्छे से एंटरटेन किया है होपफुली, और आपके भी कॉल्स हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, कीप सपोर्टिंग द सॉन्ग सफायर 2.0, जो कि मेरा गाना भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और काफ़ी लोग प्रेस कर रहे हैं, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरह से मैंने दिखाया है न्यूजीलैंड को। ऑफकोर्स पूरा न्यूजीलैंड तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाया, बट नॉर्थ आइलैंड ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है, उसे आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे बताना कि कौन सा बैकग्राउंड आपको सबसे खूबसूरत लगा है वहाँ पे। मुझे ना सबसे बेस्ट पता है क्या लगा, पूरे वीडियो में हैमिल्टन गार्डन का जो सीन आता ना पीछे, जो यू नो महाराज कोई थे, उनका जो एक लुक लाइक वाला दिखता है, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। बट यस, आप मुझे बताइए, 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं। डोंट वरी, अगर आप मैं नहीं भी हूँ तो कोई बात नहीं, सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली, तो वो मुझे मैसेज पास कर देगी कौन सा बैकड्रॉप जो है आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है पूरे वीडियो में। बट यस, आई विल टेक अ कल्टी एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज़।

Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इसमें टेम्परेचर बाहर का 13.6 डिग्रीज है और आज को ओवरनाइट 5 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है, यानी कि काफी चिली वेदर रहेगा। सनसेट आज का 5:28 पर।
2: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
1: चार बज के 2 मिनट हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कैसे हैं आप और आज का डे आपका कैसा जा रहा है? थैंक यू सो मच केतन का यहाँ पे साथ देने के लिए कॉफ़ी ब्रेक में। आई एक्चुअली वोक अप सिक ओनली टुडे। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा फीवर था बट फीलिंग मच बेटर राइट नाउ। मेरे को लगता है ना कि ये टू मच मेरा एल्गोरिथम अभी वो वीडियोज़ का हो चुका है जहाँ पर मैंने इतनी वीडियोज़ देख ली है जो भी इंडिया में हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा अजीब सा फीलिंग फील करना शुरू कर देते हो। एंड मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है गाइस, मैं कुछ ज़्यादा ही एम्पथेटिक हूँ। जितना नहीं होना चाहिए ना उतना हूँ मैं, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो मेरे को लगता है इसीलिए ये फीवर अफेक्ट हो गया। ये एक्सक्यूज़ है कि एनीवे आपका डे कैसा जा रहा है? इंडिया में तो जो हो रहा है उसके ऊपर तो अब जाके सेलिब्रिटीज़ भी कमेंट करना शुरू हो चुके हैं। बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई है, इनफैक्ट एक वीडियो मैंने देखी, उन्होंने पुलिस वालों की लाठी पकड़ी स्टूडेंट्स ने और उस लाठी के बीच में कील थी, नेल था उसके अंदर, मतलब नेल उसमें हाइड करके लाठी को वो उनको मार रहे थे। एंड पीसफुल प्रोटेस्ट में किसी का कोई भी टेक हो सकता है, लेकिन कोई भी बच्चा, मतलब आप ये नहीं देख रहे हो कि 12 साल की लड़की है वहाँ पर, 15 साल का लड़का है वहाँ पर, बच्चे हैं वहाँ पर जिनको आप मार रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, उनको पीट रहे हो, उनको गालियां दे रहे हो, मतलब अपनी कंट्री के फ्यूचर को इस वे से आप ट्रीट कर रहे हो। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मैंने एक्चुअली में एक और ऐसी वीडियो देखी जहां पे एक 15-16 साल का वो लड़का होगा, स्टूडेंट है, उसको उसके फ्रेंड्स लेके जा रहे हैं बिकॉज उसकी टांग टूट गई है। एंड उसकी, मतलब वो उसकी इंजरी की वीडियो को इसकी बना रहा था एंड उसका फ़ोन बजता है लड़के का, उसकी मम्मी का कॉल है एंड एकदम से वो हंस के बात करना शुरू कर देता है अपने पेन को भूल के, सो दैट उसकी मम्मी जो है वो खबर आए ना। मतलब दे आर सो मच ऑफ गोइंग ऑन एंड आई एम जस्ट शॉक्ड एट द ट्रीटमेंट दे आर गेटिंग राइट नाउ। कोई भी किसी भी कंट्री में कोई भी स्टूडेंट जो अपने हक के लिए लड़ाई करता है ऐसा ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता है। और इसको हम किसी लेवल पे भी कोई भी एक्सक्यूज़ लेंगे कि बीच में वो एलिमेंट है जिनको ये नहीं पता है, बीच में वो एलिमेंट है, बाकी एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो है हर जगह पे रहते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ को हम, मुझे नहीं लगता है कि जस्टिफाई कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं।

0: विशाल डडलानी की आवाज में गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे। 4:13 हो चुके हैं। वैसे न्यूज आई है कि अ वार्मर देन एवरेज जून जो है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंडर्स ने लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज की है फॉर हीटिंग, रिड्यूसिंग नेशनल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, एंड पावर सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर था ये काफी ईज अप हो चुका है। वाइल लोअर डिमांड इज अ गुड न्यूज कंज्यूमर्स के लिए एंड द ग्रिड इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स है दे सोल्ड लेस पावर देन दे नॉर्मली वुड ड्यूरिंग द विंटर। सो जून देखा जाए तो वार्मर था देन यूजुअल, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा इन द सेंस, हमने बारिश के बारे में तो ऑलरेडी हम कितनी बात करते हैं कि यू नो विंटर में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स इस बार जो बारिश होती है बहुत ही कम होती है, मीन्स कि हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसिस जो है दे नीड लेस हीटिंग। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो था ये एक्चुअली नीचे गिरा है कम्पेयर टू वट इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड फॉर विंटर। सो लोअर डिमांड जो है ये हेल्प करता है टू रिड्यूस द नीड फॉर एक्सपेंसिव बैकअप जनरेशन सच एज कोल या फिर गैस फाइड प्लांट्स एज वेल। सो ड्यूरिंग द विंटर लार्ज पोर्शन ऑफ न्यूजीलैंड इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर हीट पम्प, इलेक्ट्रिक हीटर, हॉट वाटर या इंडस्ट्रियल हीटिंग के लिए, क्योंकि टेम्परेचर जो थे जस्ट फ्यू डिग्रीज वार्मर से, सो मिलियंस ऑफ हीटर्स ये सिर्फ फ्यू आवर्स के लिए चले, जिसकी वजह से नोटिसिएबल ड्रॉप हुआ है इन नेशन वाइड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। सो कंज्यूमर्स के लिए इसका मतलब क्या है कि लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, मीन्स कि लोअर पावर बिल्स जो है ये है हाउस होल्ड्स के लिए। सो आपका पावर बिल कैसा आया एज कम्पेयर टू प्रीवियस विंटर्स? आपके घर का जो पावर बिल है वॉज इट लाइक सेम जैसे पिछले कुछ सालों में आ रहा था स्पेसिफिकली विंटर में, या फिर आपने भी नोटिस किया कि आपका जो पावर बिल है एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स कम आया है? मैसेज करके बता सकते हैं यहाँ पे 5599 पर। लेट्स सी कि मैक्सिमम पावर बिल इस बार किसका आया है। सो 5599 इज़ अ नंबर जहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं। सो पावर बिल के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं, एंड मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में कुछ इवेंट्स के बारे में भी जो कि आपकी सुपर सिटी में होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, एक तो इसी सैटरडे को होने वाला है।
1: Wisdom, wit, and wild conversations.
2: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए।
4: Freedom Spend More Save More sale is on now. Save up to 25% on sofas, furniture, and homewares. Plus, take an additional 10% off clearance. Hurry, don't miss out. Only at Freedom.
5: Fiji is on sale now at Flight Center. Enjoy the ultimate tropical escape with 5 nights plus flights from $1,999 per person. Book in store today. Departs Auckland. Fees, T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.
6: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
7: IKEA. The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
8: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
9: क्यों, क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
10: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।
9: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
10: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
2: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
0: 4:19 हो चुके हैं. वैसे इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान इज कमिंग टू ऑकलैंड एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए. ट्रस्ट अरीना में इसी सैटरडे को 25 जुलाई को इनका शो होने वाला है, विच इज प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस. टिकट्स वैसे आपको dryticket.com इस वेबसाइट पर जाके मिल जाएंगी. एंड आपके लिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव है. अगर आप ये टिकट ऑलरेडी खरीद चुके हैं, ओनली फॉर दोज पीपल जिन्होंने इस शो की टिकट खरीदी है, यू माइट गेट अ चांस टू मीट राहत फतेह अली खान जिन्होंने शो की टिकट खरीदी है. वेल, कैसे आपको ये चांस मिल सकता है राहत फतेह अली खान से मिलने का, अगर आपने टिकट यहाँ पे जीती है या फिर अगर आपने टिकट खरीद ली है, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पे बताने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून. अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है, दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय द टिकट, बिकॉज ज़्यादा देरी मत कीजिएगा. dryticket.com इज़ अ वेबसाइट, वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है राहत फतेह अली खान एंड जस्ट बाय द टिकट. मैंने आपसे पूछा था कि आपका जो बिल है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, विंटर बिल जो आपका है, ये ज़्यादा आया है या कम आया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूज़ वार्म टेम्परेचर्स रहे हैं तो कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हुआ है. एक ने लिखा है कि माई बिल्स आर ऑलमोस्ट डबल दिस ईयर. इनका तो डबल ही हो गया है. एक ने लिखा है सेम है. तो ये आर्टिकल कहाँ से आया यार, एक ने सेम लिखा है, एक ने लिखा है डबल ही हो गया है. आपका क्या है, मेरे पास दो डिफरेंट मैसेजेस यहाँ पे है. आपका जो विंटर बिल है, इज इट सेम, कॉल करके भी शेयर कर सकते हैं, इज इट सेम एज लाइक प्रीवियस ईयर्स या फिर प्रीवियस विंटर ईयर्स, या फिर आपको लगता है कि इस बार आपका कम आया है, बिकॉज दिस आर्टिकल सेज की लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है. तो आप भी बताइए कॉल करके या मैसेज करके 5599 पर.
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
15: मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 4:29 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. ड्राइव शो फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. एंड अभी आजकल आपका वैसे नाइट कैफे में साथ दे रहे हैं बिकॉज क्रिश इज अवे. सो बहुत डेडिकेटेड है अभी, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं स्टूडियो में. हाय, गुड आफ्टरनून अवि, कैसे हो तुम?
1: गुड आफ्टरनून सिंडी, आई एम वेरी गुड, आप कैसी हो?
0: बढ़िया बढ़िया. डे कैसा जा रहा है आज का?
1: बढ़िया है यार, फैंटास्टिक.
0: फैंटास्टिक, हाँ, हाँ.
1: एकदम वही बोलना पड़ेगा ना.
0: सही बात है, रियल इमोशंस नहीं बोल सकते ना.
1: रियल इमोशंस नहीं बोल सकते. और जबकि वीक का दूसरा दिन है, ऐसा लग रहा है कि 3-4 रोज से लगे हुए हैं.
0: ऐसा लग रहा है बहुत लॉन्ग वीक हो चुका है ऑलरेडी.
1: ऐसा लग रहा है कि बहुत लॉन्ग वीक हो गया.
0: एक्चुअली यू आर राइट यार. आज बाय द वे 21 जुलाई है ना, आज पूजा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है.
1: हाँ, मैंने सुबह सुबह उस चैट में देखा, मैंने विश भी किया उनको.
0: देखो, उसको कॉल करने को कोई फायदा नहीं है, वो फोन नहीं उठाएगी.
1: हाँ, ना?
0: सुबह रुजबे ने भी ट्राई किया. सो अपेरेंटली रुजबे ने तो कुछ उसको वॉइस मेल मैसेज भी छोड़ा है.
1: हाँ?
0: जो मुझे नहीं पता है क्या छोड़ा उसने. कुछ वहाँ पे किया है. बट मेरे को ये आपसे सवाल पूछना है. तो मैंने ये सवाल पूछा था कि विंटर बिल, ऐसा मैंने आर्टिकल पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ना, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, इस बार लोगों का कम आ रहा है बिकॉज वार्म टेम्परेचर्स है, हीटिंग कम यूज हो रही है. लेकिन मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि एक ने बोला है कि सेम है, 3 मैसेज आया कि ऑलमोस्ट डबल है. एक ने बोला है द कॉस्ट आर इंक्रीज एंड कंजम्पशन इज लेस, पीपल मे सी द बिल एज सेम और मोर बट द आर्टिकल इज बेस्ड ऑन एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड नॉट द डॉलर पेड फॉर ईच यूनिट. ये शोएब ने बताया है. सो व्हाट अबाउट यू, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपके घर में और बिल कैसा आ रहा है आपके घर पे?
1: मेरा बिल जैसे लास्ट विंटर आता था उसी तरह का है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं एक ट्रॉपिकल गाय हूँ, फिजी से हूँ ना, तो मेरे लिए जहाँ टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो आई फील रियली कोल्ड.
0: हाँ,
1: तो ये तो अगर जो 14-15 ले के आसपास भी टेम्परेचर है वो मेरे लिए बहुत ठंड है. क्योंकि हमारे फिजी में अगर जो अभी का टेम्परेचर आप लो तो अभी इट्स अराउंड 25-24 डिग्रीज
0: ओके
1: मुताबिक से ऑन एवरेज, लेकिन वहाँ के लिए भी वो ठंडा है. तो इसलिए एवरीथिंग इज नॉर्मल, लाइक हीट पंप चालू करने पड़ते हैं और साथ में हॉट शावर भी लेना पड़ता
0: है. मेरे को लगता है साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट भी होता है ना, कि बिकॉज वी आर इन जून, वी आर इन जुलाई, तो मतलब इसका मतलब ठंड है, तो मतलब हीटिंग हमें ऑन करनी पड़ेगी रात को.
1: हाँ.
0: तो एक साइकोलॉजिकली भी विदाउट रियलाइजिंग कि बाहर का टेम्परेचर कितना है, वी जस्ट स्विच ऑन द हीटिंग एज वेल.
1: मैं तो सबसे पहले खोजता हूँ, ढूंढता हूँ रिमोट की, भाई किसी ने चालू क्यों नहीं किया.
0: अच्छा, आपको तो फिर सर्दियों में यू कैन नॉट गो इन नॉर्थ ऑफ इंडिया.
1: अच्छा, मैं आपको बताऊं मैं सोता कैसे हूं. मैं जब रात को व्हेन आई हिट द बेड, तो जो मेरा ब्लैंकेट है ये आता है मेरे लिप्स के ऊपर तक.
0: ओके.
1: और जो मेरी बीनी होती है वो आती है नाक तक.
0: बस सांस लेने की जगह छोड़ी है. ओ माय गॉड. नॉर्थ इंडिया का कभी प्लान नहीं कर सकते इन विंटर.
1: हाँ ना, काफी ठंडी होती है.
0: वहाँ की ठंड थोड़ी डिफरेंट होती है. मतलब वो ठंड यहाँ पे फील नहीं होती, वहाँ पे बहुत ज्यादा फील होती है वो ठंड.
1: तो मैं जब सोने जाता हूँ घर
0: के,
1: घर के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है.
0: अभी कभी खत्म नहीं हुआ था इससे, लेट मी कम्प्लीट पहले. हाय परविंदर.
2: नॉर्थ इंड हेलो, नॉर्थ इंडिया की ठंड की बात कर रहे हैं. अगर नॉर्थ इंडिया की ठंड, ओ माय गॉड.
0: हाँ. वो इनको पता नहीं है अभी,
2: मतलब आई कैन नॉट टेल द फीलिंग, कितनी अच्छी फीलिंग है.
0: हाँ.
2: जैसे कल यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धुंध थी, पार्शियल धुंध ना.
3: इन 750 मीटर्स
2: पर अभी जब मैं दिसंबर में गई थी इंडिया,
0: तुम्हारा जीपीएस यहाँ पे भी बता रहे हैं परविंदर कि तुम्हें कहाँ पे टर्न करना है.
2: मैं स्कूल का, हमारा कंपटीशन है हमारे बच्चों का ना, तो मैं उधर जा रही हूँ.
0: ओके ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट. हाँ, लेकिन
2: सर्दी होती है सारा दिन.
0: और वहाँ पे मेरे को ना मजा क्या आता है, खाने पीने का,
2: खाने पीने का. और सर्दियों में वहाँ पे जैसी जैसी नवंबर शुरू होता है ना, यू कैन सी दी रेडियां जिसमें मूंगफलियां वो गर्म देखने लगते हैं.
0: अभी वहाँ पे ना वो ठेले जैसे होते हैं ना, ठेले होते हैं, एंड जो मूंगफली होती है ना, पीनट, नॉट पीनट, यू नो द मूंगफली, क्या होती है
1: वही पीनट ही
2: है ना शेल
0: पीनट विद द शेल हां ऐसा सो उसको ना भूनते हैं वो ताजा ताजा वहाँ पे और वो गरम गरम खाने का मन
1: उसका मजा अलग है ना
0: अलग ही मजा होता है
2: हाँ और वो कुल्हड़ वाली चाय इतनी बिकने लगती है अच्छा मैं चंडीगढ़ से हूँ वहाँ पे एक एरिया है 3B2 3B2 में आप सर्दियों में रात को 1 बजे भी चले जाओ यू विल सी पीपल सिटिंग एंड एंजॉयिंग टी कूलर वाली चाय
0: कूलर वाली चाय
1: सुबह 1 बजे जाते हैं लोग चाय पीने ठंड में बाहर अच्छा मैं तो बाथरूम भी लेना चाहूँ
0: अरे वहाँ पे 6 बजे के बाद सोचा जाता है कि अब शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं
1: वो,
2: अब जाते हैं हाँ। अब जब अगर आप वहाँ कभी आपका मौका लगे जाने का ना जब आप नॉर्थ के साइड जाओ चंडीगढ़ में अगर आप जाओ ना यू विल नॉट फील लाइक सिटिंग एट होम क्योंकि वहाँ पर रात को ही रात जवान होती है
0: सही है
2: और गर्मियों में बताऊं वहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि एसी के साथ फैन चला के 1 लाख बाहर निकाल के चादर ली चादर ली होती है एसी चल रहा होता है फैन चल रहा होता है और 1 लाख बाहर होती है बैलेंस करने के लिए ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्म ना हो
1: इससे अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती थी
0: कि कितनी गर्मी होती है
2: सच्ची में लोग ऐसा करते हैं मतलब एनीवन हु कैन अफोर्ड एसी नॉट एवरीवन है ना तो एसी ना ऐसा होता है कि वो रूम ठंडा कर देता है तो फैन क्या करता है वो ठंडा को घुमा देता है सब जगह
0: सही
2: तो मेरे घर पे तो ऐसे होता है फैन एसी और एक पैर बाहर
0: थैंक यू परविंदर अभी को इतना एजुकेट करने के लिए
2: आई डोंट नो पंजाब से कौन कौन सुन रहा होगा
0: मैं सुन रही हूँ यार
2: इफ दे कैन रिलेट पंजाब नॉर्थ की सर्दियाँ ओ हो
1: अच्छा आपका डेस्टिनेशन मिस तो नहीं हुआ नहाती है ना घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है
0: अरे वाह
2: नहीं अपनी गाड़ी में जाना है
1: ये भी ना बात
0: ठीक है
2: अच्छा एक बात और बताओ
0: डेस्टिनेशन पहुंचो
2: एक बात और बताऊँ वहाँ की जैसे यहाँ तो सारा साल बारिश होती है ना वहाँ पे रेनी सीजन में बारिश होती है
0: सावन का महीना
2: जो सर हाँ तो वहाँ का बारिश है इज टू डाई फॉर मतलब एक पर्टिकुलर मंथ में होती है बारिश और जब बारिश होती है ओ हो तूफान आता है लोगों के जो स्टील के बर्तन गिरते हैं किचन से आवाजें आती हैं इतना अच्छा लगता है ना वो सब सोच के वेरी मेसमराइजिंग
1: रियली नाइस
0: नॉस्टैल्जिक हो गई
2: हाँ
0: चलो ठीक है
2: और पहले तो अब तो लोग एडवांस हो गए ना
0: पहले पहुंचो अपने बच्चों के फंक्शन में पहुंचो परविंदर इधर क्या टाइम
1: दिस इज द लास्ट वन
2: लास्ट वन जब भी वहाँ पे बारिश के साथ तूफान अंधेरी आती है ना हमेशा पावर कट होता था ऑलवेज तो वो एक टाइम जब कैंडल लगा के सारी फैमिली बैठ के ताश खेलती थी या वो कैरम खेलती थी बहुत अच्छा टाइम होता था
0: या आई थिंक दैट वाज द बेस्ट काइंड ऑफ फैमिली बॉन्डिंग
2: और लोग भी बाहर बैठ के बातें करते थे क्योंकि लाइट चली गई है क्या करे टीवी निकल रहा है फोन इतने कॉमन नहीं थे
1: बात करके ही सारा समय निकलता था ना
2: उस टाइम पे वर्बली डाटा ट्रांसफर होता था
1: वर्बली डाटा ट्रांसफर
0: सही है
2: ओके
0: धन्यवाद बाय बाय ये तो सही बोला उसने वर्बली ट्रांसफर होता था डाटा एनीवे नाउ यू नो अवी नाउ यू नो अ लॉट राइट थैंक यू
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Hum. Accurate traffic.
5: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
6: Fine overnight for Auckland, a low of 7 on the northern. It's heavy heading north through the Esmond Road interchange. Northwestern slow from St Luke's to Rosebank. On the southern, it's slow southbound St Mark's Road to Sylvia Park, heading north from Sylvia Park to Green Lane. Southwestern heavy both directions between Massey Road Road and Mangere Bridge. It's pretty solid around Pukenui Road and the Southern Interchange.
5: Start strong on cold mornings with Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
7: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
8: At Bunnings, we can make your paint projects easy. With a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74. Or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
9: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
10: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
11: Sorry about that.
10: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
12: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
13: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: $4.48 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं. वैसे आपके सुपर सिटी में एक न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन भी है जो आपको इनवाइट कर रही है फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट के लिए. 22nd एंड 23rd अगस्त को ये होने वाला है बर्कन हेड स्काउट्स हॉल में. सो ये फिलहाल वैसे इनवाइट कर रहे हैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं किसी भी स्किल लेवल के. अगर आप यू नो ज़्यादा भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं है बट यू वांट टू पार्टिसिपेट यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड चेक द डिटेल्स. पंकज मोंगा से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में. इट्स 0210908 5067 ये इनका फ़ोन नंबर है 0210908 5067. इन केस यू मिस्ड इट यू कैन कॉल मी हेयर मैं आपको नंबर बता दूंगी. एंड फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड इसी संडे को एक इवेंट कर रहे हैं जो कि हेल्थ वेलबींग का इवेंट है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है एक्चुअली में. A1 इवेंट सेंटर में होने वाला है. ये फ्री है सबके लिए. यहाँ पे फ्री स्क्रीनिंग होने वाली है ब्लड प्रेशर की डायबिटीज़ की किडनी ECG आई टेस्ट देन कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग भी है वहाँ पे जैसे CPR के बारे में हैप्पी पेन के बारे में ईजी योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग की वर्कशॉप्स भी हैं वहाँ पे. आप एजुकेशन ले सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर लाइक ड्राउनिंग प्रिवेंशन के ऊपर AKL एमरजेंसी मैनेजमेंट के ऊपर न्यूजीलैंड पुलिस में अगर आप जाना चाहते हैं कैसे जा सकते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिलेगी. तो आप भी ज़रूर पहुँचेगा फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड का ये जो इवेंट है हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो इसी संडे को A1 इवेंट सेंटर जो कि पापाटोए है वहां पे होने वाला है बिटवीन 10 AM टू 3 PM.

0: 24/7 on Rover. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम की हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 12.6 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट काफी चिली वेदर 5 डिग्रीज रहने वाला है। सनसेट आज का 5:28 पर।

0: sleepy head, sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
4: 5:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. यू आर हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ एंड पावर ड्राइव एट 5 आपके लिए शुरू हो चुका है. एंड आज आपके लिए करैक्टर गेस गेम भी थोड़ी देर में रहने वाली है. सो करैक्टर गेस में आज रुजबे तो मेरे साथ यहाँ पे नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आप ही के साथ खेलने वाली हूँ. सो लेट्स सी, ये गेम आपके लिए बस थोड़ी देर में रहेगी. लेकिन बता दूं कि आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में आप स्पेशल ट्रिब्यूट सुनने वाले हैं टू अ वेरी सेलिब्रेटेड पोएट एंड लिरिसिस्ट आनंद बख्शी. आज आनंद बख्शी की बर्थ एनिवर्सरी है. आनंद बख्शी का नाम आपने ना बॉलीवुड के बारे में जब भी बातें करते हैं तो बहुत बार सुना होगा, बिकॉज इन्होंने ना लेजेंडरी मूवीज़ के गाने लिखे हैं. ऐसे ऐसे इन्होंने अपनी लाइफ में गाने लिखे हैं. वेल, कुछ मूवीज़ के गाने आपके लिए यहाँ पे हम ज़रूर प्ले करेंगे बिटवीन 6 to 7 ट्रेंड मेकर्स में. इनका नाम जुड़ता है बहुत सारे क्लासिक गानों के साथ, जैसे कि सावन का महीना, रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी, एंड ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, महबूबा महबूबा, दम मारो दम, चुरा लिया तुमने, आपकी आँखों में कुछ. These all songs are written by Anand Bakshi. लेकिन यहाँ पे जो आज आप 6 बजे के बाद गाने सुनने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे गाने रहने वाले हैं.
5: तुझे देखा तो ये गाना सनम.
4: बेसिकली DDLJ के सबके सारे के सारे गाने जो है वो आनंद बख्शी ने लिखे हैं. देन यू गोना हेयर समथिंग फ्रॉम ताल एज वेल.

सो ये सारे गाने आनंद बख्शी ने लिखे हैं. सो ही इज अ लिरिसिस्ट. तो इनके बारे में कुछ बातें भी करने वाले हैं. और ऐसे कुछ गाने आज आप बिटवीन 6 to 7 ट्रेंड मेकर्स में सुनने वाले हैं. सो बेसिकली इफ यू आर 90s फैन, अगर आपको 90s के गाने बहुत पसंद है जो आजकल आप ड्राइव शो में नहीं सुनते हैं, तो ये गाने आपके लिए रहने वाले हैं 6 to 7 के बीच में.

8:13 हो चुके हैं। फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं ड्राइव शो पावर ड्राइव एट 5, आप यहाँ पे सुन रहे हैं। एंड रिमेम्बर, राहत फतेह अली खान इसी सैटरडे को यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, वो यहाँ पे लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी सुपर सिटी में पहुँच जाएंगे और इनका शो जो है ये आप इंजॉय करने वाले हैं। नाउ अगर आपने टिकट खरीदी है यहाँ पे ऑलरेडी एंड या फिर आपने टिकट यहाँ पे जीती है, तो आप इस ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं जहाँ पे आप मीट एंड ग्रीट जी सकते हैं राहत फतेह अली खान के शो के लिए। यानी कि आप एक्चुअली में उनसे मिल सकते हैं, बट द ओनली कंडीशन इज कि आप उनसे तभी मिल सकते हैं अगर आपने टिकट खरीदी है। इन केस आपका नाम निकलता है और आपने टिकट नहीं खरीदी है, तो आप उनसे नहीं मिल पाएंगे। यू हैव टू बी देयर विद द टिकट अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं। सो आपके लिए ये कॉम्पिटिशन ओपन है। आपको करना क्या है, आपको RFK कीवर्ड के साथ अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर अगर आपने टिकट खरीदी है और आप इस ड्रॉ में शामिल होना चाहते हैं जहाँ पे राहत फतेह अली खान से आप मिलना चाहते हैं। सो RFK स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599, इस पे लिख के भेज डालिए और आपका नाम कल हो सकता है हमारी बर्थडे गर्ल पूजा शायद निकाले आपका नाम। सो मेक श्योर कि आप मैसेज RFK देन अपना नाम यहाँ पे लिखे भेज रहे हैं। यू स्टिल हैव टाइम टिल द मॉर्निंग। dryTickets.com पे जाके आप टिकट खरीद सकते हैं। यू कैन ओनली एंटर इन दिस कॉम्पिटिशन अगर आपने इस शो के लिए टिकट खरीदी हुई है। इसी सैटरडे को 25 जुलाई को ट्रस्ट अरीना में शो हो रहा है एंड या ये मौका है आपका राहत फतेह अली खान से मिलने का।

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता,

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Traffic.
2: The food show starts Thursday.
3: Fine overnight for Auckland. Southerlies, a low of 7 on the northern. It's heavy heading north through the Esmond Road interchange. We've got reports of a crash there. The northwestern slow from St Luke's to Te Ata 2. The southern is heavy southbound Newmarket to Sylvia Park, coming north from Sylvia Park to Green Lane. Southwestern heavy Puhinui Road through to Mangere Bridge and from Puhinui to the southern interchange.
2: Your foodie adventure awaits. Auckland Showgrounds. Tickets at foodshow.co.nz.
4: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
5: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call. Dash!
6: My mate Sam hurt his shoulder at basketball. He got sorted with a rehab plan and was doing his exercises, but he started feeling a bit down. So me and the boys made sure to visit him, and he helped with some coaching, so he still felt like part of the team. It meant he stayed active and on top of the injury. Then when he recovered, he was back to his awesome self.
7: If you've got a sprain or strain, staying connected to friends, whānau and things you love doing can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
8: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
9: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
10: क्यों, क्या हुआ?
9: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
11: Are you ready to go home?
8: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
12: Power Drive at 5.
13: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
14: 5:19 हो चुके हैं और आते हैं आज की गेम पे. और आज की गेम है करैक्टर गैस. सो करैक्टर गैस अगर आपने आज तक सुना है तो इसमें क्या होता है कि मैं और रुजबे इस वजह से खेलते हैं कि हम दोनों में से किसी एक ने एक करैक्टर के बारे में सोचते हैं. और ये करैक्टर कोई भी हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, सेलिब्रिटी हो सकता है, एनीवन. एंड यू नो उसके हिंट दिए जाते हैं और आपको यहाँ पर सवाल पूछने हैं जिसका जवाब हाँ या ना में यहाँ पर वन ऑफ अस हम देते हैं एंड देन आप आंसर तक पहुँचते हैं. 5 हिंट आपको मिलते हैं, 5 सवाल आपके पास होते हैं. एंड क्योंकि आज रुजबे यहाँ पे नहीं है, ही डिड द मॉर्निंग शो, सो मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है. सो आप ही को मैं हिंट दे रही हूँ जिस करैक्टर के बारे में मैंने सोचा होगा. ये अगेन कोई भी हो सकता है, तो मैं आपको इनके बारे में हिंट देने वाली हूँ और आप यहाँ पे कॉल करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और इवेंचुअली गेस कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ. आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल करके पूछेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे वे से इसको फिगर आउट कर पाएंगे. 0800 00, हम इट्स 0800 00 4866 जो नंबर है यहाँ पे आपको कॉल करना है. तो मेरा पहला हिंट है आपके लिए, ये जो पर्सन है, दिस पर्सन वोर द सेम स्टाइल ऑफ क्लोदिंग एवरी डे एंड इट बिकेम एन इंटरनेशनल सिंबल. इस पर्सन ने सेम टाइप ऑफ क्लोदिंग एवरी डे पहनी और वो एक इंटरनेशनल सिंबल हो गया इनकी जो क्लोदिंग थी. किसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ? सो यहाँ पे आप कोई सवाल पूछ सकते हैं कि यू नो ये पर्सन इस इंडस्ट्री से है, ये पर्सन यहाँ से है, यहाँ से बिलोंग करता है, इस पर्सन ने ये किया है, मेल है, फीमेल है, अलाइव है कि नहीं अलाइव है, ऐसे सवाल भी आपके हो सकते हैं. इट कैन बी एनी क्वेश्चन. सो कॉल नाउ 0800-00-HUM 0800-00-4866 इज अ नंबर जहाँ पे आपको कॉल करना है. सो मेरा पहला हिंट आपके लिए है कि ये जो पर्सन है इन्होंने सेम स्टाइल ऑफ क्लोदिंग एवरी डे पहनी है, एवरी सिंगल डे आई विल से, एंड इट बिकेम एन इंटरनेशनल सिंबल. कितने लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने सेम स्टाइल ऑफ क्लोदिंग एवरी डे पहनी होगी और उनका वो जो सेम स्टाइल ऑफ क्लोदिंग है वो एक इंटरनेशनल सिंबल बन गया, ये आपको यहाँ पे बताना है. सो लेट्स सी मेरे पास यहाँ पे फोन लाइन पे कौन है. हाय अभय, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ. कैन आई गेस डायरेक्टली? और
14: अरे सवाल सवाल पूछोगे ना तो यू विल बी सेफ, मतलब कि थोड़ा आप करीब हो जाओगे ना.
1: हाँ, सो इज दिस पर्सन वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स एवर?
14: वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर मतलब बेसिकली आप पूछ लो कि इसी के लिए ये जाने जाते हैं.
1: हाँ नहीं, मतलब वो चीज है उसके लिए नहीं, कपड़ों के लिए नहीं, बट किसी एक चीज जो उन्होंने इन्वेंट की है वैसा.
14: किसके बारे में सोच रहे थे?
1: मैं स्टीव जॉब्स के बारे में.
14: हाँ, मुझे ऐसा लगा था. या मेरे पास आया, मेरे पास स्टीव जॉब्स आया है. सो ओके, स्टीव जॉब्स इज नॉट द आंसर. ठीक है, मैं एक और हिंट देती हूँ यहाँ पे. तो ये तो हो गया कि वोर द सेम स्टाइल ऑफ क्लोदिंग एवरी डे, इट बिकेम इंटरनेशनल सिंबल. सेकेंड हिंट मेरा ये है, आई नेवर एक्टेड इन मूवीज, प्लेड स्पोर्ट्स और एंटर्ड पॉलिटिक्स, येट बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड नो माई नेम. तो ये पर्सन मूवीज में नहीं कभी आए, आए ये कभी, इन्होंने कभी कोई स्पोर्ट्स एज इन स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड जो लोग हैं ये बिलियंस ऑफ लोग जो है ये इनका नाम जानते हैं.
1: इज ही अ रिलीजियस लीडर, ही और शी?
14: दिस पर्सन वॉज कनेक्टेड टू रिलीजन. यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब No, this person is not Dalai Lama. But okay. yeah, you are going on a right track. ठीक है, सोचो आप थोड़ा और. ठीक है, ठीक है, ओके, बाय अभय, बाय. आई वॉज वेरी गुड वन बाय अभय. अभय बहुत आगे तक ले गए इस गेम को. नाउ यू नो कि किस ट्रैक पे आपको जाना है. सो मेरे पास जो आंसर्स आए हैं, मैसेजेस मेरे पास यहाँ पे बहुत आए हैं. कॉल कीजिए कोई, जैसे अभय ने यहाँ पे कॉल किया, सवाल पूछे, आप भी पूछिए. सो मैंने आपको बताया कि दिस पर्सन वोर द सेम स्टाइल ऑफ क्लोदिंग एवरी डे एंड इट बिकेम इंटरनेशनल सिंबल. सो एक्चुअली मैं उनकी वो जो क्लोदिंग्स है ना, दे आर ट्रेडमार्क्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ताकि उसका कोई कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके. सो लेट्स सी फोन लाइन पे कौन है. हाय,
10: हाय संडे.
14: यस हाय, क्या नाम है आपका?
10: पार्थ.
14: पार्थ, सो पार्थ क्या सवाल रहेगा आपका?
10: ये मेल या फीमेल है?
14: तो आपका सवाल है कि क्या ये मेल है, ये सवाल है, या फिर क्या ये फीमेल है, ये आपका सवाल है?
10: एक्चुअली क्या ये फीमेल है?
14: यस.
10: गेस कर लूँ मैं?
14: एक और सवाल पूछ लो यार, ताकि मैं और हिंट दे दूँ मैं.
10: क्योंकि मैं इसलिए मैंने फीमेल का बोला, क्योंकि मेरे आंसर है मेरे पास एक.
14: तो उसके रिलेटेड कुछ बताओ ना, किसके बारे में, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं.
10: वो इंडिया में बहुत टाइम रहे ना.
14: यू आर राइट पार्थ. अभी आप चुप रहिए, ठीक है?
10: ओके ओके, ठीक है, चलो
14: सही है, बाय बाय. पार्थ तो बहुत ही क्लोज आ गया यार, मेरे इतने सारे हिंट अभी बाकी थे. सो और मेरे पास जो मैसेज आए हैं, फैजिलत फ्रॉम पापटो, इन्होंने बोला है गांधी जी. सतीश का भी सेम मैसेज है, जसप्रीत ने बोला है. सो महात्मा गांधी इज़ नॉट द आंसर, महात्मा गांधी इज़ नॉट द राइट आंसर. सदगुरु मेरे पास आया है, इज़ नॉट द राइट आंसर. 4527 आपका आंसर एकदम सही है। हाय
15: हाय सैंडी, हिना हिया।
14: हिना कैसी है आप? अच्छा आपको कोई सवाल नहीं पूछना? अरे यार, अच्छा पहले तो रेडियो का वॉल्यूम धीरे कीजिए, बिकॉज आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। हाँ अभी सही है। तो
15: I heard actually like most of the hints.
14: Hmm.
15: So can I say the name?
14: ठीक है बताइए।
15: मदर टेरेसा
14: इज द राइट आंसर या। या आज मैंने ना खुद ही थोड़ा इजी रखा था। आई विल से लाइक दिस, जो हारता ऐसे बोलता है ना, मैंने आज इजी रखा था कि रुजबे यहाँ पे नहीं है।
15: थैंक यू सो मच। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम लाइक आई वाज काफी दिनों से सुन रही थी यही जो हिंट वाला था, बट सब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन वाला लग रहा था, बट आई डोंट नो टुडे क्या हुआ कि सब कुछ क्लिक किया। ऑल्दो मैंने लास्ट थ्री हिंट सुने, बट फिर मुझे एकदम से ऐसे लगा कि लाइक अभी इवन जो जेंडर आपने फीमेल या मेल बताया था, उससे पहले मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मदर टेरेसा होगा।
14: अरे वाह क्या बात है। सही है। थैंक यू सो मच हिना एंड कीप पार्टिसिपेटिंग।
15: Thank you so much.
14: Thank you. Bye bye.
15: Thank you.
14: So yeah, I was talking about Mother Teresa only. You know, इनके जो साड़ी ये पहनती थी जिसपे ब्लू स्ट्राइप्स थी, दे आर एक्चुअली ट्रेडमार्क्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ताकि उसका कोई कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड की थी 100 कंट्रीज में, सो वो भी एक्चुअली में इनकी काफ़ी अभी तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी चलती है। एंड मेरे पास तो बहुत हिंट्स थे यार आपको बताने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी एक्चुअली में इनके बारे में आपको बताने के लिए। इनफैक्ट आई वॉज रीडिंग कि इन्होंने वाइट हाउस एक बार विजिट किया था इन 1994 नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट के लिए। वहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीच दी थी। सामने बैठे थे US के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एंड वाइस प्रेसिडेंट, एंड उनके सामने उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी थी कि डेड साइलेंस वहाँ पे हो गई थी। इट वाज अबाउट अबॉर्शन लॉज एंड एवरीथिंग, एंड शी सेड दैट टाइप, जिसके ऊपर खैर बाद में डिवाइडेड ओपिनियंस रहे काफ़ी लोगों के कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट शी सेड कि बच्चों को किल मत करो, मुझे दे दो, मैं उनको पालूंगी। तो ये सब बातें भी उन्होंने वहाँ पे फुल ऑन एक्चुअली में की थी। वेल मुझे लगता नहीं कि मदर टेरेसा के बारे में ज़्यादा यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत है, एंड एवरीवन नोज अबाउट हर। बट थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए। सोम ने भी यहाँ पे आंसर भेज दिया था, और भी काफ़ी लोगों ने एक्चुअली में यहाँ पे सही आंसर भेज दिया था।
16: मैं लाऊं अपना ए गेम।
17: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

5:37 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और आपकी सुपर सिटी में गरबा नाइट भी होने वाली है, गरबा नाइट विद राज गढ़वी। लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांची ग्रुप आपके लिए लेके आ रहे हैं ये एक कल्चरल सेलिब्रेशन। सो गरबा विद सेंसेशनल राज गढ़वी, ये आप इंजॉय कर सकते हैं 1 अगस्त को, इसका हिस्सा बन सकते हैं। महात्मा गांधी सेंटर में ये इवेंट होगा। टिकट्स बहुत ही जल्दी जा रही है, सिक्योर योर टिकट नाउ eventstickets.co.nz, यहाँ पे जाइएगा आपको टिकट्स जो है मिल जाएंगी। और ये एक्चुअली में सोल्ड आउट इवेंट जाने वाला है, सो मेक श्योर कि टाइम पर आप अपने टिकट्स बाय कर रहे हैं। स्वप्निल शाह से बात कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, नंबर इज़ 0224394736।

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: 5:43 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं Power Drive at 5. फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही है स्कैम्स की यहाँ पे न्यूजीलैंड में फेक कीवी शॉप्स की. सो आपको कई बार अगर स्क्रॉलिंग करते समय ऐसी एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देती है जहाँ पे लिखा होता है कि मैसिव डिस्काउंट न्यूजीलैंड ओन्ड एंड वहाँ पे काउंटडाउन होता है जैसे कि ओनली 2 days लेफ्ट एंड कई बार होता है कि अरे यार 2 ही दिन में ये बार्गेन शायद ख़त्म हो जाएगी बिकॉज बहुत अपीलिंग लगता है ना कि 2 ही दिन तक ये जो डील है ये रहने वाली है. लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो कीवी लुकिंग स्टोर है ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. सो फेक ऑनलाइन स्टोर जो है ये ट्रिक कर रहे हैं न्यूजीलैंड शॉपर्स को बाय क्रिएटिंग वेबसाइट जो कि लोकल की तरह लगती है. सो वहाँ पे न्यूजीलैंड प्लेस के नाम होते हैं, फेक रिव्यूज़ होते हैं एंड कुछ इमोशनल स्टोरीज होती है लाइक क्लोजिंग डाउन सेल की या फिर लास्ट चांस क्लियरेंस की. काफ़ी शॉपर्स जो है दे आर रिसीविंग पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स वाइल अदर रिसीव नथिंग एट ऑल. ये रिपोर्ट्स यहाँ पे आ रही है. सो यू नीड टू रियली चेक केयरफुल अगर आपको स्क्रॉलिंग करते समय ऐसी एडवर्टीजमेंट्स, इनफैक्ट ऐसी एडवर्टीजमेंट्स फेसबुक पे बहुत ज़्यादा होती है. सो अगर आपको ये दिखाई दे रही है तो यू नीड टू टेक केयर. सो अगर आपको लगता है कि आपको आपका प्रोडक्ट सही नहीं है या फिर आपको यू नो डेडलाइन तक भी आपको आपका प्रोडक्ट नहीं मिला है तो ऑफ कोर्स इसके बारे में, स्कैम के बारे में आप रिपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं. कुछ स्कैम के रेड फ्लैग्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वेबसाइट बोल रही है कि न्यूजीलैंड ओन्ड है लेकिन कोई भी फिजिकल एड्रेस वहाँ पे नहीं है, इट्स वर्थ चेकिंग. उसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करो, नॉट जस्ट उनकी वेबसाइट पे जाके उनके बारे में पढ़ो लेकिन यू नो गूगल, चैट GPT, क्लॉड, ये जो AI के एजेंट्स हैं इन सबको लगा दो काम पे, उसके ऊपर सर्च करो इनके बारे में, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी डिटेल्स मिलेंगी. ह्यूज डिस्काउंट्स जो होते हैं कई बार, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही ब्रांडेड चीज़ है जो कि अदरवाइज़ 5,000 की होती है, अगर वहाँ पे तकरीबन आपको $100 की मिल रही है तो इसका मतलब कि डेफिनेट स्कैम है वो. सो ह्यूज डिस्काउंट्स मीन्स टू गुड टू बी ट्रू. अगर ओनली पेमेंट ऑप्शन वहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र है तो भी ये स्कैम हो सकता है. कोई रियल फ़ोन नंबर अगर वहाँ पे नहीं है, अगर फ़ोन नंबर है वहाँ पे तो डायल करके देखो, लेकिन अगर कोई फ़ोन नंबर नहीं है वहाँ पे देन देर इज़ अनदर रेड फ्लैग फॉर द स्कैम. एंड अगर वहाँ पे यू नो इंग्लिश में थोड़ी पुअर ग्रामर या फिर स्ट्रेंज रिटर्न पॉलिसीज वहाँ पे यूज़ की गई है तो वो भी पढ़िएगा. वेबसाइट का डोमेन जो होता है ये सबसे बड़ा कैची होता है. रिमेंबर अगर कहीं पे भी .co.nz लिखा है डज नॉट मीन ऑटोमेटिकली कि जो बिज़नेस है वो एक्चुअली में बेस्ड इन न्यूजीलैंड है. कहीं से भी कोई डोमेन बना सकता है जहाँ पे .co.nz होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड में रह के ही किसी ने वो डोमेन बनाया होगा. सो मे बी यू नो जस्ट सर्च मोर अबाउट इट, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है और काफ़ी लोगों को उसका वापस नहीं मिलता है. इनफैक्ट इसमें ये स्कैम भी हुआ है कि एक पर्सन ने इसमें वेबसाइट में लॉगिन किया, अपने बैंक डिटेल्स पेमेंट के लिए डाले एंड देन उसके बैंक डिटेल्स परमानेंट वहाँ पे है और नेक्स्ट टाइम पर भी उसके बैंक अकाउंट से वो जो मनी है वो कट गई है एंड देन द पर्सन हैड टू गो एंड कैंसल द बैंक अकाउंट. मतलब अपना बैंक कार्ड जो है एक्चुअली में, नॉट अकाउंट सॉरी, अपना बैंक कार्ड जो है उसको कैंसिल कराना पड़ा बिकॉज देर वॉज नो अदर वे. सो दीज स्कैम्स आर हैपनिंग अ लॉट नाउडेज स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड में. सो मेक श्योर कि आप इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go! 3, 2, 1.
1: Trend Makers. ट्रेंड मेकर्स आपके लिए शुरू हो चुका है यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी राइट नाउ. और ट्रेंड मेकर्स में आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं आनंद बख्शी को. आनंद बख्शी जो कि पोइट रह चुके हैं एंड लिरिसिस्ट रह चुके हैं, बॉलीवुड में 3000 से गाने इन्होंने लिखे हुए हैं और बहुत ही हिट ट्रैक्स बॉलीवुड को इन्होंने दिए हैं. सो आज जानेंगे आनंद बख्शी को थोड़ा सा और उनके लिखे हुए गाने भी हम यहाँ पर सुनने वाले हैं. वैसे लिरिसिस्ट बनने से पहले आनंद बख्शी इनका एक ड्रामेटिक मिलिट्री करियर भी रहा है. रॉयल इंडियन नेवी में ही जॉइंड एट द एज ऑफ 14 एज अ बॉय वन. तो इस सर्विस में इन्होंने एक हिस्टोरिक 1946 रॉयल इंडियन नेवी में पार्टिसिपेट किया था इन बॉम्बे हार्बर अगेंस्ट ब्रिटिश.

ब्रिटिश रूल, जहाँ पे ये अरेस्ट भी हुए थे, डिटेन भी हुए थे, एंड देन ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द नेवी एज वेल. देन इंडियन आर्मी इन्होंने ज्वाइन की थी 1947 टू 1956. सो पार्टीशन के बाद द फैमिली जो थी इनकी डिस्प्लेस हो गई थी फ्रॉम रावलपिंडी. ही इनलिस्टेड इन इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स एंड देन लेटर सर्व्ड एज ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रीशियन इन EME, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कैटेगरी होती है, जहाँ पर उन्होंने 9 साल गुजारे आर्मी में. उसके बाद उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज लिया एज अ वॉलंट्री एंड परस्यू किया म्यूज़िक इन मुंबई. लेकिन मुंबई में भी इनके लिए जो जर्नी थी वो ईजी नहीं थी. पहली बार जब ये मुंबई में आए टू ब्रेक इन टू द फिल्म इंडस्ट्री, ही वॉज पैनीलेस. ये दादर रेलवे स्टेशन, वहाँ पे ये सोया करते थे वहाँ पे वेटिंग रूम में, और वहाँ पे कविताएं लिखा करते थे बेंच पे बैठ के. एट वन पॉइंट ही ऑलमोस्ट गिव अप एंड ट्राइड ड्राइविंग द टैक्सीज एज वेल. लेकिन देन धीरे धीरे इनको अपना रास्ता दिखाई दिया. एक टिकट कलेक्टर थे जिन्होंने इनको 3 साल शेल्टर दिया, और वहीं से इनको थोड़ा मोटिवेशन मिला म्यूज़िक की और अपना करियर बढ़ाने के लिए. तो सुनते हैं अनंत बख्शी का लिखा हुआ दिस ब्यूटीफुल ट्रैक DDLJ मूवी का. तुझे

आनंद बख्शी लिरिसिस्ट को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्रेंड मेकर्स में, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आनंद बख्शी जो है इन्होंने हमेशा रॉ एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज लिखी, पॉपुलर स्ट्रीट लैंग्वेज भी इन्होंने यूज़ की अपने बहुत सारे गानों में। काफ़ी गाने इनकी कंट्रोवर्सी में भी रहे थे, फॉर एग्जांपल खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है। सो ओवर 30 पोलिटिकल एंड रिलीजियस ग्रुप्स जो थे इन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस गाने को लेके कि ये गाना वल्गर है, डबल मीनिंग का है। काफ़ी रेडियो स्टेशंस में एंड इंडिया में दूरदर्शन में इस गाने को बैन किया गया था। जो कंट्रोवर्सी थी इनकी गाने की वो पार्लियामेंट तक गई थी। सो आनंद बख्शी डिफेंडेड द ट्रैक एक्सप्लेनिंग इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक म्यूज़िक थीम। सो अगर वो वहाँ पे चल सकता है तो ये गाना एक बॉलीवुड मूवी में क्यों नहीं चल सकता है, बिकॉज वहाँ पे फोक है तो ये गाना चलेगा, लेकिन यहाँ पे बॉलीवुड थीम है तो गाना क्यों नहीं चल सकता है। सो द सॉन्ग वेंट ऑन टू सेल ओवर 10 million कैसेट्स इन इट्स फर्स्ट वीक, इतना ज़्यादा ये गाना एक्चुअली में फेमस हुआ। देयर वाज अनदर सॉन्ग जो कॉन्ट्रोवर्सी में गया था इनका लिखा हुआ, वो था दम मारो दम हरे रामा हरे कृष्ण का, जो कि 1971 मूवी का था। देवानंद ही ऑलमोस्ट स्क्रैप द सॉन्ग राइट बिफोर रिलीज, बिकॉज उनको लगा कि ये जो लाइन्स है बीच में दम मारो दम अलॉन्ग साइड हरे कृष्ण हरे राम, ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी, ये सही नहीं था। बट देन द म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन एंड सिंगर जो आशा भोसले थी, इन्होंने फाइट किया टू रिटेन द ट्रैक। सो इस गाने को भी टेम्प्ररी कुछ रेडियो स्टेशंस में उस समय पर बैन किया गया था, लेकिन इवेंचुअली ये गाना यूथ एंथम उस समय पर बन गया था। एंड नाउ सुनते हैं उन्हीं का लिखा हुआ गाना ताल मूवी का। ताल में उन्होंने कोलैबोरेट किया था ए आर रहमान के साथ टू क्रिएट दिस एल्बम, जो कि ट्रेडिशनल इंडियन फोक क्लासिकल रिदम एंड मॉडर्न पॉप भी इस गाने में थे। एंड इस मूवी के लिए एक्चुअली में इस मूवी के गानों के लिए उनको अवार्ड, आनंद बख्शी को अवार्ड भी मिला था। वैसे लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप इनकी सुभाष घई डायरेक्टर के साथ रही थी, उन्होंने बहुत सारी उनके साथ मूवीज़ की, जैसे कि कर्ज मूवी, हीरो मूवी, राम लखन, खलनायक एंड परदेस मूवी भी उनके साथ इन्होंने की।

0: Trend Makers.
1: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
7: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
8: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
9: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
9: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
11: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
12: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
13: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
14: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
13: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
14: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
13: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
15: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
16: Looking to escape the winter chill? Qantas is now flying direct from Auckland to the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and at least 30 kilos of checked baggage included in the fare when you fly with Qantas. Plus, Qantas is the only airline offering a business cabin on this route. From sun-soaked beaches and luxury retreats to waterfront dining and lush hinterland escapes, the Gold Coast is waiting. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply.
0: The beat of Bollywood.
17: World's best, Hamari good brands me.

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now.
1: Trend makers, आज आप यहाँ पे सुन रहे हैं जिसमें अनंत बख्शी को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उनको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, पोएट एंड लिरिसिस्ट को. ये सीक्रेट घोस्ट कंपोजर भी थे, ये टैलेंट भी था इनके अंदर. ये सिर्फ लिरिक्स नहीं लिखते थे, ये कई बार अपने गानों की ट्यून भी बना के आगे देते थे कि मेरा जो गाना जो मैंने लिखा हुआ है ये इस वे से साउंड करेगा. अकॉर्डिंग टू लता मंगेशकर, बख्शी पोसेस्ड अ डीप नॉलेज ऑफ फोक म्यूजिक, स्पेशली पंजाबी ट्रेडिशंस की, एंड घोस्ट कंपोज्ड बहुत सारे हिट ट्रैक्स जो कि ऑफिशियली किसी और प्रोमिनेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अपने नाम के अंडर रिलीज किए थे. लेकिन खैर, इसके बारे में उन्होंने कभी खुल के किसी चीज़ को क्लेम करने की कोशिश नहीं की. जो भी आप गाना सुनने वाले हैं, ये 1997 की ब्लॉकबस्टर मूवी दिल तो पागल है का है. इस मूवी के जो गाने थे, आइकॉनिक हाई एनर्जी म्यूजिकल प्रोजेक्ट था अनंत बख्शी के करियर में. सो एट 67, जब बहुत सारे राइटर्स जो है ये वाइंड डाउन करना शुरू कर देते हैं, बख्शी ही पेन द लिरिक्स फॉर यूथ सेंट्रिक, एक ब्रॉडवे स्टाइल में एक डांस म्यूजिकल मॉडर्न रोमांस को लेके इन्होंने जो लिरिक्स है इस मूवी के लिए लिखे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट भी गए. और इसमें इनका एक रेयर म्यूजिकल पेयरिंग भी था डायरेक्टर यश चोपड़ा. ही वर्कड विद लेजेंडरी कंपोजर्स लाइक शिव हरी, हरिप्रसाद चौरसिया या आर डी बर्मन. दिल तो पागल है के लिए ही ब्रॉड उत्तम सिंह, जो कि पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम करते थे. सो बख्शी ब्रिज द गैप सीमलेसली, जहाँ पे उन्होंने न्यू कंपोजर्स को क्राफ्ट किया एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल्बम के साथ. सो ये जो एल्बम थी उस समय पर 90s की यूथ वॉइस यूथ एल्बम ही एक्चुअली में बन गई थी, जो कि मैसिव कमर्शियल सक्सेस भी थी.

ट्रेंड मेकर्स में अनंत बख्शी, पोइट एंड लिरिसिस्ट, इनके लिखे हुए गाने आज आप यहाँ पे सुन रहे हैं, जिनको आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेल, अनंत बख्शी के बारे में बातें करते हुए, वैसे इनका एक यूनिक पर्सनल हैबिट भी था। ओपनिंग रिचुअल इनका होता था कि एवरी टाइम ही स्टार्टेड अ न्यू सॉन्ग राइटिंग डायरी, वे एक फ्रेज लिखते थे, आई एम बीइंग ऑफ डिवाइन लाइट एंड पावर, ऐसा वो लिखते थे ऑन द वेरी फर्स्ट पेज। और उसके बाद एक्चुअली में वो अपनी राइटिंग शुरू करते थे। मुझे लगता है कि उस टाइम की ये इनका वो रहता था, जैसे एक ग्रेटिट्यूड वाला या मैनिफेस्टेशन कह लो, उस वे से ये अपना रिचुअल उस समय पर किया करते थे, जो आजकल काफ़ी लोग इस ट्रेंड को अभी भी फॉलो करते हैं। लेकिन डायरी को लेके मैंने देखा है काफ़ी लोगों के अंदर ये होता था पहले भी, कि जब भी कोई डायरी अपनी शुरू करता था तो सबसे पहले कुछ ना कुछ ऊपर, यू नो, रिलीजियस वे से कुछ ना कुछ ऊपर लिखना, ओम लिख देना, एक ओंकार लिख देना, या कुछ भी अपने रिलीजन के हिसाब से ऊपर लिख देना। ये मैंने काफ़ी लोगों का नोटिस किया है। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? अगर आपने किया है तो आपने क्या लिखा है कोई भी डायरी शुरू करने से पहले, या फिर नोटबुक में भी, स्कूल में भी नोटबुक पे शुरू करने से पहले, काम शुरू करने से पहले ऊपर ऐसा कुछ लिखना जिसे आप मानते हैं? अगर आपने भी किया है और क्या किया है, शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, 5599 इज अ नंबर। वैसे इनके बारे में बात करते हैं, अनंत बख्शी का ये जो आप गाना सुनने वाले हैं अभी, सो दिस वॉज अनदर हिट ट्रैक। एक्चुअली में परदेस मूवी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। परदेस मूवी जो थी इन्होंने की, जिसमें इन्होंने काफ़ी गाने इस मूवी के लिखे थे। ये इनके पास जब मूवी आई तो इनको पता था कि ये जो मूवी है, जो इसकी कहानी है, इसके लिए रोमांटिक ट्रैक्स ये मूवी जो है ये डिज़र्व करती है। और ये जो रोमांटिक गाना इन्होंने लिखा, जो कि कुमार शानू एंड अलका याग्निक की आवाज़ में है, ये काफ़ी लोगों के लिए ड्रीम गर्ल, उस समय का 90s का ड्रीम गर्ल काइंड ऑफ गाना बन गया था। जैसे पहले अगर ड्रीम गर्ल गाना धर्मेंद्र का आया था, तो इसमें ये ड्रीम गर्ल काइंड ऑफ सॉन्ग जो था ये शाहरुख खान के ऊपर फिल्माया गया था। वैसे लिस्ट में देखा जाए तो 90s में काफ़ी सारे गाने अनंत बख्शी के लिखे हुए शाहरुख खान के ऊपर बेस्ड है।

ट्रेंड मेकर्स में आज हमने सेलिब्रेट किया अनंत बख्शी को, उनके लिखे हुए गाने आज हमने एक्चुअली में यहाँ पे सुने। अनंत बख्शी की वैसे बात की जाए तो इनकी कोलैबोरेशंस जो थी ये बहुत ही आइकॉनिक म्यूजिक कंपोजर्स के साथ रही है, जिसमें एस डी बर्मन से लेके आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शिव हरि, जतिन ललित, ए आर रहमान, एंड बहुत ही सुपर मूवी जैसे कि आराधना, अमर प्रेम शोले, अमर अकबर एंथोनी, कर्ज मूवी, डी डी एल जे, चांदनी मूवी, गदर एक प्रेम कथा, इन सब मूवीज़ के गाने इन्होंने लिखे हैं। इनको प्रेस्टिजियस फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट 40 टाइम्स में ये नॉमिनेट हुए हैं, जहाँ पे 4 बार इनको थ्रू आउट हिज करियर अवार्ड मिला है। वेल, इनका ये जो अभी आप गाना यहाँ पे सुनने वाले हैं, जिस मूवी का अभी आप यहाँ पे गाना सुनने वाले हैं, दिस वॉज अनदर एपिक सॉन्ग जो कि हिट हुआ। ये जो सॉन्ग है ये मार्क करता है हिंदी फिल्म डेब्यू ऑफ 16-year-old दिव्या भारती। सो ये दिव्या भारती का ब्रेकआउट मोमेंट था जिसमें एनर्जेटिक डांस चाहिए था, तो उस हिसाब से इन्होंने इस गाने को लिखा था। सो जो कंपोज़र थे विजू शाह, उन्होंने उस समय पर अनंत बख्शी के साथ काम किया, इसकी मेलोडीज़ के ऊपर भी उन्होंने इनके साथ मिलकर काम किया था, बिकॉज इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी, एक यूरोपियन हिट गाना है 1987 में, वहाँ से इस गाने की कंपोजिशन की उन्होंने जो इंस्पिरेशन है ये ली थी। जो इस मूवी का सेंट्रल फ्रेज है जो सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, इट ड्रॉज फ्रॉम क्लासिकल इंडियन फोकलोर एंड फेरी टेल्स, जहाँ पे क्रॉसिंग 7 सीज जो है ये रिप्रेजेंट करता है अनब्रेकेबल कमिटमेंट टू लव। तो अनंत बख्शी ने इसलिए इस लाइन को इंक्लूड किया था बिकॉज वो एक एशियन स्टोरी टेलिंग वहाँ पे देना चाहते थे, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्को बीट के साथ, जो इन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट किया। वेल, ये गाना आज भी बहुत सारी मूवीज़ में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। तो ये गाना सुनते हैं। वेल, 90s में ये गाना बहुत हिट रहा, लेकिन आज के टाइम पे भी क्लब नाइट्स, डीजे सेट्स, हर जगह पे इस गाने को यूज़ किया जाता है। अनंत बख्शी के लिखे हुए गाने आज आपने सुने ट्रेंड मेकर्स में। अगर आपको पसंद आए हैं तो कोशिश करेंगे इस सेगमेंट को रोवा ऐप पर भी लेके आने के लिए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप हमिंग 104.2 FM। आप सुनते रहेगा या फिर रोवा के ज़रिए सुनते रहेगा। कल आपसे मुलाकात होगी कॉफ़ी ब्रेक में 3 बजे।

0: माशाल्लाह इंशाल्लाह क्या बात है, आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे।
1: हम कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन।
2: ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਨਾ।

0: नाइट कैफे,
1: हम पर नाइट कैफे की महफिल लगी हुई है और मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि एक म्यूजिकल जर्नी है। ऐसे में आपके साथ में कुछ म्यूजिकल ट्रिविया भी शेयर कर लेता हूँ। आपको याद होगा एक गाना है, एक गीत है जिसे जगजीत सिंह ने गाया था, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और ये जो गाना है फिल्म साथ साथ से है, फ्रॉम 1982। और जावेद अख्तर ने अभी हाल ही एक इंटरव्यू में बताया कि इतना प्यारा गाना लिखने में उन्हें सिर्फ 9 मिनट्स ही लगे हैं और टोटल 9 मिनट्स में उन्होंने पूरा का पूरा गाना सुबह 2 बजे स्टार्ट किया तो लगभग 2:09 AM तक उन्होंने पूरा गाना लिख दिया था। है ना ये कमाल की बात।

0: la rajni bewal hola
1: Night Cafe on Hum.
2: Driving you home.
3: Drive show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: It's the final days of Big Save Stock Liquidation Whiteware Clear Out. We're massively overstocked and everything must go. We've got washing machines, dryers, fridges and dishwashers from only $2.98. Get a Panasonic 7kg washing machine only $7.99. Or a Robinhood 197-litre fridge only $4.99. Plus need it now? Take it home today. Only at Big Save.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
8: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
9: Join our tribe!
8: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
9: join our tribe!
10: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
11: Night Cafe on Hum.
12: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और नाइट कैफे का ये माहौल है। आपको बता दूं गरबा नाइट विद राज गढ़वी सेलिब्रेट करने का मौका है जबकि ये लाइव इन ओकलैंड रहेंगे। और गरबा अगर जो अभी तक आपने नहीं खेला है तो एक अच्छा मौका है आपके पास में, जबकि इनको लेकर आ रहे हैं लोटस प्रोडक्शंस, साथ में श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांची ग्रुप। और गरबा नाइट विद द सेंसेशनल राज गढ़वी लाइव इन ओकलैंड एक मौका रहेगा आपके पास में। सैटरडे 5 अगस्त को आप महात्मा गांधी सेंटर में इसे एंजॉय कर सकते हैं। टिकट्स बहुत फास्ट बिक रहे हैं। अगर जो अभी तक आपने अपने टिकट्स नहीं लिए तो eventstickets.co.nz पर जाइए, eventstickets.co.nz पर जाइए और यहां पर अपने टिकट्स अभी से ही ले लीजिए, क्योंकि आप इसे किसी भी कॉस्ट पर मिस नहीं करना चाहेंगे। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्वप्निल को कॉल कर सकते हैं 0224394736। याद रहे 0224394736 पर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। और एक और एक मौका है डबल पास जीतने का। अगर जो आप डबल पास जीतना चाहते हैं तो सिंपली टेक्स्ट कीजिए RG, शॉर्ट फॉर्म फॉर राज गढ़वी, RG लिखकर अपने नाम के साथ में 5599 पर भेजिए और आपका नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा।

हम पर, जबकि ये नाइट कैफे है और नाइट कैफे में आपके लिए इंटरेस्टिंग म्यूजिकल जर्नी एक चल रही है और हमने सोचा आपके साथ में शेयर कर ले बॉलीवुड की म्यूजिकल इंडस्ट्री से कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में अलग अलग समय पर जहाँ पर एक फादर ने भी म्यूजिक दिया है, एक पिता ने भी म्यूजिक दिया है एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, फिर आगे चलकर उनके बेटे ने भी बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया है। इनमें एक नहीं बल्कि दो तीन ऐसी जोड़ियाँ हैं। सबसे पहला पहल एस डी बर्मन, जो अपने समय के एक बहुत ही फेमस मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे। उसके बाद में उनके बेटे आर डी बर्मन, जिनको पंचम भी कहा जाता था। तो एस डी बर्मन और आर डी बर्मन की एक जोड़ी है जिन्होंने अपने समय पर अलग अलग तरीके से म्यूजिक दिया है। और फिर उसके बाद में सरदार मलिक एंड द फेमस अनु मलिक, इन्होंने भी एक फादर एंड सन की जोड़ी है जिन्होंने अपने अपने समय पर म्यूजिक दिया है। सरदार मलिक ने 50s और 60s में काम किया है और जैसे सारंगा तेरी याद में इन्होंने कंपोज किया था। और उनके बेटे अनु मलिक तो आज भी रेलेवेंट है और आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये सभी कुछ बातें हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहे थे। और आपको बता दें कि इनके अलावा एक और एक जोड़ी है राजेश रोशन और साथ में रोशन लाल नागराज की, यानी कि रोशन लाल ये राजेश रोशन के पिता है। और राजेश रोशन ने शुरुआत की थी फिल्म जूली से और आज भी जब भी इनके भाई राकेश रोशन मूवीज़ बनाते हैं ज़्यादातर के यही म्यूज़िक दिया करते हैं।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर नाइट कैफे में जस्ट आफ्टर नाइन अभी ही आपने ट्यून इन किया है, आपका खास स्वागत करते हैं. वेलकम टू द शो. 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. ऐसे में आपको बता दे, द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान, द म्यूजिकल राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर, और आपको सिर्फ इन्हें देखना है एट द ट्रस्ट अरीना ओकलैंड 25th of July यानी इसी वीक को. और इनको लेकर आ रहे हैं जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और साथ में शहजादा प्रोडक्शन. टिकट्स के लिए आप dryTickets.com पर सकते हैं, सो दैट यू आर देयर टू वॉच हिम परफॉर्म लाइव.

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में। आपको बता दे बाली एंड बैंकॉक गेटअवे के बारे में, जिसे आपके लिए लेकर आ रहे हैं सैंडी एंड रुस्बे। और ये जो ट्रिप है, इनक्रेडिबल ट्रिप, ये रहेगी मार्च 2027 में, जहां पर आप बैंकॉक भी घूमेंगे और बाली भी घूमेंगे, है ना। अच्छी बात, जहां पर एक ही ट्रिप में आप दोनों जगहों पर घूम फिर सकते हैं और लोकल एक्सपीरियंसेस का पूरा मज़ा ले सकते हैं, जैसे अमेजिंग स्ट्रीट फूड और साथ में जो अनफॉरगेटेबल नाइट लाइफ है, यहां पर आप सभी कुछ एक्सपीरियंस कर सकेंगे। और अगर जो आपको अकेले ट्रेवल करने में दिक्कत है, परेशानी है, तो आप सैंडी और रुस्बे के साथ में एक ग्रुप में जाकर घूम फिर सकते हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजिए और यहाँ से आपको एक इंक्लूसिव टूर प्राइस मिलेगा, ताकि आप अभी से ही प्रिपेयर कर सकें। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और अगर जो आपसे हो सके तो इसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप बैंकॉक और बाली इत्मीनान से घूम सके इन दी अमेजिंग कंपनी ऑफ सैंडी एंड रुस्बे।

0: Coffee on Hum.
1: हम पर आपके लिए अमेजिंग अमेजिंग कम्युनिटी न्यूज़ भी लेकर आते रहते हैं ताकि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है इससे आप फ़ायदा उठा सकें. फिजी ग्रिमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड इन एसोसिएशन विद एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस ये मिलकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026 जहाँ पर बिल्कुल एंट्री फ्री है. तो आपको सिर्फ जाना होगा 26 जुलाई को A1 इवेंट सेंटर 8731 ग्रेट साथ रोड पापटोए. ये इसी वीक संडे को है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक जहां पर आपके लिए फ्री स्क्रीनिंग किया जाएगा. मेडिकली ब्लड प्रेशर नापा जाएगा साथ में ECG और आई टेस्ट भी किए जाएंगे आपके लिए. इसके अलावा यहां पर आपको CPR कैसे दिया जाता है आपको सिखाया जाएगा और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आपके साथ में कराया जाएगा. ये सभी कुछ मौका है आपके पास में और ये सब करने के लिए आपको सिर्फ जाना है हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026 जो संडे 26 जुलाई को रहेगी सुबह 10 बजे से 731 ग्रेट साउथ रोड पापटोए ही आपको जाना है.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
0: Night Cafe.
2: Yo, main hoon chhota sa chhora.
0: You're listening to Avineet.
3: हम पर ये नाइट कैफ़े का सिलसिला है, मैं हूँ अभी आपके साथ में 12 तक आपका साथ देता रहूँगा। कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन इस आवर पर भी है और इसके साथ में कुछ सूदिंग और मेलोडियस नंबर्स आपके लिए चुनकर लेकर आया हूँ।

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी। हमें मालूम है हमारे जितने लिसनर्स सुनते हैं नाइट कैफे, खासकर आपको म्यूजिक की काफी इंटरेस्ट होती है और इसी बातों को ध्यान में रखकर आपके लिए कुछ ना कुछ म्यूजिकल ट्रिविया ढूंढकर लेकर आते रहते हैं। आपको याद होगा वो गाना लग जा गले, जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से लता मंगेशकर ने गाया था। ये जो गाना है फिल्म आई थी 1964 में, वो कौन थी? और आपको जानकर हैरानी होगी कि जबकि ये वर्जन, ये गाना ओरिजिनल वर्जन काफ़ी पॉपुलर हुआ है ओवर द ईयर्स, और इसकी पॉपुलरिटी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी लोगों ने, सिंगर्स ने इसे रिक्रिएट भी किया है। इतना फेमस ये गाना हो चुका है। लेकिन जब ये फिल्म इनिशियली बनी थी वो कौन थी 1964 में, उनके म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने इस गाने को कंपोज किया था। इनिशियली फिल्म के डायरेक्टर ने मना कर दिया था, राज खोसला ने इस गाने को मना कर दिया था और फिल्म में नहीं रखने वाले थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने बात की एक्टर मनोज कुमार से, जो उस फिल्म में स्टार कर रहे थे, और मनोज कुमार को उन्होंने बताया कि आप राज खोसला से बात कीजिए कि इस गाने को ज़रूर फिल्म में रखें, और तब यही हुआ। मनोज कुमार ने बात किया और फाइनली गाना फिल्म में इंक्लूड हुआ। तो ज़रा सोचिए, जो गाना इतना कल्ट हो चुका है, शायद कहीं कहीं वो इनिशियली इस फिल्म में होती ही नहीं।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the Media Works Foundation.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: Night Cafe.
4: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और आपके लिए लेकर आए हूं कम्युनिटी न्यूज़ इस बार श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में है ये आयोजन करने जा रहे हैं अखंड रामायण पाठ की जो सरडे 1st of August और साथ में संडे 2nd of August को रहेगी सरडे सुबह 7 पर रोड पूजा के साथ में ये पाठ आरंभ होगी और ये जो रामायण पाठ है चलती रहेगी संडे सुबह 10 बजे तक 2nd August को और इसके बाद में हवन एंड आरती भी रहेगी आपके पास में मौका है इसमें जाकर आप शामिल हो सकते हैं Throughout the program, Mahaprasad diya jayega aur jankari ke liye 09836-4647 par aap call kar sakte hain.

हम पर नाइट कैफे का सिलसिला है और आपको बता दें कि हम अक्सर ऐसे ऐसे बातों को भी आपके सामने लेकर आते रहते हैं जो शायद कहीं ना कहीं एक चैलेंज है जिसे हम फेस करते रहते हैं। सैंडी और रुजबे ने अपने अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में बातें की हैं शनील लाल के साथ में, जो काफ़ी हद तक LGBTQ के लिए, उनके राइट्स के लिए वो बातें करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे में एक पावरफुल कन्वर्सेशन है जहां पर इन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे इनके प्रेफरेंस को लेकर, इनके चॉइसेस को लेकर इनको टारगेट किया जाता है और कैसे इन सभी से ऊपर उठकर ये ओवरकम करते हैं इन परेशानी को और साथ में इन ऑब्स्टिकल्स को। तो अगर जो आपको भी किसी सहारे सपोर्ट की ज़रूरत है तो एक ऐसी पॉडकास्ट जो आपको इनकरेज कर सकती है, इसके लिए सिर्फ ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजिए और आपको पूरा का पूरा ऑडियो मिल जाएगा। इसके साथ में ब्रेकफास्ट का केचअप जो हमारे साथी विजय और पूजा लेकर आते हैं सुबह सुबह आपके लिए, इसके केचअप को सुनने के लिए, इस केचअप को सुनने के लिए राधा आप BF लिखकर 5599 पर भेजिए और आपको पूरा का पूरा पॉडकास्ट मिल जाएगा।

0: डांस बसंती।
1: हम पर अभी का साथ है। आपको बता दूं कि रोवा की ढेर सारी खूबियां हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहला जो है, हम म्यूज़िक स्टेशंस भी यहां पर है आपके लिए, जहां पर हम रिवाइन के नीचे आप 60s और 70s के एवरग्रीन नगमे सुन सकते हैं। इसके साथ साथ हम 80s जुग बॉक्स है, जहां पर 80s के गाने आपके लिए स्टोर किए गए हैं। इसके अलावा फिजी भजन्स भी है, जिसका आप मज़ा ले सकते हैं। एट योर ओन कन्वीनियंस चर्दी कला है, पंपिंग पंजाबी हिट्स के लिए। उसके साथ साथ फिजी कीर्तन संग्रह भी है, यहाँ पर आप फिजी के कलाकारों की आवाज़ में कीर्तन को सुन सकते हैं। और साथ साथ में राहत फ़तेह अली खान का एक खुद का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर इनकी गाई हुई सूफी और कव्वालियों को आपके लिए स्टोर किया गया है। तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, अगर जो अभी तक आपने रोवा डाउनलोड नहीं किया है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि हम म्यूज़िक स्टेशन में आप जाकर जुड़ सकें। सुनो।

0: से ऑन हम।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: The long weekend. Time to kick back, relax, reflect, and think of something good to do together. Something that'll really bond you. Something selfless that'll give life just a little more purpose. Something like getting a group of blood buddies together to give blood or plasma. This winter, with all the dreaded loogies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
6: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating. And now, FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
7: Zabardast hits.
8: Shuru ho jaye to rukte nahi.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Hum.
7: Night Cafe on Hum.
10: हम पर आप सुन रहे हैं नाइट कैफे, अभी का साथ है। बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा, बस साथ देते रहिएगा। 104.2 FM साथ में रोवा पर हमारी आवाज़ आप तक आ रही है।

हम पर आज के लिए बस इतना ही। रात 8 से आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से निकलकर जा रहे हैं और यही वादा किए जा रहे हैं कल एक बार फिर आपके साथ में हो जाएंगे। रात 8 से लेकर आएंगे एक नया नाइट कैफे का प्रोग्राम। तब तक के लिए आप अपना खुद का ख्याल रखिएगा। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: Night Fly.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: What?

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
1: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
1: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
2: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
3: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
4: Join the Tribe!
3: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
4: join the Tribe!
5: Playing Bollywood's biggest hit.

0: flight on Hum.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: Media voice complaints. How can I help?
7: My kids won't shut up.
6: I'm not sure that's our problem.
7: They keep reciting lines from one of your radio ads.
6: Aw, cute.
7: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
8: What do you want, son?
9: I want me some of that real southern chicken.
7: 28 times.
6: So where are you now?
7: Eating chicken.
10: Advertise with
11: Media Works.
10: New Zealand listens to us.
12: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की, जैसे घर पर मिलती थी। तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री। परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। कशिश नेचुरल योगर्ट।
13: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
13: Nightfly.

0: जी
1: हेलो हां जी
0: सुप्रियाल जी
1: सुप्रियाल की हो जाना
2: असित

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन, आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: These kebabs are amazing. Spices make them right and meat is so juicy.
1: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
2: 100% authentic and pure as mother's love.
3: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.

0: Punjabi.com because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हम सब की वास्तविक संपत्ति को लूटा करते हैं। इन पांचों लुटेरों को हम अपने साथ रखते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं, इनको प्रसन्न रखते हैं और ये हमें लूटा करते हैं। इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे एक दिन।

इस भजन में यह वर्णन है कि मनुष्य अलग अलग अवस्था में अलग अलग कार्य करता है। एक काम करना भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना। ऐसे कौन से कारण हैं कि वो भूल जाता है भगवान का नाम लेना, वही एक एक अवस्था को लेकर समझाया है।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
4: What if your next holiday wasn't just a holiday,
5: but the adventure everyone talks about?
4: Imagine chasing waterfalls,
5: wandering lush rice terraces,
4: catching unforgettable sunsets,
5: and relaxing at iconic beach clubs.
4: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
5: discovering incredible temples,
4: tasting world-famous street food.
5: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
8: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI।
9: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz।
13: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Officials are investigating a mysterious hazardous substance spill which forced evacuations in Waikato's Tuakau for a period last night. An unknown chemical entered drains by the water treatment plant, which then had to be flushed by fire crews. Northland's MP wants to crack down on the sale of glass meth pipes in shops. A briefing paper reveals it is illegal and the issue comes down to a lack of enforcement. Grant McCullum will be meeting with police to discuss the issue.
15: I'll be doing that in the next couple of weeks for sure when I'm up in the north, sit down and say, okay, how are we going to approach this? Because ultimately, it's not acceptable to have utensils for drug use freely sold.
14: There's doubts consumers will bear the full brunt of rising inflation as it hits 4.1%. Westpac senior economist Satish Ranshod says the increased costs may not be passed on.
16: Demand in the economy is soft, and that's limiting how far and how fast businesses can raise prices.
14: Organisers of Rhythm and Vines are staying tight-lipped about the festival's new location. It will say goodbye to its Gisborne home for the last 24 years with a final hurrah this summer. CEO Kieran Spillane says it's about future-proofing.
16: To grow, to give us more capacity, better access, more opportunity, so R&V can thrive for the next generation of festival fans.
14: To rugby with Shift 4 All Blacks lock, Fabian Holland is set to make his long-awaited return from injury this week. He's been out since February with a dislocated shoulder. Otago coach Mark Brown set to unleash him in Friday's Ranfurly Shield defence against Mid Canterbury and Alexandra.
17: He's been a bit of a pest, actually. He's ready to go, so he'll be good for a few minutes.
14: And for the first time this NRL season, the Warriors have named an unchanged team to take on the Bulldogs in Sydney on Saturday.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
18: Super City Auckland mein filhal temperature 7.4 degrees hai aaj, high of 15 expected hai baad mein chalkar. Overnight temperature rahega 8 degrees tak, cloudy periods with a few showers mainly in the morning aaj bataya ja raha hai. Sunrise hoga agle ghante 7:27 AM par, jabki aaj ka sunset 5:29 PM par rahega.
13: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
13: Breakfast Catch-Up. The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
19: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
18: Kiora, good morning, namaste and welcome to Hum, playing Bollywood's biggest hits. Aage hain hum dono aap sabhi ka saath dene ke liye aaj on the breakfast show with Vijay and Pooja. Aur aapko bhi a very good morning.
20: Good morning, good morning. How are you?
18: Main to ekdam badhiya hoon, aap kaise ho?
20: I'm all right.
18: Acha, sunne se to nahi lag raha hai, all
20: yeah,
18: right.
20: Winter ke liye all right.
18: Winter ke liye all right. Okay, that's good. But hopefully aap sab bhi ekdam all right hai. Aur aaj ki is subah ko welcome karne ke liye hamare saath ekdam taiyar. Because finally, choti si chutti ke baad we are back. Aur aaj on the breakfast show with Vijay and Pooja hum aapke saath bane rahenge. Ab ise lekar theek din mein 10 baje tak.
20: और इस दौरान आज एक बार फिर तमाम चीज़ों के बारे में आपसे बातें होंगी. काफ़ी चीज़ें हुई हैं, कुछ हमको कैचअप करना है, कुछ आपको कैचअप करना है. इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बारी बारी से डिटेल्स देते रहेंगे.
18: एब्सोल्युटली. तो शुरुआत तो करेंगे ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ. खबरों में क्या कुछ है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में कि इनके बारे में बातें करना, इनके बारे में अपडेटेड रहना जरूरी है. एंड विल डेफिनेटली डू दैट दिस आवर. प्लस खबरों के साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी भरपूर ख्याल रखा जाएगा. आपके पसंदीदा गाने भी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे. और ऑफ कोर्स आपके जो मैसेजेस आपने भेजे हैं हमें, वो भी थोड़ी देर बाद हम बेशक चेक करेंगे. फिलहाल गुड मॉर्निंग वंस अगेन. 4 मिनट हो रहे हैं 6:00. दिस इज द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
21: कत्ल करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: Inside Out.
1: So, हर सुबह हम शुरुआत करते हैं अपने सफर की, जहाँ पर आपके लिए हम लेकर आते हैं कुछ ऐसी हैप्पी स्टोरीज और सम स्टोरीज फिल्ड विद ऑल द लव एंड पॉजिटिविटी, जिसके साथ सफर की शुरुआत जो है ये होती है। तो आज भी एक ऐसी स्टोरी, एंड दिस वन इज ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, और कहा गया है ये मध्य प्रदेश की कहानी है और सुमन की कहानी है। सुमन जो कि मध्य प्रदेश में रहती हैं एक छोटे से गांव में, इनके बारे में खबर सामने आई है कि ये हो चुकी है 51 ईयर्स की, लेकिन अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। शादी नहीं करने का कारण या फिर इनका जो डिसीजन इनका खुद का है, और इनके बारे में बताया गया है कि ये एक बहन है, मतलब बड़ी बहन है एक छोटे भाई की, जिनको कुछ डिसेबिलिटी इश्यूज है और जिसकी वजह से उनका ब्रेन जो है ये फुली डेवलप नहीं हो पाया था व्हेन ही वाज बोर्न, और इसके चलते उम्र के इस पड़ाव में भी जहाँ पर ही इज इन हिज लेट 40s ये अपना देखभाल खुद नहीं कर सकते हैं। एंड जब सुमन ने ये चीज़ देखी कि इनका भाई जिनका नाम इन्होंने गणेश बताया है, कि ये एक ऐसे यू नो सिचुएशन में है जहाँ पर शायद पूरी उम्र बीत जाएगी पर फिर भी ये कभी भी अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाएंगे, अपने लिए सही गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे, एंड ऐसे हालात में ऐसे सिचुएशन में देयर शुड बी समवन जो उनका अपना हो, जो उनको उतने प्यार से ही यू नो देखे, उतने प्यार से ही देखभाल करे जितने प्यार से शायद इनकी माँ जब होती तो वो करती, क्योंकि सुमन एंड गणेश बोथ ऑफ देम लॉस्ट देयर पेरेंट्स जब सुमन जो है काफ़ी यंग एज की थी, समवेयर इन हर 20s। तो इन्होंने फैसला किया कि ये आजीवन अविवाहित रहेंगी, मतलब शादी नहीं करेंगी, और उस जगह पर अपने ही भाई को अपने बच्चे की तरह जो है ये पालेंगी और उनका देखभाल जो है ये करेंगी। सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी केम आउट बिकॉज आसपास की जो कम्युनिटीज़ है ये इनके इस रिलेशनशिप को बहुत सेलिब्रेट करते हैं और बहुत चेरिश करते हैं। आजकल के ज़माने में जहाँ पर शायद भाई बहन हो या भाई भाई हो या बच्चे हो और पेरेंट्स हो, उनके बीच में मनमुटाव रहता है कोई किसी न किसी बात को लेकर, और अच्छी खासी फैमिली जो है ये एक दूसरे से नाराज़ हो जाए तो बात भी नहीं करती
2: जी।
1: और ऐसे हालातों में ये एक महिला है हु हैज़ शोन सो मच ऑफ लव टुवर्ड्स हर वन एंड ओनली ब्रदर।
2: बहुत खूबसूरत कहानी होती है, कहानी नहीं होती, ये लोगों की जिंदगी की हकीकत होती है जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन जो है ये दे सकती है।
1: एब्सोल्युटली, एंड दैट इज व्हाई आपके लिए से हम लेकर आते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा सनी साइड अप। थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए। गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी आपके आए हैं आज। अगर देखा जाए सबसे पहले मिस टमाटा माटा, इनका मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग टू यू, आपने कहा है जय श्री कृष्णा, हैप्पी वेंसडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच मिस टमाटा माटा आपके साथ के लिए। और साथ ही साथ हमारे पास एक और एक मैसेज आया है, मैंडी ने अपना मैसेज भेजा है, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा। थैंक यू सो मच मैंडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू, एंड थैंक यू आपके मैसेज के लिए आज वेंसडे की सुबह। बिनीता जी का भी मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वेंसडे बिनीता, थैंक यू आपके साथ और आपके मैसेज के लिए। एंड ऑफकोर्स लाइक एवरी मॉर्निंग आज सुबह भी हमें याद किया है नन अदर देन बॉबी मान जी ने, और इन्होंने भी अपना गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, होप यू एंजॉयड योर बर्थडे, हैव एन ऑसम डे, गणेशा'स ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच बॉबी जी, आई एब्सोल्युटली डिड, आई डिड एंजॉय माय बर्थडे, एंड थैंक यू सो मच आपके विशेस के लिए।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा,
3: हे देखो आ गए।
0: Ladies and gentlemen, unfiltered with Sandy and Rusbe, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: Unfiltered with Sandy and Rusbe on Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
5: Winger Motors मना रहा

0: 31st July tak. T's and C's apply.
1: Looking to escape the winter chill? Qantas is now flying direct from Auckland to the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and at least 30 kilos of checked baggage included in the fare when you fly with Qantas. Plus, Qantas is the only airline offering a business cabin on this route. From sun-soaked beaches and luxury retreats to waterfront dining and lush hinterland escapes, the Gold Coast is waiting. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply.
2: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
3: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their three Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
4: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
5: क्यों? क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई, तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
7: The breakfast show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
9: Global headlines.
10: सुबह के मुख्य समाचारों में, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच इसराइल ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है और वो अगले एस्केलेशन के लिए ऑपरेशन प्लान्स तैयार कर रहे हैं, हालांकि वो अभी भी इस लड़ाई से दूर है. इसराइली सोर्सेस के मुताबिक वाशिंगटन ने अभी तक उनसे मदद नहीं मांगी है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को शामिल होने को कहते हैं तो उनकी सेना तैयार है. भारत में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिनको सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, कल को मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया है गुरुग्राम में, जहां पर हाई कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक उनका ट्रीटमेंट चलता रहेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको तत्काल शिफ्ट किया जाए और ताकि उनका इलाज जो है अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि वो 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं. आईसीसी के मैचेस जो हैं ये फिलहाल कई खेले जा रहे हैं. स्पोर्ट्स अगर देखें तो वेस्ट इंडीज और साथ में न्यूजीलैंड के बीच पांचवा और जो आखिरी ओडीआई है ये बस थोड़ी देर बाद शुरू होने को है. और इस मैच में अगर देखें तो न्यूजीलैंड टीम जो है पहले बैटिंग करेगी और अभी तक चार मैचेस में से तीन में ब्लैक कैप्स की जीत हुई, जबकि एक ओडीआई में वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की है. और इसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड के बीच रविवार को जो तीसरा ओडीआई हुआ उसमें इंग्लैंड की जीत इंडिया के खिलाफ 27 रन से हुई, जिसके बाद इंग्लैंड ने इस सीरीज को 2-1 से जीत लिया है. ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस.
7: Hollywood's most wanted.
11: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
12: मैं लाऊं अपना A game.
7: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अरिजीत सिंह और साथ में शालमली कुलकर्णी को आप सुन रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आपके लिए हम लेकर आ रहे थे इनकी आवाज को फ्रॉम द फिल्म जब हैरी मेट सेजल. उम्मीद है कि आपने इस गाने को पसंद किया. बट फिलहाल के लिए चलिए आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं आज का हमारा सबसे फर्स्ट बॉलीवुड अपडेट और टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन बॉलीवुड. वेल, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और शाहरुख खान के बारे में बातें करें तो इनकी जो फिल्म है किंग, इसके बारे में खबरें जो है सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि इनकी फिल्म किंग की शूटिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है.
1: Oh, that's nice. कब रिलीज हो रही है?
0: अब आई हैव नो आईडिया. आई थिंक अगले साल हो रही है बट नॉट श्योर. आई कैन कंफर्म आफ्टर चेकिंग.
1: ओके. तो वैसे दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन जो है, इनके बारे में एक चीज तो सबको पता है कि वो अक्सर काफी हार्टफेल्ट नोट्स जो है ये अपने पर्सनल ब्लॉग पर शेयर करते रहते हैं, जहाँ पर अपना जो व्यू पॉइंट है या अपना एक्सपीरियंस है लोगों को बताते हैं. वो
0: बहुत कुछ शेयर करते रहते हैं.
1: और उनका जो लेटेस्ट पोस्ट है उसकी वजह से कुछ लोग थोड़े कंसर्न्ड हुए हैं, जहाँ उन्होंने लिखा अबाउट बीइंग इन हॉस्पिटल, अंडरगोइंग सर्जरी, स्पेंडिंग टाइम इन द ICU और द चैलेंजेस ऑफ रिटेनिंग होम.
0: Okay. ऐसा क्या हुआ इनको?
1: पता नहीं क्या हुआ है उन सभी चीजों. उन्होंने लिखा इन हॉस्पिटल इन अ सर्जरी एंड इन द ICU अंडर द केयर ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ, आर डिस्चार्ज इन अ होम कमिंग. ये इन्होंने लिखा. और अभी उतनी अच्छी तरह से पता नहीं है कि क्या हुआ है उनको, लेकिन उसके बाद चलकर कई लोगों ने उनको उनके जल्द होने की शुभकामनाएं जो है ये भेंट की है.
0: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी, होपफुली कि इनकी तबीयत जो है जल्द से जल्द यू नो अच्छी हो जाए. बट आपने बात ही की थी अबाउट द मूवी किंग कि कब रिलीज हो रही है. सो अपेरेंटली इट्स रिलीजिंग ऑन द 24th ऑफ दिसंबर दिस ईयर.
1: ओके,
0: तो दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड सो फार. सिद्धार्थ आनंद इसे डायरेक्ट कर रहे हैं. देखते हैं कि ये फिल्म जब रिलीज होती है तो ये कितना कमाल करती है एज फार एज ऑडियंस लव इज कंसर्न, बॉक्स ऑफिस इज कंसर्न. क्योंकि ये जो फिल्म है, दिस इज द फर्स्ट फिल्म जिसमें सुहाना खान और शाहरुख खान एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं.
1: ओके,
0: सो लेट्स वेट फॉर किंग कमिंग आउट दिस दिसंबर ऑन द 24th ऑफ दिसंबर 2026. और जैसे फिल्म आएगी तो पता तो चल ही जाएगा कि इसे कितना अप्रिसिएशन या कितना रिजेक्शन जो है ये मिल रहा है. फिलहाल 30 मिनट हो रहे हैं 6:00. थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और साथ में आज का पहला कॉम्पिटिशन.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Accurate traffic.
5: KFC's Gimme 5.
6: A lot of cloud, a bit of sun today, a high of 16 degrees. Into the city at the moment, southern starting to slow down, Papakura to Manurewa, and then slow patches on and off to Otahuhu, maybe Mount Wellington, 25 minutes Manukau to town, 50 in from Drury. Northwestern, 20 in from Massey, slowing down at Te Aritu and close to the CBD. Northern, 20 in from Constellation, patchy there to Glenfield and slow at Silverdale.
5: 5 pieces of secret recipe chicken plus chips for $11.99. Conditions apply.
7: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support, and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
8: What happens to your business once the sun goes down? If your signage fades into the dark, so do your opportunities. Speedy Signs designs illuminated signs and LED lettering that keep your brand visible long after closing time. When customers can see you clearly, they are more likely to stop, call, or come back. Stay bright, stay visible. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
9: Moisture और ventilation का problem लगता है.
10: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
11: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years. years.
4: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
12: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
2: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Azra le le tu maza. Hum, playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: वेंसडे 22nd ऑफ जुलाई है आज और अभी द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो आज 104.2 एफएम यूरोवा ऐप के जरिए अगर आप हमें सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग के कुछ और मैसेजेस भी आए हैं सो थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए राम राम विजय भाई पूजा जी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे पूजा नाइस प्रोग्राम हैव अ गुड डे विम फ्रॉम फोर्ट वेकाटो थैंक यू सो मच विम थैंक यू आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: इसके अलावा जय सियाराम विजय भाई एंड हैप्पी बर्थडे टू पूजा जी एंड मेनी मोर टू कम माता रानी की कृपा आप दोनों पर हमेशा रहे रोनल जय हो थैंक यू सो मच रोनल आपके भी मैसेज के लिए आपके भी साथ के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो
0: गुड मॉर्निंग विजय जी पूजा जी जय श्री गणेश वेलकम बैक नाइस टू हियर योर वॉइस विशिंग यू बोथ अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे विमलेशन प्रिया की ओर से मैसेज आया है थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू शुक्रिया आपके साथ और समय के लिए
1: फिलहाल आज 22nd ऑफ जुलाई हो चुका है अब दो ही दिन बाकी 23rd 24th और 25th को द ट्रस्ट अरीना में आ रहे हैं उस्ताद राहत फतेह अली खान एक बहुत ही खूबसूरत हसीन म्यूजिकल नाइट ये होने जा रही है जहां पर उनके सूफी गाने उनकी कव्वालियां ये सब कुछ आप एंजॉय कर सकेंगे जेके स्टार प्रोडक्शंस गोट लाइव ड्रीम्स एंटरटेनमेंट सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ टिकट्स अभी भी बाकी हैं dryTickets.com विजिट करते हुए जल्द से जल्द अपने टिकट्स आप ले लें
0: वैसे चलिए धर्म ने कहा था ना कि आज का पहला कंपटीशन ये आपके लिए लेकर आएंगे एज इन पहला सवाल जहां पर आप जवाब देकर हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा तो बन ही सकते हैं पर साथ ही साथ सफर का मजा जबकि आप उठा रहे हैं तो थोड़ा फन और इंटरेक्टिव ये सफर जो है हम और आप मिलकर बना सकते हैं तो सवाल ये है कि आपको एक छोटा सा बेसिकली बहुत ही छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है ये मैं दूंगी किसी एक फिल्म का और आपको अनुमान लगाना होगा कि ये कौन सी फिल्म है फिल्म का टाइटल अपने नाम के साथ आपको भेजना है 5599 पर एंड व्हेन यू हैव टू टेक्स्ट इट टू अस रिमेंबर अपना नाम आप जरूर लिखिए सो व्हाट यू कैन डू इज सबसे पहले आप लिख सकते हैं बीएफ यानी कि ब्रेकफास्ट का शॉर्ट फॉर्म फिर अपना नाम और फिर अपना जवाब और 5599 पर हमारे पास आप इसे सेंड कर दें तो सिंपल सा जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके लिए अ कॉलेज स्टूडेंट रन्स ऑन रूफ टॉप्स stalks his teacher, randomly breaks into songs, and keeps reassuring people that he exists.
1: Okay, बताइए कौन सी फिल्म है ये?
0: आप थोड़ा ऐसे lost लग रहे थे।
1: क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी फिल्म है। I have no idea at all.
0: You have seen the film इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ। But आप सबने देखा या नहीं वो मेरे पास guarantee नहीं है। शायद इसके बारे में सुना जरूर होगा आपने। एक college student है जो ऐसे ही rooftop पर भागने लगता है। अपने टीचर को स्टॉक करता है और अचानक अचानक से ऐसे ही गाने गाने लगता है और लोगों को बताता रहता है कि ये है
1: अच्छा
0: तो कौन सी ये फिल्म है व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स योर आंसर बीएफ स्पेस आपका जवाब और आपका नाम 5599 पर सेंड करें जवाब देने के लिए आपके पास है 5 मिनटों का समय और आफ्टर 5 मिनट्स वी विल सी कितने लोगों ने आज के सवाल का सही जवाब दिया है

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao.
2: ब्रेकफास्ट शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं 104.2 FM या रोवर ऐप पर अगर आप फिलहाल हमें सुन रहे हैं. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आज का हमारा ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. वेंसडे 22nd ऑफ जुलाई है आज, और अगर अपना अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑल कि अपने अपने मैसेजेस हमारे पास आप सेंड कर सकते हैं 5599 पर, और अगले घंटे हम आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे जो है ये विश करेंगे. आज अगर आपकी शादी की सालगिरह है डू लेट अस नो, तो इसके भी विशेस आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे अगले घंटे, जिसके लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है. फिलहाल चलिए, हमने एक सवाल पूछा जिसके आंसर्स तो आए हैं, कई आए हैं, सही या गलत ये खैर हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, पर अभी आपके पास अनदर 2 मिनट्स है अपने अपने जवाब भेजने के लिए, क्योंकि 2 मिनटों के बाद हम आपको बताने वाले हैं व्हाट्स द करेक्ट आंसर. तो क्वेश्चन हमने आपसे किया है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, और अकॉर्डिंग टू दैट डिस्क्रिप्शन आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन सी फिल्म है. इट्स दैट इजी. सो द क्वेश्चन इज कि ये कौन सी फिल्म है. अ कॉलेज स्टूडेंट रन्स ऑन रूफटॉप्स, स्टॉक्स हिज टीचर, रैंडमली ब्रेक्स इनटू सॉन्ग एंड कीप्स रीअश्योरिंग पीपल कि ही एग्जिस्ट. तो ये कौन सी फिल्म हो सकती है. यू कांट चीट, दैट्स सो रॉन्ग.
3: I'm not cheating.
2: You are cheating. आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर कि क्या है. अभी आप वैसे भी अगर मैसेजेस देखेंगे लोगों को तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो जाएगा ना.
3: आइडिया मुझे था.
2: नहीं था.
3: था.
2: शुरू में जो आपका फेस था इट वाज सो ब्लैंक.
3: आपका जो डिस्क्रिप्शन है कि उसका लास्ट फ्यू वर्ड्स जो है
2: मैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं.
3: हाँ.
2: हाँ, कि ये है.
3: हाँ.
2: हाँ, तो
3: उससे मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया.
2: उसी की वजह से तो आइडिया मिल सकता है. हाँ, पर मैंने उस तरीके से नहीं बोला ना, वो चीज़ है. मैम ने आपको बार बार रोक रही थी कि मैं बोल ना दूँ गलती से. तो अभी कई लोगों ने अपने अपने मैसेजेस हमारे पास इनफेक्ट सेंड किए हैं. अगर देखे आज सबसे पहला जवाब ये हमें पता है आज किसने भेजा. जैसे ये हमने क्वेश्चन पूछा
3: दिवनेश
2: ने. हाँ, इन्होंने कहा कि हमेशा सुनते रहते हैं, पर सिंस ये ट्रक ड्राइव करते तो इनको थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती ना ऑलवेज टू मैसेज, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो हमेशा मैसेज करते. तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू आंसर, फॉलोड बाय 1 मिनट के डिफरेंस से रोनल ने अपना जवाब भेजा. एंड देन उसके बाद और भी मैसेजेस जो है ये आए हैं, जिसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो नील है, इन्होंने अपना आंसर भेजा है. अपूर्वा है, राज का आंसर आया है, प्रितेश है, रेजो या फिर रेगो, कैसे बोलेंगे इनका नाम,
3: जैसे आपकी मर्जी.
2: मैं कोशिश तो कर रही हूँ, उम्मीद है कि सही हो. तो इनका मैसेज आया है, साथ में विश्नील है, अजेशनी ने अपना मैसेज भेजा है, राकेश राज है, और जया ने भी. ओ अंजेशनी, सॉरी, और जया ने भी अपना मैसेज भेजा है. सो फाइनल 2 मिनट्स एंड 5599 पर अपने मैसेजेस आप सेंड कर सकते हैं. बिफोर थ्रोबैक हम देखेंगे आप में से कितने लोगों ने सही जवाब दिया है. द डिस्क्रिप्शन इज एक कॉलेज स्टूडेंट है जो रूफ टॉप पर भागता है, अपने टीचर को स्टॉक करता है, और अचानक से बस गाने गाने लगता है, और लोगों को बार बार याद दिलाता है कि ये हैं. तो BF स्पेस योर आंसर योर नेम 5599 पर आपको भेजना है.
4: मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा रहता रे.
5: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने. हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं. हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने.
6: Traffic. Court and Curtin Studios 3-day sale starts Thursday.
7: A high of 16, find it times on quite a cloudy day. Coming into the city, Southern Motorway starting to slow. We're slow all the way Papakura to Mount Wellington, little heavy at Papakura, and slow again very close to the city. 32 minutes Manukau to town, hour from Drury. Northwestern 26 in from Massey, slow at Te Aritu, the causeway, and then most of the way from Point Chev. Northern 21 in from Constellation, bit heavy there and slow patches to the bridge.
6: Massive savings on carpet, hard floor, curtains and blinds. 3 days only starts Thursday.
8: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving away, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
9: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
10: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
11: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
10: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
11: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
12: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
13: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है, सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
12: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए, मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
13: पर डेवलपमेंट के पैसे
12: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Breakfast catch up.
3: अभी 14 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और टाइम आउट का जो हैप्पीएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड 2026 लिस्ट है ये रिलीज हो चुका है और कि इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया का एक शहर है जो टॉप 10 में आ चुका है।
2: ओके, विच शहर?
3: ये शहर बहुत ही खूबसूरत है, आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं यहाँ पर, खाने की क्या बात करें, यहाँ का खाना जो है ये बहुत बहुत बहुत पॉपुलर है। और कौन सा ये शहर हो सकता है?
2: I don't really know, but landmarks तो यार इंडिया में आप किधर भी चले जाओ आपको मिल जाएगा। Like इंडिया is full with certain things जो landmark के मामले में आप अगर बातें कर रहे हैं, आप जिधर नजर घुमाओगे उधर कुछ ना कुछ आपको दिखेगा ही दिखेगा। But landmarks like could it be Delhi?
3: No, it's not Delhi.
2: It's not Delhi.
3: It's not Delhi.
2: Because Delhi में काफी landmarks ऐसे हैं और जो सिग्निफिकेंट है और खाना भी वहाँ का बहुत पॉपुलर है ना।
3: या इट्स
2: लखनऊ?
3: ओ नो,
2: बट लखनऊ शहर सिटी है ना। हाँ लखनऊ सिटी तो है। हाँ तो क्या है?
3: जयपुर।
2: ओ जयपुर, अच्छा।
3: जयपुर द पिंक सिटी हैज बीन रैंक्ड 6th।
2: लिस्ट कौन सी थी ये?
3: ओ माय गॉड, हैप्पीएस्ट सिटीज।
2: हैप्पीएस्ट सिटीज, ओके ओके। नहीं मैं उसमें ध्यान ही नहीं गया, भूल गई थी मैं। तो जयपुर जो है हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड में नंबर 6 पर है।
3: नंबर 6 पर है।
2: दैट्स अ गुड अचीवमेंट। ग्रीन
3: पार्क, वॉकेबल नेबरहुड और यू नो खूबसूरत जगह घूमने के लिए जो कोई जयपुर गया है उसको पता होगा।
2: एंड थैंक्स टू सन टूर्स हम भी गए, हमने भी एक्सपीरियंस किया है।
3: हां, आफ्टरनून शॉपिंग कलरफुल बाजार में और साथ में प्याज कचौरी, लाल मांस, पास्ता सब कुछ मिलेगा।
2: हां, लाल मांस ट्राई किया था हमने। प्याज कचौरी आई कांट रिमेम्बर इफ वी ट्राइड इट और नॉट, बट सच में यार इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट, एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम ये एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए। फिलहाल समय की ओर देखें तो 11 मिनट बाकी हैं अभी 7 बजने में और इधर हमने सवाल जो पूछा उसके भी मैसेजेस आए हैं, अच्छे खासे मैसेजेस आए हैं। कोमल ने भी अपना गुड मॉर्निंग मैसेज जो है ये हमें भेजा है और साथ ही साथ जवाब भी दिया है इन्होंने, सो थैंक यू सो मच कोमल आपके भी मैसेज के लिए। और साथ में एक और एक मैसेज आया है इन्होंने, अच्छा रक्षे, आई थॉट कि इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, तो रक्षे का भी आंसर आया है। थैंक यू सो मच रक्षे आपके भी मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इधर चलिए, हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, कौन सी ये फिल्म है जहाँ पर एक कॉलेज स्टूडेंट रूफ टॉप्स पर भागते हैं, अपनी टीचर को स्टॉक करते हैं, रैंडमली गाने गाने लगते हैं और लोगों को अश्योर करते हैं कि ये है। तो द आंसर इज़

0: It's a very beautiful song, na yaar. Sonu Nigam ki awaaz to I love listening to. In fact, abhi humne aapko ye sunaya to aisa karte throwback mein bhi pura gaana suniyega aap. But this was the correct answer aaj ke hamare is sawal ke liye. अभी आपके पास नहीं कुछ बोलने को क्या?
1: अरे मुझे आपने कहा ये गाना सुना है, I enjoyed the movie.
0: आपने देखी ना?
1: हाँ.
0: मैंने भी देखी, बहुत बार देखी है. आई थिंक मुझे ये फिल्म, दिस वॉज द फर्स्ट मूवी जो फराह खान ने डायरेक्ट की थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन.
1: अच्छा.
0: और मुझे इस फिल्म की एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि नॉर्मली जब किसी भी फिल्म का एंड क्रेडिट आता है या फिर जो बिफोर मूवी क्रेडिट्स आते हैं, लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं. बट जो अंदाज फराह खान का है अपनी फिल्मों में लोगों को जो क्रेडिट्स देने में कि ये प्रोडक्शन टीम है, ये डिज़ाइन टीम है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड दिस वॉज द फर्स्ट मूवी जिसमें मैंने वो चीज़ देखी थी, एक्सपीरियंस की थी, जिस तरीके से वो लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना इन क्रेडिट्स में. सो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. मैं हूं ना आज का हमारा सही जवाब.
1: फिलहाल अब थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग एंड राम राम विजयन पूजा. आज का दिन शुभ और मंगलमय रहे. हैप्पी बर्थडे पूजा जी. आज मैं लेट हो गई. मे दिस डे बी फिल्ड विद ब्लेसिंग्स. एंजॉय. अच्छा, जया का मैसेज है.
0: थैंक यू सो मच जया जी. जन्मदिन मेरा कल था पर शुक्रिया शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. सो टॉकिंग अबाउट द मूवी, बहुत ही खूबसूरत ये गाना आज आपके लिए, द वेरी फर्स्ट थ्रोबैक सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में. 2004 में ये फिल्म आई थी, मैं हूं ना, उसी फिल्म का ये ट्रैक है.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 6.7 degrees temperature ho chuka hai Subah City, Auckland mein filhal. High of 15 expected hai aaj baad mein chalkar. Overnight to 8 degrees tak rahega. Cloudy periods with isolated light showers aaj hum experience karenge. Halki halki hawaon ka saath bana rahega. Sunrise isi ghante 7:27 am par, sunset 5:29 pm par.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Morning Madness. Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
1: Good morning, namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. फिलहाल 4 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर एंड आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं मॉर्निंग मैडनेस.
4: और कुछ देर से अगर हमारे साथ आप शामिल हुए हैं, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. थोड़ी ही देर में आज का आपका राशि वाइब जो है ये हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में.
1: हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि ये तो आपके लिए रहेगा ही रहेगा. और साथ ही साथ आज आपके लिए सेलिब्रिटी अलार्म हम लेकर आने वाले हैं. आज से चीजें हो जाएंगी थोड़ी डिफिकल्ट. नो मोर क्लूज फॉर यू क्योंकि अब हम आपको सिर्फ आवाज सुनाएंगे और देखेंगे आप में से कितने लोग आज हमारे सेलिब्रिटी की आवाज पहचान पाते हैं. क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है हमारे जो सेलिब्रिटी होते हैं सेलिब्रिटी अलार्म में, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ कोई हो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करे, ये कोई भी हो सकते हैं. और ये जो शख्स रहेंगे ये शायद कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई साइंटिस्ट हो या फिर हो सकता है कि ये जो शख्स है कोई वॉइस ऑफ आर्टिस्ट हो.
4: हाँ.
1: पर एक सेलिब्रिटी है क्योंकि लोग इनको जानते हैं. तो फिलहाल के लिए चलिए आपके लिए सबसे पहले तो बर्थडे ग्रीटिंग्स इसी घंटे रहेंगे, याद दिला दे कि अगर आपने अपने ग्रीटिंग्स नहीं भेजे हैं यू कैन सेंड इट अक्रॉस ऑन 5599.
4: और चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं बस @humfm.com पर. और यू नो एक टेक वोका है, 31 ईयर्स इनकी उम्र है और उनकी पत्नी का कहना है कि उनके पति को एक नशा सा छाया हुआ है, नशा सा चढ़ा हुआ है टू बिकम एन AI नेटिव. और
1: AI नेटिव क्या होता है?
4: AI नेटिव इज लाइक अ AI नेटिव,
1: लाइक दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, लाइक अ व्हाट.
4: AI नेटिव जो है, इजिली मैं कैसे आपको समझाऊँ AI नेटिव क्या होता है. AI नेटिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा यू नो कोई भी चीज़ जो शुरू से ही AI को सेंटर में रखकर बनाई गई हो और AI enabled, AI या नए तरीके यू नो he just wants to be into artificial intelligence basically.
1: Okay, चलो.
4: तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है अपनी पत्नी को बताया देखो मुझे ये करना है और अब सिंस मुझे ये करना है तो घर की जितनी पेरेंटिंग ड्यूटीज है ये अब आपको संभालनी पड़ेगी. हाँ.
1: अकेले
4: अकेले. हाँ. वॉशिंगटन पोस्ट में ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की गई थी.
1: हाँ.
4: जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि टेक वर्कर्स जो है फील लेस सिक्योर देन एवर क्योंकि AI इतनी तेजी से उनके कामों को टेक ओवर कर रहा है.
1: Right.
4: और ये बंदा नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा कुछ हो तो वो अपना 100% देना चाहता है. यू नो AI नेटिव एम्प्लॉइज वन हु रीडिजाइन देयर एंटायर वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल्स को लेकर, तो उनका कहना है कि मुझे ये करना है. और

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papio. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes, Bollywood ka asli blockbuster.
2: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
3: तो आज का राशि क्या वाइब कर रहा है आपके लिए, मतलब योर हॉरोस्कोप फॉर द डे, और आज क्या कुछ आपके लिए बताया जा रहा है. सबसे पहले मेष यानी एरीस, आज आपके लिए कहा गया है कि बिजनेस रिलेटेड कोई ट्रिप आप कर सकते हैं, और ये जो ट्रिप है विड बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज आपको एडवांटेजेस बहुत मिलेंगे इस ट्रिप पर. फ़ायदे के मौके बार बार मिलते रहेंगे, सो आइडेंटिफाई देम, वर्क ऑन देम, ताकि आप अभी जो मुनाफा जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका दुगना जो है आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें. वैसे कहा गया है कि किसी बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आएंगे, और इनके एडवाइस पर ध्यान ज़रूर दीजिए क्योंकि इनकी बातें आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट जो है ये लेकर आ सकती है. वृष यानी टोरस, आपके लिए कहा गया है कि कोई बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है. कुछ प्लान्स आज बनाएंगे, काम करने के तरीके में यानी कि कार्य करने के तरीके में सुधार होगा, जिसकी वजह से आपके समय की बचत भी होगी. एंड यू विल हैव अ गुड डे टुडे. वैसे आज मिथुन यानी जेमिनी, आपके लिए कहा गया है बिजनेस अच्छा चलेगा. हो सकता है कुछ कामों में थोड़ी बहुत रुकावटें आए, लेकिन इन रुकावटों से डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिस इज़ जस्ट लाइक अ रोड हम्प जो हम फेस करते हैं वाइल ड्राइविंग, क्योंकि थोड़ा सा आपको स्लो जाना पड़ेगा फॉर अ मोमेंट, बट आफ्टर दैट योर जर्नी विल बी स्मूथ. सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, खास तौर पर ध्यान और डेडिकेशन के साथ. वैसे आज आपके लिए बताया गया है कि रिलीजियस कामों में भी आपका काफ़ी दिलचस्प जो है ये रहेगा. कर्क यानी कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि जीवन साथी के हेल्थ को लेकर वरीड रहेंगे. मशीनरी का इस्तेमाल करते समय, गाड़ी चलाते समय लापरवाही ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट्स डू हैपन एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टुडे. कीमती चीज़ों को संभाल कर रखें, अदरवाइज अगर गुम हो गए या चोरी हो गए तो नुकसान की भरपाई जो है शायद आप नहीं कर पाएंगे इस साल. वैसे सिंह यानी लियो, आपके लिए कहा गया है बिजनेस अच्छा चलेगा, घर बाहर हैप्पी एनवायरनमेंट रहेगा आपके लिए, नौकरी में आपके बॉसेस जो है खुश रहेंगे, और जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, ये सलाह आपको दी जा रही है. कन्या यानी वर्गो, आपके लिए बताया जा रहा है कि आज का जो ये दिन है आपको बहुत केयरफुल होकर बिताना है, सोच समझकर कुछ फैसले करने हैं, और सोच समझकर ही आपको कोई भी काम आज करना पड़ सकता है. अदरवाइज कुछ बड़े फायदे हैं भविष्य में लाइंड अप आपके लिए, बट इफ़ यू आर नॉट वेरी केयरफुल तो वो आपके लिए नुकसान में बदल सकते हैं. झंझटों से दूर रहें, ये सलाह भी आज आपको दी जा रही है. तुला यानी लिब्रा, आपके लिए कहा गया है अगर स्टूडेंट है तो सफलता हासिल करेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी के मामले में भी काफ़ी खुश रहेंगे आज आप, फायदे के मौके बार बार आपके हाथ लगेंगे. वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जितने की उम्मीद आपको है, तो कोशिश करते रहे. अगर कोशिश करनी ही बंद कर दी आपने तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा. वैसे आज आपके एक्सपेंसेस में कमी होगी जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे. यू विल बी एबल टू मैनेज योर फाइनेंसेस टुडे, और व्यर्थ भागदौड़ यानी कि अननेसेसरी भागदौड़ जो है आज लगी रहेगी. समय की बर्बादी, थकावट, ये सारी चीजें आप शायद महसूस करें. धनु यानी सेगिटेरियस, आपके लिए कहा गया है कि कुछ लोग हैं जो आपके विवाह के प्रस्ताव लेकर काफी इंटरेस्टेड हैं, तो इनसे मुलाकात होगी आज आपकी, कोशिशें भी इस मामले में सफल होंगी, नौकरी में प्रोग्रेस जरूर देखेंगे, एंड यूड बी वेरी हैप्पी विद वट एवर यू गेटिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ टुडे. मकर यानी कैप्रिकॉन, बिजनेस अच्छा चलेगा, आज आपके लिए कहा गया है कि बिजनेस में फायदे के मौके हाथ लगेंगे, किसी भी डिसीजन को लेने में जल्दबाजी ना करें, और आज लेन देन के मामले में केयरफुल हो जाए. कुंभ यानी अक्यूरियस, आपके लिए बताया गया है घर बाहर सहयोगी सहयोग, लोग काफ़ी सपोर्ट करेंगे, भेंट उपहार भी यानी कि गिफ्ट्स वगैरह जो है ये आपको मिल सकते हैं, और अगर नौकरी की तलाश कर रहे थे इतने दिनों से या मन चाही नौकरी की इच्छा थी तो बेरोजगारी दूर होगी और अचानक से ही काफ़ी फायदे आपके हाथ लगेंगे. एंड फाइनली मीन यानी पाइसिस, चिंता और तनाव तो रहेगा ही लेकिन थोड़ा स्ट्रांग बनना है. कुछ एक्सपीरियंसेस आज हैं जो आपको लाइफ में और भी स्ट्रांग होने में हेल्प करेंगे. बेवजह किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है जिससे रिश्ते खराब होंगे, तो कोशिश करें ऐसी सिचुएशंस में ना पड़े. रिस्क लेने पड़ सकते हैं आज आपको. नॉर्मली कहते हैं कि रिस्क ना लें, लेकिन आपके मामले में आज आपको रिस्क लेने पड़ सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है. सो दीज वर योर स्टार्स फॉर द डे, योर राशि वाइब्स बेसिकली, और उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे. इट्स 19 मिनट्स आफ्टर 7 ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
0: राशि वाइब्स।
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
5: PM call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site, yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
6: Rebel's end of season sale is still on. Score up to 50% off the big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Plus score a free Rebel Sport bag when you spend $50 or more. End of season sale is on now, only at Rebel Sport. See you live at T's and C's.
7: First impressions happen before customers walk through the door. If your signage looks faded or hard to read, people assume more than you think. Speedy Signs creates sharp, professional shopfront signage that makes your business look open, confident, and ready for business. Sometimes the quickest way to lift foot traffic is simply to upgrade your signage. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
8: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Karanga Ahape station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Puhinui in just 32 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
9: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the Pacific, like Samoa from $319 one way, Tonga from $349, or Vanuatu from $355. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
0: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Celebrity Alarm. Hit it.
3: 22 मिनट हो रहे हैं फिलहाल हमारे स्टूडियोज में 7:00 सेलिब्रिटी अलार्म की बारी है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा। बट बिफोर वी डू दैट किसी का मैसेज आया है इन्होंने कहा है कि आप अगर कैप्रिकॉर्न फिर से बता सके कि आज कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या बताया गया है मतलब व्हाट्स दे फॉर यू ऑल टुडे। सो आज मकर यानी कैप्रिकॉर्न आपके लिए देखा जाए तो कहा गया है लेट मी सी वेयर आर यू राइट बिजनेस रिलेटेड किसी ट्रिप पर आप जाएंगे तो सफल रहेगा आपके लिए। नौकरी के मामले में भी आपकी जो कोशिशें हैं ये सफल होंगी। फायदे के बहुत से मौके हाथ लगेंगे। डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें ऐसा आज आपके लिए कहा गया है। होप दैट हेल्प्स। थैंक यू सो मच वैसे आपके भी मैसेज के लिए। फिलहाल अब बारी है आज की हमारे सेलिब्रिटी अलार्म की। ये जो सेलिब्रिटी है इनकी आवाज़ हम आपके लिए पहली बार लेकर आ रहे हैं।
11: अच्छा
3: एंड दिस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी इज वन ऑफ माई फेवरेट्स For very like various reasons, लेकिन पहले तो इनकी आवाज़ आपको सुनाते हैं hopefully it plays correctly, और फिर देखेंगे कि आप में से कितने लोग इनकी आवाज़ पहचान पाते हैं। And here we go.
12: शादी आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे शादी की हुई है और उनमें कितने से लोग बाकी लोगों को recommend करेंगे कि उन्हें भी करनी चाहिए।
3: तो कौन है ये सेलिब्रिटी आज के हमारे अनुमान आपको लगाना है। आवाज हमने सुना दी और जैसे कि हमने कहा थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट फ्रॉम टुडे। नो मोर क्लूज नो मोर क्लूज। अगर ज्यादा डिफिकल्ट हुआ तो देंगे लेकिन आज नहीं देंगे। ऐसे लाइक देखते हैं कितने दिनों तक इस सेलिब्रिटी की आवाज जो है ये यू नो सुनाते
11: हैं कौन पहचान पाता है।
3: हाँ पर सेलिब्रिटी है इतना मैं आपको बता सकती हूँ। ऐसा नहीं कि अननोन है।
11: अच्छा
3: सो 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ BF लिखते हुए, या फिर इफ यू वांट टू गिव इट अ शॉट 0800 हम 0800 004866 पर कॉल भी कर सकते हैं. लेट अस नो आज के हमारे जो सेलिब्रिटी अलार्म में किन की आवाज है, और ये है वो सेलिब्रिटी
12: शादी. आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे शादी की हुई है, और उनमें कितने से लोग बाकी लोगों को रेकमेंड करेंगे कि उन्हें भी करनी चाहिए.
3: राइट, सो गेट गोइंग, लेट्स सी. अभी तक तो ना किसी का कॉल आया है ना ही किसी का मैसेज, विच मींस इट्स गोना बी अ बिट डिफिकल्ट टुडे.
11: तो BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आपको टेक्स्ट करना है. देखेंगे थोड़ी देर बाद कि क्या आप में से कोई एक भी है जो आइडेंटिफाई कर पाता है, या सारे के सारे मेरी तरह हैं.
3: I just hope कि no one gets it, because then we'll be able to keep going on with this one. ना तो मजा आएगा कि ज्यादा दिन तक जब चलता रहेगा तो लोग भी एकदम ऐसे curious हो जाते हैं ना कि यार ये कौन है, कौन ये शख्स, तो पता करने में लग जाते हैं.
11: हाँ.
3: कि चलो पता करते ये है कौन, तो मजा आता है. पर अगर आसानी होती तो वेरी इजिली लोग अपने अपने आंसर्स भेज देते हैं. अजय ने कोशिश की है, द वेरी फर्स्ट पर्सन जिनका मैसेज आया है आज सेलिब्रिटी अलार्म के लिए, इनका कहना है इट्स ऋतिक रोशन. नो अजय, unfortunately it's not. So 5599 is the answer. जवाब आप भेज सकते हैं.
11: 5599 is the platform number.
3: Oh, मैंने 5599 answer बोला ना. 5599 is the platform number जिस पर आप अपने messages भेज सकते हैं. BF space your answer, your name आप send कीजिएगा. It's 25 minutes after 7 on the breakfast show with Vijay and Pooja. Morning madness आपके लिए Wednesday 22nd of July को हम लेकर आ रहे हैं.
0: Bollywood's most wanted.
13: गुंडी खड़ गया. सीधा अंदर आऊं
14: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: सो बिफोर आज का चैट बस्टर आपके लिए हम लेकर आए, हमने आज का सेलिब्रिटी लाम आपको सुनाया और कई मैसेजेस आए हैं सो फार, एंड सही या गलत ये तो खैर हम थोड़ी देर बाद ज़रूर बताएंगे, बट आई कैन से कि शुरू में जितने भी मैसेजेस आए थे नन ऑफ देम वर करेक्ट. अजय का आपने बताया था ना, इन्होंने कहा था ऋतिक रोशन. प्रिंसी ने इमरान खान कहा, अंजीता ने कहा आमिर खान, अवनीत ने कहा आमिर खान, वेरी इंटरेस्टिंग. आयुष्मान खुराना ये प्रतीका ने कहा, रितेश देशमुख रोशन ने कहा, कौशल ने कहा रणबीर कपूर या शाहिद कपूर. अच्छा, मतलब हम दोनों जवाब लेकर चले आपके. अभी जिसमें इसमें से जो भी सही हुआ वो एक्सेप्ट करें हम. ये क्या बात हुई भाई, बट थैंक यू फॉर ट्राइंग कौशल. रेशमी शर्मन जोशी इन्होंने कहा शर्मन जोशी, लिज का भी आंसर आया है. वानी कपूर इन्होंने कहा वीर दास, राहुल पांडे ने कहा है अमित टंडन. और भी कुछ मैसेजेस आए हैं जो थोड़ी देर बाद देखेंगे ज़रूर, पर अभी तक देखते हैं कि जितने भी आंसर्स हमने पढ़े नन ऑफ देम आर करेक्ट. आज के सेलिब्रिटी अलार्म में कौन है ये सेलिब्रिटी, एक आखिरी बार इनकी आवाज़ फिर न्यूज़ हेडलाइंस के बाद रिवील करेंगे कि क्या किसी ने आज इनकी आवाज़ पहचानी भी है या नहीं. तो अगर आप इनकी आवाज़ पहचान ले तो आपको बस लिखना है BF, फिर अपना आंसर और अपना नाम और भेज देना है 5599 पर.
1: शादी. आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे शादी की हुई है और उनमें कितने से लोग बाकी लोगों को रेकमेंड करेंगे कि उन्हें भी करनी चाहिए.
0: बाय द वे अभिनव, आपने हमारे पास अपना आंसर भेजा है, आपने कहा है हर्ष गुजराल. नहीं, ये हर्ष गुजराल भी नहीं है. Enjoy आज का हमारा चैट बस्टर. यस सर, देसाई की आवाज में हम लेकर आ रहे हैं अलोंग विद असीस कौर फ्रॉम द फिल्म ड्राइव. 2019 में फिल्म आई थी. स्ट्रेट आफ्टर दिस सॉन्ग न्यूज हेडलाइंस.

0: headlines. आज सुबह के मुख्य समाचारों में मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लगभग 2,700 वर्कर्स आज सुबह स्ट्राइक पर जा रहे हैं, जिसका ऐलान पब्लिक सर्विस एसोसिएशन ने किया है। रेडियो न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट के अनुसार पीएसआई की नेशनल सेक्रेटरी फ्लोया फिट्ज़साइमन्स ने बताया कि स्टाफ को इन्फ्लेशन से काफी कम पे ऑफर मिल रहा है, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के दौरान उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इस बार्गेनिंग में शामिल हैं एमबीआई स्टाफ में सबसे बड़ा ग्रुप इमिग्रेशन ऑफिसर्स का है, जिनकी एवरेज सैलरी $70,000 के करीब है, और यूनियन ने उनके लिए बेहतर ट्रीटमेंट की मांग की है। मिडिल ईस्ट वो के चलते बढ़ते फ्यूल प्राइसेस की वजह से न्यूजीलैंड में इन्फ्लेशन 2 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। स्टेटिस्टिक्स न्यूजीलैंड के डाटा के मुताबिक जून कोटा में पेट्रोल 20%, डीजल 48% महंगा हुआ, जिससे एनुअल इन्फ्लेशन रेट मार्च के 3.1% से बढ़कर 4.1% हो गया है। प्राइसेस स्पोक्सपर्सन निकोला ग्राउडन ने बताया कि इस क्वार्टरली हाइक में अकेले पेट्रोल और डीजल का 2/3 योगदान रहा है। ब्लैक कैप्स और वेस्ट इंडीज के बीच 5वां और आखिरी ODI फिलहाल जारी है। ब्लैक कैप्स टीम बैटिंग कर रही है और अपने इनिंग्स में अभी तक 14 ओवर्स में एक खिलाड़ी खोकर 72 रन बनाने में कामयाब हुई है। इस मैच पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम बारी बारी से लेकर आते रहेंगे।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
3: Fly Solomon Airlines.
4: Quite cloudy today, high of 16. Northwestern, an incident at Te Aratu looks like it's sorted, but quite heavy upper harbour to there. Slow to Point Chief, then heavy again. Southern, maybe an incident at East Tāmaki. We're quite heavy up to East Tāmaki. Clear pass there, but 56 minutes Manukau to town. Southwestern, heavy northbound from the southern to Puanui. Slow on 28, the airport link, but a breakdown there has been sorted.
3: Auckland direct to Vanuatu from $860 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
5: Hi, and welcome to the 80s. We love acid wash jeans and overpowering aftershave as much as the next guy. But we also have some out-of-date notions about HIV you don't want to keep. Fact is, HIV can't be passed on through everyday contact like shared food, hugging, or kissing. And with your modern-day treatment, people with HIV can stay well and have zero chance of passing it on to partners. Out of date on HIV? Get the facts at healthnz.govt.nz/HIV.
6: Auckland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan. Saturday, 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.

0: फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
1: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी. दैट्स 0800 564 424.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Birthday greetings.
3: Iska birthday bhai?
4: Mera bhi birthday hai. Chalo line mein aa jao.
5: Happy birthday to you.
6: वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करते हैं. आज ऑन द 22nd ऑफ जुलाई अगर अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हम दोनों की ओर से और हमारी पूरी हम टीम की ओर से भी. सबसे पहले आज अगर देखा जाए अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कौन?
7: संध्या देवी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको. इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. आज आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं, लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. राजेश हैं, साथ में मोनिका है, निशाल राम हैं, इन्होंने भी आज आपको याद किया है. कृष्णील की ओर से भी बहुत सारा प्यार. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. 31 साल की यानी 31st बर्थडे आज आप सेलिब्रेट कर रही हैं. सो इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हम सभी की ओर से.
6: जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको संध्या जी. और साथ में आज कविनाश आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू. जन्मदिन के खास मौके पर आपके बच्चे हैं और साथ में आपकी प्यारी सी पत्नी है, इनकी ओर से ढेर सारा प्यार. सुनेहा ने भी आपको याद करते हुए वेरी हैप्पी बर्थडे विश किया है. हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से भी आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. जहां कहीं भी आप है अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड ड्यू टू सम रीजंस यू माइट नॉट हैव बीन एबल टू मैसेज अस, आज हमारी ओर से आप सबको हम विशेस जो है जरूर पहुंचा रहे हैं. एंजॉय योर स्पेशल डे.

0: Sunset PMI.
1: 19 minutes away from 8 for now on the breakfast show with Vijay and Pooja. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं हमारा मॉर्निंग वेडर्स का ये सफर. कुछ मैसेजेस आए हैं. थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं आपके साथ और आपके समय के लिए. एंड जस्ट सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन योर मैसेजेस. एड्रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. वी डिड रिसीव इट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर बाद, बट शुक्रिया, वी गॉट इट. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर कंपनी एड्रीन. और उसके अलावा परमा महाराज जी, आपका भी मैसेज हमें मिल चुका है. आपको भी जय हो. हैव अ वंडरफुल डे एंड विशिंग गुड हेल्थ एंड वेल्थ ऑन यू एज वेल. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग, सुख एंड खुश की ओर से मैसेज आया है.
2: ओके,
1: दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सुख एंड खुश, आप दोनों को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर कंपनी एज वेल. सो कुछ मैसेजेस हमने पढ़े थे पिछले घंटे, नॉट पिछले घंटे, थोड़ी देर पहले हमारे आज के सेलिब्रिटी अलार्म के लिए. आई थिंक लास्ट मैसेज जो हमने पढ़ा था, आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वॉज फ्रॉम अभिजीत ने कहा था, नहीं अभिनव ने कहा था, हर्ष गुजराल. अभिनव के बाद जॉन अब्राहम किसी ने मैसेज किया, जयदीप अलावत, ये चरीशा का कहना है. अभिनव ने वापस से कोशिश की, इन्होंने कहा इस बार अनुभव बसी. मोनिशा ने कहा अनुभव सिंह बसी. रनीता ने कहा कार्तिक आर्यन. और लिज ने कहा है अर्जुन कपूर.
2: तो किसकी आवाज है,
1: किसकी आवाज है? वेल, आज इंटरेस्टिंग चीज कुछ हुई. इतने सारे लोगों ने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे, बट देवर टू पीपल हु वर समवट ऑन द राइट ट्रैक. तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, उनको कॉल करने जा रही हूँ. अगर ये फोन उठाते हैं तो सुबह सुबह इनसे बातें करेंगे और खुद इन्हीं से सुनेंगे कि आज के हमारे सेलिब्रिटी जो हैं ये कौन है और किन की आवाज़ है. अगर नहीं उठाते हैं तो मैं खुद ही बता दूंगी. इस तरीके से क्या होगा, एटलीस्ट बात करने का मौका एक मिल जाता है ना. तो देखते हैं क्या ये आंसर कहते हैं या नहीं.
3: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग,
1: कैसे हो गौरव?
3: बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे?
1: एकदम बढ़िया. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट शो का मजा आप ले रहे हैं, अपना साथ आपने में दिया, उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच.
3: नो प्रॉब्लम.
1: तो
3: आवाज,
1: हाँ जी
3: सेलिब्रिटी
1: अलार्म खेल रहे थे हम, फिर आपका मैसेज आया. मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई आज आपका मैसेज देखकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि मुझे ऐसा था कि आज ये आवाज शायद कोई ना पहचान पाए और थोड़ा हम चलेंगे आगे तक ना, कुछ दिनों तक ये आवाज लेकर. पर आप भाई बहुत ऑब्जर्वेंट है. तो सबसे पहले तो गौरव बताइए, आपने क्या जवाब हमारे पास भेजा था?
3: जवाब दिया था अमोल पराशर.
1: अमोल पराशर, और कैसे, किस वजह से आप अमोल पराशर को जानते हैं? हाउ कुड यू आइडेंटिफाई हिज वॉइस?
3: अभी इनकी रिसेंट में सीरीज देखी थी मैंने, ग्राम चिकित्सालय. एंड मेरे ख्याल से जो आवाज आपने सुनाई है ट्रिपलिंग सीरीज की है. दैट आई एम नॉट टू श्योर, बट आई कुड बी रॉन्ग.
1: एक चीज आपने सही पकड़ी, ग्राम चिकित्सालय में अमोल पराशर है, लेकिन आवाज हमने ट्रिपलिंग से नहीं सुनाई थी. आवाज एक इनका एक स्टैंड अप शो था जहां पर इन्होंने किया था और उस का एक छोटा सा क्लिप था. बट गौरव एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड ऑब्जर्वेंट रहने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. अभी देखते हैं कल एक नई आवाज लानी पड़ेगी. एंड लेट्स सी इफ यू विल जॉइन अस फॉर दैट एज वेल. बट हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू सो मच फॉर योर कंपनी.
3: थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. बाय
2: बाय.
1: तो गौरव के अलावा नव ने भी सही जवाब दिया था.
2: हाँ, मुझे तो कल से ही पता था कि आज किसकी आवाज आने वाली
1: है. या as if
2: I had no idea at all.
1: आपको पता नहीं होगा शायद कि ये कौन है,
2: क्योंकि I haven't seen.
1: आपने ट्रिपलिंग सीरीज देखी है? एंड आई थिंक
2: मैंने कहाँ देखी ट्रिपलिंग?
1: देखिए मेरे साथ ही देखिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ. एंड आई थिंक अमोल को ज्यादातर लोग ट्रिपलिंग सीरीज की वजह से ही जानेंगे. नहीं देखी आपने तो TVF पर ये है, चितवन का किरदार ये प्ले करते हैं. इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स. एंड ऑफकोर्स Amazon Prime Videos पर रिसेंटली आई है ग्राम चिकित्सालय का सीजन 2. सीजन 1 पहले देखिए, फिर सीजन 2 देखिए. वंडरफुल एक्टर.

0: 9 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 8 बजने में, 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे। मुंबई के एक स्टार्टअप फाउंडर जो है, इनकी एक कहानी जो है, नॉट कहानी, इनके एक स्टाफ के साथ जो हुआ उसके बाद इनका जो रिएक्शन था, जिस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया, उसके बारे में पूरी दुनिया में अभी बातें हो रही हैं। ध्रुव मुखर्जी फाउंडर हैं ब्लू लॉबस्टर मीडिया के। उन्होंने शेयर किया कि उनकी एक एम्प्लॉई हैं जिनका एक महीना बहुत ही खराब गुजरा और उन्होंने कहा कि वो काम पर नहीं आ सकते। उन्होंने भी ऑनेस्टली अपना सारा कुछ बताया कि क्या हो रहा है उनके साथ, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगी, आप प्लीज़ मेरी सैलरी से काट लेना। लेकिन ध्रुव मुखर्जी ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कटिंग हर सैलरी, उन्होंने उनको फुली पेड 3-day गेटअवे पर भेजा। अरेंज किया एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस टू हेल्प हर गेट बैक ऑन ट्रैक। उन्होंने कहा, माय एम्प्लॉई हैड अ बैड मंथ एंड आस्क्ड मी टू डॉक अप, आई सेंट हर ऑन अ पेड गेटअवे इंस्टेड। और उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि उनकी एम्प्लॉई काफ़ी चीज़ों से जूझ रही हैं, और वो एक ऐसे एम्प्लॉई हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की कंपनी के लिए, और इट्स टू वे रिलेशनशिप। और उन्होंने कहा कि ही थॉट दिस माइट
1: डिजर्व्स इट,
0: या
1: यू नो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एन एम्प्लॉई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यू नो ऐसा होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप को ही ब्लेम किया जाता है, वेदर द एम्प्लॉयज आर ब्लेम्ड बाय द एम्प्लॉयज और वाइस वर्सा, बट दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पर कभी ना कभी सही हो सकते हैं, बट इफ दे बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर ना, थिंग्स विल रन सो स्मूथली इन दिस केस, क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉयज बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, इफ द एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड दैट तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाता है ना, इन दिस केस ऑल्सो। एनी वेज, सच हैप्पी न्यूज ऑलवेज मेक्स मी फील वेरी हैप्पी, और इस बार चलिए थ्रोबैक आपके लिए कुणाल गांजा वाला और शान की आवाजों में बर्दाश्त फिल्म से हम लेकर आ रहे हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: थोड़ा सा ऊपर गया टेम्परेचर कम्पेयर टू लास्ट आवर, 7.3 डिग्रीज हो चुका है अभी, बट क्लाउडी पीरियड्स विद आइसोलेटेड लाइट शावर्स स्टिल प्रिडिक्टेड. आज सनसेट 5:29 PM पर होगा, हाई ऑफ 15 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है लेटर टुडे एंड ओवरनाइट 8 डिग्रीज तक रहेगा.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: आज की जो ट्रेंडिंग खबर है ये भी इंडिया से है. अंकित पांडे नाम के एक शख्स ने एक्स पर जाकर एक स्टोरी अपने पड़ोसी की शेयर की है. उनके पड़ोसी जो है ये नौकरी करते थे और 38,000 रुपीज हर महीने की उनकी सैलरी थी और उन्होंने नौकरी छोड़ दी.
1: ओके.
3: नौकरी छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने चाय की एक टपरी खोल ली. नाउ एक महीने में 1.8 लाख रुपीस कमा रहे हैं.
1: वाओ.
3: कहां 38,000 रुपीस
1: और कहां
3: 1.8 लाख. उन्होंने कहा कि इनके पड़ोसी जो हैं ये एक टेले परफॉर्मेंस कंपनी में काम कर रहे थे और मई में उन्होंने रिजाइन किया और कई लोगों को लगा कि उनके पड़ोसी ने गलती कर दी है एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर. लेकिन उन्होंने बताया कि ही इन्वेस्टेड नीली 2 लाख रुपए लगाए एक चाय का एक चाय टी शॉप खोलने के लिए एक ऑटो स्टैंड के पास. 2 फीमेल स्टाफ मेंबर्स जो हैं ये हायर किए इन्होंने टू प्रिपेयर एंड सर्व टी. उनके उनका मेन्यू बहुत ही सिंपल है, चाय 10 रुपए में और प्रीमियम टी 20 रुपए में.
1: वाओ. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम टी एंड चाय?
3: वो तो वही बता सकते हैं ना.
1: अच्छा, वो नहीं बताया.
3: हाँ. उन्होंने कहा कि उनका बिजनेस जो है हर दिन लगभग 400 कप्स ऑफ चाय बेचती है कंपनी.
1: हाँ.
3: 400 कप्स ऑफ टी.
1: हाँ.
3: जनरेटिंग अप्रोक्सीमेटली 6,000 इन सेल्स एवरी डे एंड अबाउट 1.8 लाख रुपीस अ मंथ, पेइंग 25,000 रुपीस इन रेंट, 30,000 इन स्टाफ सैलरीज एंड अराउंड 25,000 इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल्स पर. द शॉप ओनर टेक्स होम क्लोज टू 1 लाख रुपी एवरी मंथ from the single outlet.
1: That is amazing, yaar. See, it all depends ki aapka plan jo hai, ye kaisa hai, aur is it working for you or not. But on top of it, you should know how to run a particular business. कोई भी बिजनेस हो, आई मीन इट वर्क्स आउट फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट आई बिलीव अगर आपको उसकी ज़्यादा समझ नहीं है तो डोंट रश इन टू इट, बिकॉज ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि येस इट वर्क्स आउट फॉर सर्टन पीपल कि वो एक अच्छा खासा यू नो कोई जॉब कर रहे होते किसी के लिए, दे लीव दैट एंड देन दे स्टार्ट ऑन देयर ओन, प्रोबेबली स्टार्टिंग फ्रॉम रोड साइड जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ से ही लोग अपना खाने पीने का कोई स्टॉल या टी स्टॉल जैसे कि भी आपने बताया ये शुरू करते हैं. इट वर्क्स आउट फॉर देम बट इट माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन. सो इफ़ यू आर ऑन द सेम थॉट्स कि चलो अपना कुछ शुरू करते, कीप इन माइंड यू आर इन न्यूजीलैंड, यू आर इन ऑकलैंड, और ऑकलैंड में सिचुएशन काफी डिफरेंट होगा कंपेयर टू व्हाट इज इट इन इंडिया.
3: यहाँ तो एक दिन में 400 चाय आप बेचेंगे नहीं.
1: एग्जैक्टली.
3: 10 रुपए में चाय कोई लेगा नहीं.
1: बट यू नो एक चीज जो यहाँ पर काफी काम कर रही है आई थिंक इज जो फूड ट्रक्स. इट हैज फूड ट्रक का कल्चर जो है ये मैंने अभी रिसेंटली कुछ सालों में ही नोटिस किया. उससे पहले इतना क्रेज नहीं था या इतना ज़्यादा आपको हर जगह पर फूड ट्रक्स नहीं दिखते थे, बट इट हैज स्टार्टेड टू वर्क लाइक इन अ गुड वे. देर वॉज दिस स्पॉट इवन इन माउंट रॉस्किल एरिया जहाँ पर आपको एक लाइन से सारे के सारे फूड ट्रक्स मिलते थे. आई डोंट रियली नो व्हाट हैपन्ड, बट वो फूड ट्रक्स अब वहाँ नहीं है, अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर चले गए हैं. बट देर इज दिस प्लेस, we are not going to take the name, but people jo yahan pe gaye they might know because we are not paid to advertise them. But wo jo hai na der raat tak khuli rehti, log wahan pe particularly jate street food ke liye, chai ke liye, so it works for that particular area because log wahan par rehte ek baje tak, I think 1 AM or 2 AM tak khula rehta kuch aisa kuch.
3: Okay.
1: Hai. Yeah, but it doesn't work for every particular place, so yes it might work for some people, it might not work for you in a particular situation. But koi bhi business, what do you think works the best, uska main reason kya hai? I feel the location matters a lot.
3: Location, आपका आप जो भी सर्व कर रहे हैं सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ व्हाट यू सर्व
1: व्हाट यू आर सेलिंग एंड द लोकेशन आर टू बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स ना. जैसे चाय इंडिया में इतना क्रेज चाय का लाइक वी नेवर एक्सपीरियंस्ड इट जब तक हम वहाँ पर गए नहीं. और वो चीज़ वहाँ पर चलती है बिकॉज पीपल डेफिनेटली यार उस तरह चाय पीते हैं वहाँ पे. लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा ना वो चीज़ है.
3: डिपेंड्स
1: बट वेरी इंटरेस्टिंग.
3: या
1: कहाँ खुद के लिए ये काम कर रहे कितना कमा रहे और कहाँ किसी और के लिए नौकरी कर रहे थे तो कितना कमा रहे थे.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Bunnings, we can make your paint projects easy. With a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74. Or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
1: Please use your imagination for the following ad.
2: If I won Powerball, the first person I'd tell would be... and would surprise all our friends by...
1: Imagine winning $35 million this Wednesday. Play in store or online.
3: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan from $675 one way, Hong Kong from $709, or Singapore from $715. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि drying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
8: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: What's your take?
12: 17 मिनट होने हैं 8 बजकर व्हाट्स योर टेक का वक्त अब हो चुका है. और आज जिस चीज के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं वो अन्य दिनों के मिलान में एकदम अलग है. आज हम बातें करने जा रहे हैं समथिंग इन रिलेशन विद स्पोर्ट्स. अभी दो दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल जो है ये खेला गया. बट ये टॉपिक जो है इज नॉट जस्ट बेसिकली अबाउट फुटबॉल और फीफा वर्ल्ड कप. वहाँ पर आपने देखा होगा स्पेन की जीत अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में हुई. और फाइनल के बाद अ लॉट ऑफ पीपल यू नो वे मॉकिंग हैव बीन सीन मॉकिंग मेसी.
5: अच्छा, आपने देखा फाइनल?
12: थोड़ा.
5: मैंने पूरा वर्ल्ड कप में आई हैवंट वॉच्ड एनी ऑफ द मैचेस बिकॉज obviously I'm not a football fan or I'm not that crazy into you know football or world cup. But this was one match that I had seen. But ekdam end part mein I must say commendable to each and every player on the field jinhone utna lamba match khela yaar. It was such a long match and it was just like not ending at all.
12: Kuch matches usse bhi lambe hue na.
5: Ha, wo to hai, but ye maine dekha to that's why I can say ki I saw like players were exhausted, they were getting frustrated, they were tired, but still they kept on going until and unless ek winner jo hai ye samne aaya.
12: To uske baad final ke baad Lionel Messi jo hai unke bare mein bahut sare memes bane hain. Unka mazak jo hai ye duniya bhar mein alag alag jagah par log jo hai ye uda rahe hain ki bhai ye to jeet hi nahi paya, this and that,
5: goat for what reason and blah blah blah,
12: kaise ye greatest of all time hai and wo sari cheeze. To humne socha aaj aap se poochte hain not only football sports mein agar aap dekho जिस तरह से हम लोग यू नो रेस्पोंड करते हैं टू प्लेयर्स जो जो शायद सेलिब्रिटीज हों जिनका नाम दुनिया में बहुत बड़ा हो. अभी आप ले लो लायनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल में rugby mein bhi bahut sare players hain, cricket mein bhi, you know, Virat Kohli, Rohit Sharma, they all have faced these things.
5: MS Dhoni, ek time aaya tha jab unko bhi kis tarah se log troll kar rahe the, like, you know, big big celebrity players jo ki mehnat kar kar they've reached this, that space in their life jahan unko na keval people from their own country or community lekin from around the world jante hain. और जब वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं पीपल आर डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग देम लविंग देम टॉकिंग अबाउट देम लाइक वाइज लायनल मेसी को भी बट जब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो दैट शायद वो अचीव ना कर पाए जो उनके फैंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या फिर वो अचीव ना कर पाए जो उनके अपोनेंट्स या ऑपोजिट को जो फैंस है सपोर्ट करते हैं वो यू नो खुश हो जाते कि अच्छा ये नहीं कर पाए तो हम किस तरह से उनका मजाक उड़ाने लगते हैं लेकिन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि अभी फ्रेश है ना ये
12: हाँ. तो वही हमने सोचा कि आपसे पूछते हैं कि क्या जब ऐसा कुछ होता है तो हम अपनी हदें जो है ये भूल जाते हैं क्या हम भूल जाते हैं कि वो प्लेयर जो है वो भी इंसान है उनके पास भी फैमिली है उनके पास भी दिल होता है उनका मन भी दुखता होगा
5: Obviously, but how are we responding when someone is so big, doing so good? So we as opponents, like हम शायद किसी और को support कर रहे हैं, तो we are not able to say much.
12: और ये जो चीज़ है किसी एक particular sport, किसी एक particular country से related नहीं है, क्योंकि हर एक sport में, हर एक country में छोटे से छोटे level पर, बड़े से बड़े level पर ये देखने को मिलता है. आप देख लो यहाँ पर सुपर रग्बी अलग अलग लेवल पर प्लेयर्स को किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है क्रिकेट में भी वही होता है तो क्या हम आपसे वही हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जब किसी खिलाड़ी का समय अच्छा नहीं चल रहा हो तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हम अपनी हदें भूलकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं जिससे उनकी निजी जिंदगी पर उनके पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ सकता है
5: तो इट्स ऑल अबाउट इज इट राइट और रॉन्ग यू नो तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस व्हाट्स योर टेक ऑन दिस अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो टॉपिक को लेकर बिकॉज आई नो हम थोड़ा डेप्थ में जाकर बातें कर कर देन वी केम बैक टू द टॉपिक बट आप हमें वापस से पूछ सकते हैं बट इफ यू गॉट एनी व्यूज टू शेयर गुड मॉर्निंग हम
11: हाय गुड मॉर्निंग पूजा हैप्पी बेलाइटेड बर्थडे
5: थैंक यू सो मच चेरल
11: Good to have you guys back. I mean, you know, you get used to the person you listen to every day. It was good to listen to Rusbe, but good to have you guys back.
5: Thank
11: I just want to share my, like, I am, like, when this game, when this World Cup started, so I work at a place where there's lots of young boys, and then we had a competition in, there's like one person will take home $150. And then, you know, you don't get to choose the, which team that you just pick it. And my team was Austria. But I've always loved Spain. Yeah, I mean, for the, you know, I wanted Spain to win. But you don't get to choose. I mean, I just wanted to say that, I mean, Messi, great player. I mean, there's only one winner at the end of the day. What people were mocking and doing is not good. Just for example, Fiji mein abhi jaise hota hai, bar one. And people were, I mean, I am from Rewa.
5: Huh.
11: So I support Rewa. I don't watch soccer as well. My husband is so involved in soccer. But I try to stay away. But at the back of my mind, I always support them. But I mean, whoever wins, if Ba wins, my friends are from Ba, I say, oh, you know, you congratulate them.
5: Huh.
11: But I think it should be a healthy competition. There's always a one winner. They should not be mocking or put them down. I mean, Vijay Bhai is right. At the end of the day, everyone goes home for the family as well. And you know, if you see at the end how all of them were crying, you can feel it that no one wants to lose. We kabhi nahi haarna chahta. We don't ever want to lose in our life as well. We all want to come first in school. We want to do everything that everyone else gets to do. But ek hi ho sakta hai na? Only one winner.
5: Obviously.
11: So, yeah.
5: Thank you. Thank you so much, Cheryl, for your call and to kickstarting aaj ka hamara what's your take. So, Cheryl ka call aaya. Inhone to apna view share kiya. But what about you? Go Reva, go! किसी ने लिखकर भेजा है. Cheryl, a message for Reva fans. Go Reva, go! So if you don't really know what Reva is, it's basically a छोटा सा district in Fiji के Viti Levu में.
12: छोटा सा?
5: हाँ, छोटा सा. और that particular district is basically quite popular when it comes to soccer, football, ना? तो Fiji से जो लोग belong करते हैं वो जानते हैं. But if you're not from Fiji, ये information आपके लिए.
12: या तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्यों हम why do we have to become so aggressive and so personal you know obviously जब लोग public eye में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़
5: they should be open for criticism
12: हाँ but जो क्रिटिसाइज कर रहा है यू नो इफ आई एम क्रिटिसाइजिंग समवन
5: किस हद तक
12: मैं क्या हम उस हद तक क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जिस हद तक हम किसी और का क्रिटिसिज्म अपने ऊपर ले सके
5: राइट दैट्स ट्रू
12: कहते हैं ना कि आप दूसरों के साथ वही करो जो आप चाहते हैं कि कोई और आपके साथ करे क्यों हम ये बात भूल जाते हैं यू नो आई एम नॉट अ मेसी फैन आई एम नॉट एन अर्जेंटीना फुटबॉल फैन बट मैं जो कुछ भी हम लोगों ने देखा या जो कुछ भी नोटिस किया उसके बाद यू नो मेरे मन में पहली बात तो ये आई जब मैंने ये सुना कि यू नो मेसी के घर पर उनके फैमिली वाले भी होंगे उनको देखकर कैसा लग रहा होगा
5: या व्हेन द वर्ल्ड इज मेकिंग फन ऑफ हिम या
12: कि यू नो एक ही पल में क्यों हम भूल जाते हैं कि किसी ने कितना अच्छा किया है
5: या अरे ये तो लाइक इट्स लाइक दुनिया का दस्तूर ये लाइन बोलते ना कि आप 100 अच्छी चीजें कर लो लेकिन वो एक गलत चीज जो आपसे हो जाए या गलती हो जाए या कर ली आपने कुछ गलत चीजें तो वो एक गलत चीज लोगों को याद रखी लेकिन आपकी 100 अच्छी चीजें भूल जाएंगे लोग जैसे इनके मामले में शायद वही बात ना कि लोग ये भूल गए हैं कि ही इज नॉट 19 ईयर ओल्ड एनी मोर ही इज 39 ईयर्स ओल्ड
12: Yeah.
5: is still playing football with the same passion जो शायद इन्होंने जब शुरू किया था जिस passion के साथ and on the other hand इनके बारे में इतना भी आपको बता सकते हैं कि he is one of those players जिन्होंने 3 बार world cup finale खेला है और उसमें से एक बार जीता भी है
12: of course
5: right तो it's not that he has not won world cup he has won 2026 वाला नहीं जीता that's a different case but 3 बार world cup finale खेला है that's also an achievement in itself Because there are so many teams who desperately try hard, itni mehnat karte, but wo finale tak bhi nahi pahunch paate, na? But on the other hand, if you've got your take on this, the way we treat our sports celebrities, players, after a loss, wo kya sahi hai ya galat? And I'm saying we because this is like a big group of people. We are not able to differentiate ki kaun hai, kaun nahi. So just like, jis tarah se log... किसी एक लॉस के बाद किसी एक बड़े से स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी को ट्रीट करते हैं क्या वो तरीका सही है या नहीं आपका क्या ख्याल है इसके मामले में आप 5599 पर हमारे पास मैसेज जरूर कर सकते हैं
9: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
13: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आओ
14: मैं लाऊं अपना ए गेम
9: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: से PMI 22 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 9 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने अपने व्यूज जो है कि अभी तक हमारे साथ शेयर किए हैं
1: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस के लिए और कॉल्स के लिए वैसे एक मैसेज आया इन्होंने कहा इट्स इजी टू जज फ्रॉम द आउटसाइड बट ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम इमेजिनिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सस सिचुएशन नेवर मॉक और क्रिटिसाइज समवन विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इन देयर प्लेस जो बात आपने कही थी वो इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे पास मैसेज करते हुए कही है 9267 आपने नाम नहीं लिखा है पर शुक्रिया आपके मैसेज के लिए इधर आज के वन सिर्फ एक टॉपिक पर जितने लोगों ने अपने अपने मैसेजेस भेजे हैं वंस अगेन थैंक यू सो मच नाउ बिफोर वी मूव ऑन आपको याद दिला दें आज वेंसडे है एंड द 22nd ऑफ जुलाई अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नाइट क्योंकि आज पावरबॉल जैकपॉट जो है $35 million हो चुका है
2: ओके
1: आई गोना ट्राई योर लक टुनाइट
2: या मे बी
1: इट शुड I know कि one in a million chance होता है जीतने का but who knows that one in a million that one might be you ना
2: yeah exactly
1: तो कोशिश जरूर करें
2: वैसे आपको भी कुछ जीतने का मौका थोड़ी ही देर में हम देंगे
1: but उससे पहले एक खूबसूरत सा गाना आपको सुनाते हैं बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक लखविंदर वडाली और साथ में नीति मोहन की आवाज़ों में आज का हमारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इस घंटे का

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Hum, accurate traffic.
5: The warehouse packed with storage savings.
6: A high of 16, a mostly cloudy one for us today. It is starting to ease nicely on motorways. Coming in on the southern, 40 minutes Manukau to town, 50 from Drury, slow from Manurewa, heavy from Mount Wellington. Southwestern, still quite heavy northbound from the southern up to Puanui. Northwestern, 32 minutes in from Massey, patchy to the causeway, slow from there, heavy spots to Greylin. Northern, 30 in from Constellation, heavy patches there to the bridge.
5: 50% off Sistema storage organisers on now at the warehouse.
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
8: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
7: घर बेचने से पहले NZPMI के पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
9: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At AssureOne, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. AssureOne, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North Hanvale Advisory Limited. Trading as AssureOne is a licensed financial advisor.
1: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jaiku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jaiku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jaiku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
11: आज का थ्रोबैक आपके लिए बस थोड़ी देर में हम जरूर पेश करेंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा। बट ऑन द अदर हैंड लेट मी रिमाइंड यू, आज बहुत से पेट्रोल स्टेशंस आपको टेंस ऑफ पर लीटर ऑन फ्यूल जो ये ऑफर कर रहे हैं, सो डू योर रिसर्च प्रॉपरली बिफोर यू फिल अप।
12: फिलहाल हमने कहा था कि आपको कुछ जीतने का मौका हम देंगे, आपको तो पता ही है। लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट्स न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांची ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहे हैं गरबा विद द सेंसेशनल राज गरवी। और ये सैटरडे 5 अगस्त को रहेगा, अनदर 8-9 डेज टू गो। महात्मा गांधी सेंटर, टिकट्स बहुत तेजी से बिक रहे हैं। eventstickets.co.nz याद रहे, eventstickets.co.nz से टिकट्स आप ले सकते हैं। और कुछ डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो स्वप्निल से आप बातें कर सकते हैं 0224394736 पर। और अभी हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहां पर आप एक डबल पास जीत सकते हैं टू गो एंड बी पार्ट ऑफ दिस सेंसेशनल गरबा नाइट राजगढ़वी के साथ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आर जी लिखें, अपना नाम लिखें और उसे 5599 याद रहे, RG अपना नाम 5599 पर हमें भेजते हैं।
11: बस इतनी मिनिमम सी रिक्वायरमेंट्स है और आपका नाम हम उस ड्रो में शामिल कर देंगे जहां पर आप जीत सकते हैं अपने लिए एक डबल पास टू गो एंड विटनेस दिस अमेजिंग गरबा नाइट विद राज गरवी हैपनिंग राइट हियर इन ऑकलैंड ऑन द 1st of August। और वेन्यू याद रहे, महात्मा गांधी सेंटर। RG और अपना नाम लिखकर 5599 पर भेजने के लिए आपके पास है 5 मिनटों का समय। हाय हाय हाय चिकन।

जो दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती, गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम, ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: बेबी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता अमा हासला A1 लाइफस्टाइल A1 आई मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम एक ही बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में
2: क्यों पड़े हो चक्कर में

0: accurate traffic.
1: Spend a day in Mission Bay. Food, flicks, fun.
2: Quite cloudy today. Got a high of 16 degrees. Not looking too bad on motorways coming in now. Northern, 28 minutes. Constellation Drive to the city. 42 from Silverdale. We're slow from Constellation. A bit heavy at times. Northwestern, 26 minutes. Massey to town. Slow from the causeway. Bit heavy at Point Chev. Southern, 38 Manukau to the CBD. Slow from there. Heavy from Otahu. Southwestern, heavy northbound through Whitty. Fine the other way.
1: New arrivals, familiar favourites. Iconic waterfront location. missionbay.co.nz.
3: The long weekend. Time to kick back, relax, reflect, and think of something good to do together. Something that'll really bond you. Something selfless that'll give life just a little more purpose. Something like getting a group of blood buddies together to give blood or plasma. This winter, with all the dreaded loogies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
4: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only, starts Thursday.
5: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate bed, now half price. Queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Manukau and Poke Koke. Celebrating 36 years of great sleep.
6: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
9: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A bleak report shows that New Zealand's emissions are not falling fast enough to meet climate goals. The Climate Change Commission's annual report shows progress stalled in 2024. It says the rate of reductions will need to more than double over the next few years. Officials are investigating a mysterious hazardous substance spill which forced evacuations on Waikato's Tuako. An unknown chemical entered drains at the water treatment plant, which then had to be flushed out by fire crews. Organisers of Gisborne's Rhythm and Vines are staying tight-lipped about the festival new location. CEO Kieran Spillane says it's about future-proofing the event.
11: To grow, to give us more capacity, better access, more opportunity, so R&V can thrive for the next generation of festival fans.
10: It's hoped a new pocket-sized defibrillator will lead to bigger chances of survival. St John has launched the new Lifebeat Mini, which is about the size of a mobile phone and weighs less than 700 grams. Spokesperson Simon Barnett says it'll make treatment more accessible.
12: The Mini is the smallest and lightest defibrillator on the market in New Zealand, and it's designed for those people on the go, people who love playing in the outdoors or travelling the country.
10: The Black Caps are eyeing up a big total in sport in the fifth and final ODI against the West Indies in Bridgetown. A short time ago, they were 159-3 after 29 overs. To rugby with shift 4, after 5 months out with a dislocated shoulder, Fabian Holland is set to return on Friday. Otago defend the Ranfurly Shield against Mid-Canterbury and Alexandra. Coach Mark Brown says the All Blacks lock is champing at the bit.
13: He's been a bit of a pest, actually. He's ready to go, so he'll be good for a few minutes.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: Super City Auckland mein current temperature is 9 degrees, high of 15 expected hai baad mein chalkar. Overnight 8 degrees tak rahega. Aaj ke mausam ke liye kaha gaya hai cloudy periods with isolated light showers or light winds throughout the day. Hum experience karne wale hai, sunset 5:29 pm par rahega.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
9: What's going on? Kya bakte ho?
15: Are kehna kya chahte ho? I don't know why whenever I listen to this, मुझे प्राण साहब याद आते हैं.
8: क्या?
15: I don't know, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो किसी ना किसी फिल्म में उन्होंने शायद एक लाइन बोली होगी कि आप बकते हो. लाइक उनका जो अंदाज था ना, लाइक द वे ही यूज्ड टू से हिम एंड आल्सो द वेरी लेजेंडरी एंड वेटरन एक्टर जीवन, ये भी बड़ा यूनिक उनका भी स्टाइल हुआ करता था ना. पहले के एक्टर्स भी कितने कमाल के थे, कितना अलग डायलॉग डिलीवरी. लाइक यू कैन नेम ईच एंड एवरी एक्टर एंड यू नो कि उनका एक डिस्टिंग्विश्ड तरीका था
8: डायलॉग डिलीवरी का. एग्जैक्टली. तो आज क्या बकते हूँ में टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल आप सभी को पता है किस लिए होता है
15: ऑब्वियसली.
8: लेकिन डेविड रश जो है ये इनका ये किसी और काम आया.
15: डेविड रश है कौन?
8: ये अमेरिका में रहते हैं.
15: okay.
8: और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था ऑफ बैलेंसिंग टॉयलेट पेपर्स ऑन हिज हेड.
15: हाँ. कितने रोल्स बैलेंस किए?
8: तो शुरू में इन्होंने 2021 में 101 टॉयलेट पेपर रोल्स जो है अपने सिर पर बैलेंस किए थे.
15: वेरी नाइस.
8: फिर किसी ने उनको देखा, वो इंस्पायर्ड हुए. पिछले साल मई में उस शख्स ने 152 टॉयलेट पेपर्स रोल कर बैलेंस कर लिए अपने सिर पर.
15: वाओ.
8: Just imagine.
15: 152
8: rolls. Thew, yeah.
15: Yeah.
8: उसके बाद डेविड रश को ये बात हजम नहीं हुई
15: कि इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया.
8: हाँ. और अब इनका पेट खराब हो गया.
15: अच्छा.
8: हाँ. जब इन्होंने ये देखा, उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. और इस साल उन्होंने 30 सेकंड्स तक 195 rolls of toilet paper अपने सिर पर बैलेंस करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया.
15: 195.
8: हाँ.
15: ओह.
8: 195 rolls.
15: अगर पांच और कर लेते 200 हो जाता.
8: अरे भाई अब उतना ही बैलेंस किया होगा कुछ
15: उनका, नहीं कर पाए मतलब
8: कुछ
15: ज्यादा.
8: उनका कुछ मैथमेटिक्स होगा ना, किस तरह से पाइपा जो है ये रखते हैं, किस तरह से प्लेस करते हैं, ओडा जो होता है वो सारी चीजें ना.
15: यू नो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. इन्होंने रिकॉर्ड तो बनाए है बट हिज रिकॉर्ड इज ऑफ कोर्स वर्थ टॉकिंग अबाउट एंड अप्रिशिएटिंग बिकॉज इनका आया जहन में ऐसा कुछ करने का. बट आई थिंक व्हाट्स मेसमराइजिंग इज इफ यू सी जो लेडीज होती है जो मटके में नहीं घड़े में पानी लेकर आती है.
8: हाँ.
15: वो इतने सारे मटके एक साथ बैलेंस करते हैं. आई डोंट नो हाउ डू दे डू इट. और मैंने बहुत से ऐसे डांसर्स भी देखे हैं जो मटका सिर पर रख के डांस करते हैं. आई एम नॉट श्योर कि क्या उनके मटके अलग अलग होते हैं या फिर ऐसे जॉइंट होते हैं सो दैट इट डजंट फॉल. बट वो मटका सिर पे इतना ऊंचा सा ऐसा टावर बनाकर मटके का वो डांस कर लेते हैं. बट अनदर ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू कैन रियली अप्रिशिएट कि वो इतना लोड अपने सिर पर बैलेंस करते हैं जो ईंट के भट्टी पर काम करते हैं.
8: हाँ.
15: जो ईट रखते हैं सिर पर.
8: एंड इट्स सो हेवी
15: ऑब्वियसली एंड ब्लॉक्स ऑफ ईट जो ये अपने सिर पर रखकर एक टावा इतना ऊंचा बनाते हैं. वो बनाते उतना हाइट पे होता भी है, वो किस तरह से कैरी करते हुए गिरता भी नहीं है. इट्स सो यू नो एस्टोनिशिंग टू थिंक अबाउट कि वो करते करते वो काम इतना यूज्ड टू हो जाते हैं या हर एक डिटेल से इतना वाकिफ हो जाते कि वो कर लेते वो चीज ना.
8: कितना दुखता होगा उनका सर ना.
15: यह स्ट्रॉन्ग भी बन गया होगा. मैं शुरू में तो दुखता ही होगा. हु नोज. बट इफ यू सी अ मैकेनिक्स हैंड और जो कार्पेंटर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, उनके हथेलियों को आप देखोगे कि कितना हार्ड होता है. हैव यू नोटिस?
8: या सख्त होता है.
15: वेरी हार्ड. लाइक इफ यू सी उनकी हथेलियां, आई एम टचिंग माय पाम, बट आप अपने हथेलियों के साथ उसको कंपेयर करके देखिएगा. इट्स सो हार्ड बिकॉज माई डैड ही इज अ कार्पेंटर बाय प्रोफेशन एंड ही इज बीन अ मैकेनिक बाय प्रोफेशन एज वेल. तो उनके पाम्स बहुत हार्ड है. And that's like I've seen a lot of truck drivers as well. I think apne bhai ka hi haath mein dekh rahi thi isi din ki like why is it so hard and it's really hard. To kuch cheeze hoti hai jo karte karte shayad unka structure change ho jata hai, unka jo firmness hota hai wo change ho jata hai. Sir dukhta hoga no doubt, but shayad they've become like it's become more strong, hard headed ho gaye honge wo. on the other side. Anyway, 7 minute ho rahe hain 9 bajkar Wednesday 22nd of July ki subah. The Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye lekar aa rahe hain. This is what's going on. Thodi der baad, what's up Auckland?

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: 16 मिनट हो रहे हैं फिलहाल 9 बजकर व्हाट्सएप ऑकलैंड में. लेट्स सी क्या कुछ इवेंट्स हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में हो रहे हैं और कैसे आप इनका हिस्सा बन सकते हैं. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जिसके बारे में बातें कर लेते हैं, विच इज फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड इन एसोसिएशन विद एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026. इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन टू अटेंड और ये होने वाला है इसी संडे 26th ऑफ जुलाई को A1 Event Center, 731 Great South Road, Papatoetoe में 10 AM से लेकर 3 PM के बीच. Now this Health and Wellbeing Expo जो है इसमें इतनी सारी चीज़ें आपके लिए ऑफर हो रही हैं, जैसे कि फ्री स्क्रीनिंग में आप यहाँ पर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी, ECG, आई टेस्ट वगैरह जो है ये करा सकते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको दिए जा रहे हैं ऑन कैंसर, कैंसर स्क्रीनिंग एंड अर्ली सिम्टम्स के लिए, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, बाउल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पेप्समिया, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सारी चीज़ों पर डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं. और नॉट जस्ट दैट, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको सिखाई भी जाएंगी, जिनमें CPR देना, EpiPen का इस्तेमाल करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्लस ईजी योगा आसन जो है ये भी यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा. एंड आजकल के ज़माने में वी हैव सो मैनी पीपल गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल इश्यूज़, सिचुएशंस जो आपके वेलबींग के लिए सही नहीं है. तो ऐसे में कैसे आप खुद का ख्याल रख सकते हैं, स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, गैम्बलिंग या अल्कोहल इशू हो अगर उसे कैसे डील कर सकते हैं. और यहाँ पर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट रहेंगे जिनसे आप मुलाकात कर सकते हैं और फिर वो आपको और भी डिटेल्स आपके पर्टिकुलर केस पर दे सकते हैं और काउंसलिंग सर्विसेज जो है इन पर भी आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं फॉर यू और फॉर समवन यू नो. एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और करियर के बारे में बातें करें तो खुद का भविष्य, खुद का करियर बनाना ये डेफिनेटली आपके हाथों में. इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस, एनी इन्फॉर्मेशन तो न्यूजीलैंड पुलिस रिक्रूटमेंट टीम यहाँ पर रहेगी, मैनिकाओ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम रहेगी, ऑकलैंड इमरजेंसी मैनेजमेंट और साथ में ड्राउनिंग प्रिवेंशन की टीम जो है ये भी यहाँ पर रहेगी. एंड जैसे कि हमने कहा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग चीज़ों पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डाइटिशियन एडवाइस, किडनी एंड हार्ट केयर, स्ट्रोक, एल्डर केयर, एलर्जी एंड साथ में इन्फेक्शन कंट्रोल पर भी डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं. बट रिमेंबर, इट्स नॉट जस्ट अ डे अबाउट हेल्थ एंड वेलबींग, बट अ डे फॉर योर फैमिली फन इवेंट एज वेल. बच्चों के लिए फेस पेंटिंग, बहुत सारे एक्टिविटीज, लाइट रिफ्रेशमेंट्स, हैम्पर्स एंड गिव अवेज के साथ साथ योगा एंड जुम्बा क्लासेस और लाइव परफॉर्मेंसेस जो है ये भी यहाँ पर होंगे, दैट यू एंड योर लव्ड वंस अटेंडिंग द इवेंट कैन डेफिनेटली एन्जॉय. डिटेल्स चाहिए अबाउट दिस तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड की जनरल सेक्रेटरी शनीला महाराज को, शनीला FGFNZ@gmail.com, SHENILAFGFNZ@gmail.com पर इन्हें आप ईमेल कर सकते हैं.
4: उसके अलावा न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का जो फोर्थ नेशनल कैरम टूर्नामेंट है ये 22nd और 23rd अगस्त को होगा बर्कनहेड स्काउट्स हॉल. हर लेवल के, स्किल लेवल के प्लेयर्स को इसमें हिस्सा लेने के लिए वेलकम किया जा रहा है. रजिस्ट्रेशन तथा अन्य जानकारी के लिए न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज आप विजिट कर सकते हैं या प्रधान पंकज मोंगा को संपर्क कर सकते हैं 021-090-85067 पर.
3: एंड साथ ही साथ आपको याद दिला रहे हैं कि श्री राम मंदिर हेंडरसन 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन यहाँ पर अखंड रामायण पाठ ये होने को है संडे फर्स्ट एंड सैटरडे फर्स्ट एंड संडे सेकंड ऑफ अगस्त को. और सैटरडे सुबह 7 बजे यहाँ पर रोड पूजा के साथ प्रोग्राम की शुरुआत होगी और साथ में सुबह 10:30 बजे संडे को हवन और आरती के साथ प्रोग्राम की समाप्ति होगी. यहाँ पर महाप्रसाद भी दिया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम. अगर आपको रजिस्टर करना है या डिटेल्स चाहिए अबाउट द प्रोग्राम तो आप 8364647 पर कॉल कर सकते हैं.
4: इसके अलावा रामलीला न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये होने जा रहा है और ये 8th of August को रहेगा वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापटोएटोए में और आप सभी इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं. टिकट्स जेएस फ्रेश मार्ट में आपके लिए अवेलेबल है.
3: रिमाइंडिंग यू ऑल कि आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी ऐसे कुछ कम्युनिटी रिलेटेड इवेंट्स अगर हो रहे हैं तो लेट अस नो 5599 पर आप हमारे पास buzz@mfm.com पर buzz@mfm.com पर आप हमारे पास डिटेल ईमेल कर सकते हैं और ये आपके लिए हम हमारे इस खास सेगमेंट व्हाट्सएप ऑकलैंड के सेगमेंट में जरूर लेकर आएंगे।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Hey, देखो हम आ गए।
2: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
5: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
6: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
8: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।
10: कॉफी द यूजुअल,
11: how about the unusual? Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
12: It's back to school at Woolworths. Get Mother Earth Baked Oaty Slice Bars 6-pack, just $3.59 each. Or Fresh and Fruity Regular Yogurt 6-pack, just $3.99 each. Back to school at Woolworths. Tea season exclusions apply.
13: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
14: क्यों, क्या हुआ?
13: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
15: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
16: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
15: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
16: पर डेवलपमेंट के पैसे
15: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI।
17: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
18: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
19: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
20: Branchy Group, Tree Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Mali ne prastut kare chhe Raj Gadvi live in Auckland.
21: Hey, hello, bhai, hello, hello. Bhai, hello, hello.
20: Taiyar thai jao ek yaadgar saanj mate jya hashe music, masti ane non-stop garba. Saturday night, 1st August, the Mahatma Gandhi Center. Raj Gadvi sathe manao ek shandar garba night. Garba with Raj Gadvi. Saturday night, 1st August, tickets mate jao eventstickets.co.nz.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: 25 मिनट हो रहे हैं अभी 9 बजकर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो मच. थोड़ी देर बाद आपने नोटिस किया होगा कभी कभी बच्चों से हम कहते हैं कि अपना जंपर डाल लो कार्डिगन पहन लो लेकिन कहते हैं आई एम नॉट कोल्ड.
3: हाँ बता देते हैं वो.
2: क्या उनको वाकई में ठंड नहीं लगती है या क्या होता है उनके साथ उस टाइम पर ये थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे.
3: ओह ओके दैट्स इंटरेस्टिंग. सो वी विल फाइंड इट आउट जिसके लिए आप हमारे साथ ही बने रहिएगा. लेकिन उससे पहले आपको विनर बनाने के लिए हम एकदम एक्साइटेड हैं बिकॉज बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं फॉर यू टू बिकम अ विनर विद अस. और ऐसी एक और एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अभी हमने आज सुबह सुबह बातें भी की थी अबाउट दिस अमेजिंग अमेजिंग शो हैपनिंग दिस मंथ. इनफैक्ट नॉट वेरी फार अवे दिस सैटरडे को ये होने जा रहा है और सैटरडे की बातें हम करें तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप विटनेस कर सके देख सके जाकर नन अदर देन राहत फतेह अली खान को. आ रहे हैं बड़ी खूबसूरत आवाज़ के ये मालिक राहत फतेह अली खान जो कि अपना बहुत ही कमाल का शो जो है ये लेकर आ रहे हैं 25th of July को एट द ट्रस्ट अरेना. और आपके पास अपॉर्चुनिटी है इनको देखने का और जाकर विटनेस करने का इनका मैजिक.
2: ये रहेगा याद रहे द ट्रस्ट अरीना में जहां पर इनका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहेगा. जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइफ, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं. 25th of July इज द डेट. और अगर आपने ऑलरेडी टिकट ले लिया है तो आपके पास एक बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ.
3: ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको मिलेगा मौका इनसे मिलने का, इनके साथ रूबरू होने का. एंड दिस विल बी गिवन टू ओनली वन पर्सन क्योंकि हमारे पास एक मीट एंड ग्रीट पास है गिव अवे करने को जो हम आपको दे सकते हैं. इनफैक्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी कल भी मिली होगी ड्राइव शो में, आपने शायद इसमें पार्टिसिपेट किया होगा बट आज भी आपके पास मौका है. बट हाउ डू यू क्वालिफाई फॉर दिस मीट एंड ग्रीट पास वाले ड्रो के लिए, क्योंकि इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए भी आपको एक कंडीशन मीट करनी होगी. एंड द कंडीशन इज कि आपने अगर dryTickets.com से टिकट्स ऑलरेडी ले लिए हैं या फिर आपने हम पर हमारे साथ टिकट्स जो है ये जीते हैं टू वॉच एंड विटनेस द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान दिस सैटरडे एट ट्रस्ट अरेना, तो आप हमारे पास अपने नाम के साथ RFK लिख कर भेजें. रिमेंबर ये कंडीशन है आपका कि अगर मीट एंड ग्रीट पास आपने जीता है तो आपके पास ऑलरेडी एक टिकट होनी चाहिए टू अटेंड द वेन्यू और द इवेंट. चाहे आपने वो टिकट परचेज किया हो या हम पर हमारे साथ जीता हो तो ही आप हमारे पास मीट एंड ग्रीट पासेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं.
2: So if you have a valid ticket राहत फतेह अली खान को देखने के लिए तो अभी आप क्या करें, RFK लिखें और अपना नाम लिखें और 5599 पर हमारे पास भेज दें. और जब आप ऐसा करेंगे आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी. ना केवल आप कॉन्सर्ट एंजॉय करेंगे, आप में से किसी एक को उस्ताद राहत फतेह अली खान से मिलने का मौका भी मिलेगा.
3: बिल्कुल. तो RFK लिखे जल्दी से हमारे पास और RFK लिखकर अपना नाम लिखकर 5599 पर आप भेज सकते हैं. रिमेंबर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं अभी RFK लिखकर भेज देते हैं बाद में टिकट्स लेंगे फिर बाद में अपने टिकट्स लिए ही नहीं, हु नोज कि ये विन आपका वैलिड ना हो बिकॉज द टिकट्स माइट बी चेक्ड एट द वेन्यू बाय समवन फ्रॉम द प्रमोटर्स टीम, ऑर्गेनाइजिंग टीम.
2: ये सिर्फ मीट एंड ग्रीट पास है.
3: हाँ.
2: इट डज नॉट guarantee, it does not give you entry into the
3: show event. Yeah, you can't go and watch the show, you can't go and watch the event,
2: you can
3: basically
2: only go and meet Ustad Rahat Fateh Ali Khan agar aapke paas already tickets honge agar aap concert dekhte hain to apne valid tickets le liye hain to ab bas itna hi karna hai RFK aur apna naam ye 5599 par hame bhej dein.
3: राइट ऐसा करने के लिए आपके पास 5 मिनटों का समय है और आज जाने से पहले ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा अनाउंसमेंट हम कर जाएंगे कि ये मीट एंड ग्रीट पास किसने जीता है. सो गेट गोइंग.
0: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
4: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ
5: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: थोड़ी देर बाद ड्रॉ करेंगे और बताएंगे किसने जीता है राहत फतेह अली खान से मिलने का मौका। और जितने लोगों ने अपनी अपनी एंट्रीज हमारे पास भेजी है, अभी भी आपके पास दो मिनटों का समय है। आरएफ के लिखकर भेज सकते हैं अपने नाम के साथ, अगर आपके पास ऑलरेडी परचेज टिकट्स हैं या फिर आपने हम पर टिकट्स हमारे साथ जीते हैं टू गो एंड वॉच द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान और इनका जो शो होने जा रहा है इसी सैटरडे को एट द ट्रस्ट अरेना, तो ही आप अपनी एंट्रीज मीट एंड ग्रीट पास के लिए भेज सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, आज जाने से पहले हम ड्रॉ जो है ये करेंगे और बताएंगे हु हैज वॉन दी पासिस। बट राइट नाउ बिफोर वी मूव ऑन, जाने से पहले मतलब आगे बढ़ने से पहले, बॉलीवुड की दुनिया में काफी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। आपको पता है जेनिफर विंगेट इनकी शादी हो गई है।
1: अच्छा, किन से?
0: एक लड़के से।
1: अच्छा, that's very nice.
0: Because मेरे को इनका नाम नहीं पता।
1: Congratulations.
0: Jennifer Wingett is someone who is quite known in the television industry. काफी यंग उम्र से इन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में तो काम किया ही है, बट बॉलीवुड की भी कुछ फिल्मों में ये नजर आई हैं। शी इज बेस्ट नोन फॉर आई थिंक कसौटी जिंदगी की, जिसमें इन्होंने स्नेहा का रोल जो है ये प्ले किया था। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देन सरस्वती चंद्रा जो है ये शो के लिए भी इनको काफ़ी जाना जाता है। सो इनकी शादी जो है आई थिंक जस्ट कल परसों ही हुई है। एंड सिंगापुर बेस्ड एक बिजनेसमैन है, इनके साथ इनकी शादी जो है ये हुई है, जिनका नाम है विलियम इश्माइल।
1: ओके, सो कांग्रेचुलेशंस। दूसरी तरफ क्या अरिजीत सिंह आ रहे हैं रिटायरमेंट से बाहर?
0: क्या आ रहे हैं?
1: इनका नया गाना जो है इमरान हाशमी के फिल्म आवारापन 2 का, ये आवारापन, यू नो, ये गाना जो है उसके बाद काफी अफवाहें उड़ रही हैं, काफी बातें हो रही हैं कि क्या अरिजीत सिंह इज बैक टू प्लेबैक सिंगिंग। और उनके मैनेजर जो हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, he is not coming out of retirement. वो जिन लोगों को उन्होंने प्रॉमिस किया था वही काम वो पूरा कर रहे हैं, नथिंग मोर।
0: आई थिंक व्हेन ही रिटायर्ड उस समय पर भी इन्होंने ये बात कह दी थी कि जो फिल्मों के गाने आ रहे हैं आफ्टर ही अनाउंस द रिटायरमेंट्स, दोज आर नॉट न्यू प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने लिए हैं। वो वही प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने इस अनाउंसमेंट से पहले साइन अप किए थे एंड दे आर ड्यू टू रिलीज, तो वो आते रहेंगे और जब तक वो पूरा का पूरा जो कमिटेड है रिलीज हो नहीं जाता तब तक इनके गाने फिल्मों के आते रहेंगे। एंड वंस इट्स डन तो जाकर कुछ नए गाने शायद ये ना ले, आई मीन शायद नहीं, ये नहीं लेंगे, बट ऑन द अदर हैंड इन्होंने अपने जो गाने हैं ये ज़रूर रिलीज़ किए अपने म्यूज़िक चैनल के थ्रू जो इन्होंने खुद पर्सनली बनाए हैं। 20 मिनट हो रहे हैं, ये 20 मिनट बाकी है 10 बजने में, थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आएंगे आज का डेली राउंड अप।

सकते हैं जैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स. मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.

0: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
1: Sorry about that.
0: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
1: Kogan Mobile, true Aussie value.
0: Terms and conditions apply.
2: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90, or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
3: Rebel's end-of-season sale is still on. Score up to 50% off the big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Plus, score a free Rebel Sport bag when you spend $50 or more. End-of-season sale is on now. Only at Rebel Sport. See your live T's and C's.
4: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
6: What's going on?
7: 18 मिनट रह गए हैं 10 बजने में और मैंने कहा था कि आपको बताएंगे कि बच्चे अगर कहते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड क्या वाकई में उनको ठंड नहीं लगती है तो रेडियो न्यूज़ ज़ीलैंड पर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की गई थी कि जहां पर उन्होंने कहा था कि एक खेल के दौरान बच्चा जो है बार बार अपने नीज को छू रहा है स्क्रेप कर रहा है लेकिन खेल ख़त्म होने के बाद तक उसको एहसास नहीं होता है कि शायद उनको चोट लगी है क्योंकि उस समय पर उनका ध्यान किसी और चीज़ पर होता है इसी तरह से ठंड उनके साथ होती है कोल्ड कैन स्लिप इनटू द बैकग्राउंड इन अ सिमिलर वे बच्चे की उंगलियां जो है ये ठंडी हो रही हैं व्हाइल द प्लेग्राउंड रिमेंस फार मोर कंपेलिंग जब सब कुछ ख़त्म होगा तब उनको लगेगा कि आई थिंक आई शुड पुट ऑन अ जैकेट तो कहते हैं कि हमारा स्किन जो है ये कंटेन करता है सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो रिस्पोंड करता है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वन कूल सेंसिटिव चैनल इसका नाम है TRPM8 ये हेल्प करता है कन्वर्ट कूलिंग एट द स्किन इनटू इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी और इसी वजह से एक स्पेशल सर्वे जो है ये किया गया था बच्चों में और लेबोरेटरी स्टडी जहाँ पर 6 से 9 साल के बच्चों के ऊपर ये स्टडी किया गया था ये पाया गया कि उनका सेडेंट्री मेटाबॉलिक रेट है यानी कि कितना एनर्जी वो बर्न करते हैं व्हेन दे आर रेस्टिंग वाज अराउंड 39% हायर कंपेयर टू अडल्ट्स इन द स्टडी उनका स्किन जो है वाज ऑल्सो वार्मर ओवर द पार्ट्स ऑफ देयर टोर्सो एंड द स्किन ऑफ देयर हैंड्स रिकवर्ड टेम्परेचर और ब्लड फ्लो जो है अडल्ट के मिलान में फास्टर होता है व्हेन बीइंग एक्सपोज टू कोल्ड इसी वजह से शायद उनको लगता है कि उनको ठंड नहीं लगती है
8: वेरी इंटरेस्टिंग और इसके अलावा चलिए एक और एक जो अपडेट जो है ये आया है एंड दिस इज बेसिकली बर्ड फ्लू जो है ये न्यूजीलैंड में डिटेक्ट हुआ इन वाइल्ड बर्ड्स और इसकी वजह से कई सारी ऐसी पोल्ट्री कंपनीज हैं जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं बाय कीपिंग फ्री रेंज चिकन्स इंडोर्स हाउएवर कुछ सुपरमार्केट्स ने ये कहा है कि करंटली कोई भी शॉर्टेज नहीं है अंडों को लेकर या चिकन्स को लेकर एंड कस्टमर्स आर एनकरेज्ड टू बाय ओनली व्हाट दे नॉर्मली नीड रदर देन पैनिक बाइंग अक्सर ये होता है लोगों में और शायद अभी भी कई लोग ये कर रहे होंगे तो मांग की जा रही है कि अभी कोई शॉर्टेज नहीं है यू डोंट नीड टू डू पैनिक बाइंग

0: आज की दो बातें हैं, जाने से पहले कहते हैं कि लोग आपके खिलाफ तब हो जाते हैं जब आप उनके काबू में रहने से इनकार कर देते हैं।
1: वेरी इंटरेस्टिंग।
0: और दूसरी बात, ये बात कड़वी है लेकिन सच है कि झूठ बोलने से पाप लगता है। झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से मिर्ची।
1: अगेन वेरी ट्रू। तो उम्मीद है आज की दो बातें आपको याद रहेंगी और लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट आप जरूर करेंगे व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। कांग्रेचुलेशंस मोना। 4835 आपके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स है। होपफुली यू हैव गॉट योर टिकट्स ऑलरेडी राहत फतेह अली खान का, जो लेजेंडरी राहत फतेह अली खान साहब है, इनका शो देखने के लिए दिस सैटरडे। एंड रिमेंबर, टिकट्स तो आपने ले ही लिए हैं और साथ ही साथ जो मीट एंड ग्रीट पास है ये भी आपने जीत लिया है। सो हाउ टू गो अबाउट दिस फ्रॉम हियर, आपको डिटेल्स बाद में चलकर जरूर दिए जाएंगे। बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच आप सभी का साथ जो आपने हमें दिया। थैंक यू आप सभी के समय के लिए, आपके साथ के लिए। मुलाकात होगी आपसे अब कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आपका साथ देने के लिए हम आ जाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।

0: Streaming on Rover.
1: It's Double Points Week with Everyday Rewards. Boost, spend and scan your Everyday Rewards card at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas and Milk Run by Sunday 2nd of August to get 2x points on your total spend. See everydayrewards.co.nz for T's and C's.
2: Why switch to Tower?
3: Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2MONTHS. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
4: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
5: Danny didn't think he needed a DVS system.
6: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
5: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
6: Nah, only one room. It was just too noisy.
5: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
7: And then Mrs. Singh se maine pucha, "Enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho?" Boli, "Bas, mera focus hai."
8: "Achha,
7: batao, tuhanda focus, saada kuch nahi."
8: "Shh, Mrs. Singh."
9: "Are pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne."
10: Modern classic shaker style kitchens, Focus Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 09281 3050 or visit focuskitchens.co.in.
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. The Climate Change Commission warns emissions are not falling fast enough. Its latest report found reductions need to more than double over the next few years for the country to get back on track. It says current policy settings are not delivering at the pace needed. A new portable defibrillator could be the answer to saving more lives. St John is rolling out the LifeBeat Mini, weighing just under 700 grams and small enough to fit in a handbag. Spokesperson Simon Barnett says it's as powerful as a regular-sized device.
12: It's exactly the same, so there's no compromise. It's the same thing packaged smaller. Super easy and safe. You don't need to be trained to use it. It will only shock someone if they need to be shocked.
11: And overseas, the Iran war has so far cost the US more than 64 billion New Zealand dollars. Defence Secretary Pete Hegseth spoke in front of a committee to request a $1 trillion defence budget and was interrupted several times.
13: "Stop bombing our children in Iran and Palestine. This is illegal."
14: $1.5 trillion is what the president seeks and what we need to defend the country.
11: In sport, cricket first, and the Black Caps are ready to launch in the fifth and final one-dayer against the West Indies in Bridgetown. It got underway at 6:30 and the Black Caps are batting first. A short time ago, they were on 204 for 5 off 41 overs. And a rugby with shift 4, former All Blacks number 8 Murray Mexted has told the DSPN podcast he's been very impressed by Luke Jacobson, who was a surprise selection at number 7 for the 3 July test matches.
15: "And he's going to get better in that role, because he wasn't really big enough at the end of the day to compete for possession as a 6 or an 8.
0: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update, brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: The highs of 15, overnight temperature of 8. आज का forecast बताया जा रहा है कल cloudy day रहेगा, हल्की बारिश के साथ साथ. इस समय आप 10 degrees temperature महसूस कर पा रहे हैं. Sunset 5:29 पर बताया जा रहा है.
0: Non-stop Bollywood.
17: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
18: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai
0: My Time with Kashika.
16: Kia ora and namaskar and a very very good morning to you people. How are you? 22 July aa gayi, batao agle hafte ये महीना भी ख़त्म हो जाएगा. कैसे चुटकियों में हवा के साथ साथ ये समय एकदम बहता चला जाता है। वैसे सर्द रातें बढ़ा देती है सूखे पत्थों की भी कीमत, और वक्त वक्त की बात है कि समय सभी का आता है, और ये बात तो बिल्कुल सही है। चाहे वो सूखे पत्ते जो ज़मीन पर पड़े हैं, वो सर्दी की जो रातें होती हैं वो उसकी कीमत और भी बढ़ा देता है। कभी कभी सर्द हवाओं के साथ साथ वो पत्ते भी जब बहते हैं कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाते हैं, तो उनकी भी कीमत खाली ज़मीन पर ही नहीं रहती, उन्हें भी मौका मिलता है आगे बढ़ने का। ठीक इसी तरह आपको भी ज़िंदगी एक मौका ज़रूर देती है, जहां पर आपको कहती, ये ले तेरे सामने मैंने तेरी किस्मत खोल के रख दी, अब इसको आज़मा ले। और ये अगर आपने उस समय कर लिया तो समझ लीजिए आपने, मतलब आपके वारे न्यारे हो गए, तो चक दे फट्टे वाली बात हो जाती है। सो क्या आपके पास ऐसा मौका आया, क्या आपके पास ऐसा समय आया? वैसे ये समय हम खुद भी बनाते हैं, खुद की ढेर सारी मेहनत करके। अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, दिस इज काशिका और मैं कशिश फूड्स के सौजन्य से आपका साथ निभाने के लिए स्टूडियोज़ में हाजिर हो चुकी हूँ। कशिश फूड्स के कशिश गुप्ता का बर्थडे था कल, और इन्होंने बड़ा हिडन बर्थडे मनाने की कोशिश की, बट सोशल मीडिया की जय हो, इनका बर्थडे ज़रूर अच्छी तरह मनाया गया होगा। लेकिन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कशिश, एंड कशिश फूड्स के कोई भी अगर लोग इस समय हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें हमारी तरफ से आप विश कीजिएगा। थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए अवाना कॉस्मेटिक्स इज़ बैक। आपने इनके ऐड को तो सुना ही है, लेकिन अब इसके बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे थोड़ी देर बाद उनके एक्सपर्ट से बातें करके। बचाओ क्या? राहत फतेह अली खान आ रहे हैं हमारी सुपर सिटी में इसी सैटरडे के दिन। क्या आपने टिकट अभी तक खरीदी या नहीं खरीदी? चलिए चलिए जाइए जल्दी।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: सो एक्सपर्ट्स अड्डा में मेरे पास आ गए हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद नन अदर देन अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर से। आज नीलू तो नहीं है लेकिन हमारा साथ निभाने के लिए सुजय जो हैं वो साथ दे रहे हैं। एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। हाउ आर यू सुजय?
2: नमस्ते कशिका जी, कैसे हैं सब लिसनर्स को प्यार भरा नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच एंड अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, जहां 30 इयर्स ऑफ एक्सलेंस ट्रस्ट एंड रिजल्ट्स आप लेकर आए हैं एंड यहां पर आप बहुत ढेर सारे डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए प्लीज।
2: हाँ जी, थैंक यू। यस, 30 साल हमने क्लिनिकल एक्सीलेंस के पूरे किए हैं, एक अपने आप में एक माइलस्टोन है। तो अगर 30 साल पूरे किए हैं तो सर्टेनली वी वुड लाइक टू ऑफर समथिंग टू अवर बिलव्ड कस्टमर्स। तो बेसिकली इसमें, हाँ जी, तो कुछ 30th एनिवर्सरी स्पेशल ऑफर है जिसमें कि आप लेजर हेयर रिमूवल यू कैन गेट 50% ऑफ, अप टू 50% ऑफ है। सेकेंड, अगर आपको मान के चलिए कि आप रिजुविनेशन करना चाहते हैं, अपने फेस को और निखारना चाहते हैं, पॉलिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए पीको लेजर है। तो पीको लेजर इज बेसिकली यू बाय वन एंड गेट अनदर फॉर फ्री, ये है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी हैव टाइड अप विद शंकरा नेचुरल्स फ्रॉम द US। ये बेसिकली आयुर्वेदिक ब्रांड है, क्वाइट फेमस है, आप जाके इंस्टाग्राम उसका चेक कर सकते हैं, शंकरा नेचुरल्स। तो उसमें हम उनके सिग्नेचर फेशियल्स हैं, जैसे कि घी सूत्रा फेशियल है, कुमकुमादी ऑयल फेशियल्स है, दीज आर ऑल सिग्नेचर फेशियल्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हम ऑफर कर रहे हैं। एंड आइसिंग ऑन द केक, ये 30 इयर्स एनिवर्सरी ऑफर में अभयंगा, which is a full body massage, which is normally $149, we are offering it for $69, जो कि एक घंटे का मसाज है, full body massage, तो as part of the 30th annual celebration, ये हम offer कर रहे हैं। तो ये सब जो specials है, इससे लोग फायदा उठा सकते हैं, and they can always get in touch with us on www.avana.co.nz, yeah.
1: ओके, ग्रेट। तो भाई आपको मैं बता देती हूँ कि वाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर की क्लिनिक की शॉप्स हैं लेवल 1 सिल्विया पार्क शॉपिंग मॉल, और साथ साथ ये ऑर्मिस्टन मॉल में भी लोकेटेड हैं, और इनका वेबसाइट एड्रेस है avana.co.nz। और साथ साथ आप हम इनका नंबर दे सकते हैं, आप दे सकते हैं सुजय जी नंबर?
2: yeah, absolutely.

0: Yes. So it's 027-450-4483. Yeah, you can even call 0800-128-821.
1: Wow. क्या बात है. एंड अ वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन, जहां पर आप 30 इयर्स पूरे कर रहे हैं. 50% ऑफ ऑन लेजर हेयर रिमूवल है एंड 50% ऑफ ऑन सिलेक्टेड स्किन ट्रीटमेंट्स, जिसमें से पीकू लेजर, पीकू बोला आपने?
0: हाँ जी, पीको, PICO, पीको लेजर. ये बेसिकली रिजुविनेशन या एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन या व्हाटएवर रिजुविनेशन ऑफ द फेस, वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड है. तो बहुत
1: ओहो, क्या बात है. तो बस अपने चेहरे को और भी खिलाने के लिए आप पहुंच सकते हैं अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक, avana.co.nz की वेबसाइट पर जा सकते हैं. आपने किसी मसाज के बारे में बात किया था जो आप डिस्काउंट पर दे रहे हैं.
0: जी, विच इज अभियंग. अभियंग इज इन आयुर्वेदिक. अभियंग मींस फुल बॉडी मसाज रहता है, जैसे कि ऑयल के साथ करते हैं. तो नॉर्मली उसका प्राइस 149 है एक घंटे के लिए, बट एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन एक घंटे का जो मसाज है, इट इज जस्ट फॉर $69.
1: जस्ट फॉर 69. ओह यस, एब्सोल्युटली. इट्स वेरी वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट अवाना के जो पैक्स हैं या जो डील्स हैं, ये आप जरूर डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं. तो बिग थैंक यू टू यू सुजय. अगले हफ्ते आपसे अगली बार दोबारा बात होगी. थैंक यू सो मच वंस अगेन.
0: थैंक यू. बाय बाय.
2: माय टाइम विद कशिका.
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में. आप ही तो नहीं.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुनें।
1: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
2: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEERA. North Envale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
3: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
4: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स।
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी।
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
4: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।

0: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
1: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the Pacific, like Samoa from $319 one way, Tonga from $349, or Vanuatu from $355. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
3: Office shout out.
4: Hi, hi, hi, hi.
2: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
5: तो इससे पहले कि मैं ऑफिस शाउट आउट में आगे बढ़ने के बाद मैं ये गाना बजाऊं आपके लिए, तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ टीना आपको। आप वगार किचन से मुझे सुन रही हैं, माउंट रॉस्कल से, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अब भाई इस तरह से अगर आप ज्वाइन इन करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपके टेक्स्ट आते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं। बाय द वे आपका टेक्स्ट आया था, आपने कहा आपने राहत फ़तेह अली खान जी की 25th of July के दिन बता तो दिया ट्रस्ट अरीना में, लेकिन अगर हमें अब ये टिकट लेनी है तो कहाँ से लें? तो आप dryTickets.com के ज़रिए जाके टिकट खरीद सकते हैं। इसे पेश कर रहे हैं जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस एज वेल।

0: वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। और यही ट्रैक जो था इनको इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम दे गया, एंड थैंक्स टू सलमान खान जिन्होंने इनको इनको स्पॉट किया और इनको एक गाने का मौका दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द बर्थडे बॉय अरमान मलिक। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन टू मीट इन, यू नो, इन पर्सन ऑफ कोर्स। एंड इन्हें इतने हम्बल हैं, इतना प्यार दिखाते हैं और सबको याद रखते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। आई थिंक मे बी इट्स हिज अपब्रिंगिंग। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू अरमान मलिक फ्रॉम द टीम ऑफ हम। वी लव यू सो मच। क्योंकि आप जब भी न्यूजीलैंड आते हैं आप मेक श्योर करते हैं दैट आप हमारे ऑफिस में या हमारे स्टूडियो में ज़रूर आते हैं।
1: The beat of Bollywood. World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Better.
1: Eat better, live better. And ऐसा कितनी बार होता है जब कोई खबर आती है तो हम जरूर कोशिश करते हैं आप तक उसे पहुँचाएं. तो डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन इन्होंने रिवील किया है ओपनिंग डेट फॉर अ रिप्लेसमेंट सस्पेंशन ब्रिज जो एक 189 मीटर्स अक्रॉस द हुकर रिवर है. अब ये जो है ये Auraki Mount Cook National Park जो है वहाँ पर it's going to open to public on 28th of July और उसके बाद एक प्राइवेट इवेंट वहाँ पे किया जाएगा. ये ट्रैक जो है हुकर वैली का इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डे हाइक्स इन द कंट्री जहाँ थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट जो है विजिट करने के लिए आते हैं. वहाँ एक ब्रिज बना है जिसकी कॉस्ट है 4,085,000,000 और लगभग एस्टिमेटेड एट 167 मिलियन का रेवेन्यू ये लेकर आने वाली है द मैकेंजी डिस्ट्रिक्ट ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. ये नया ब्रिज जो है रिप्लेस करेगा छोटे ब्रिज को जो कि क्लोज कर दिया था लास्ट अप्रैल में रेनफॉल और स्टॉर्म की वजह से. अब ये Auraki Mount Cook डिस्ट्रिक्ट के जो ऑपरेशन मैनेजर हैं उन्होंने बताया कि लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑफ न्यूजीलैंड जो है ये होने वाला है. इट्स अ फैंटास्टिक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्किल और एक माइलस्टोन जैसा ये बन चुका है. नाउ द यूनिक थिंग अबाउट दिस इज दैट पीपल विल हैव टू क्रॉस दिस एंड दैट वुड बी द टाइम जहाँ पे द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑफ न्यूजीलैंड द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पैन फुट ब्रिज ऑफ एनी कंट्री भी कह सकते हैं. क्या कमाल है इसकी अपॉर्चुनिटी डिज़ाइन करने के लिए जब उनको मौका मिला इनकी टीम को मौका मिला तो उन्होंने कहा कि इट वॉज इंस्पायरिंग क्योंकि ऐसे जब आप ब्रिज बनाने लगते हैं कुछ आइसी एरियाज में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में इट इज़ समथिंग एंड देन जब ये अब ये लोगों के लिए खुलेगा देन सी द यू नो क्या कह सकते हैं अचीवमेंट दैट वन हैज़ गेन्ड. सो यस आई एम टोटली विद यू. ओके नाउ आई एम विद यू फॉर योर ड्रीम एज वेल. क्या ड्रीम किया भाई कुछ तो बताओ.
2: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: For 30 years, Avana Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
5: G'day Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
6: Sorry about that.
5: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
7: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: Dream Diary में बड़ा स्ट्रेंज आपका कॉल आया और आपने मुझसे कहा कि आपने एक अलग सा ड्रीम किया है कि यू आर बीइंग चेस्ड. अब बीइंग चेस्ड अबाउट वॉट हाउ एंड इसके बाद आपने फ़ोन रख दिया कि आपका टाइम हो रहा है इसलिए आप अभी फटाफट मुझे बता दीजिए. तो वट एवर आई कुड गैदर राइट नाउ इज़ दैट कुछ इश्यूज़ हैं कुछ सिचुएशंस हैं that you are trying to avoid. अब ये fear है confront करने के लिए किसी problem को या किसी responsibility को जिसको you know एक urgent आपका attention चाहिए. लेकिन running away from an issue या फिर कह सकते हैं आप you know भागने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के no matter how much you try to ignore that, वो चीज़ आपके पास ज़रूर पलट के आती है. आपको इस बात की एंग्जाइटी होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग फियर्स, इनसिक्योरिटी होती है. ये सिचुएशन आपकी कभी कभी इमोशनली डेंजरस भी हो सकती है और ये स्ट्रेस के लिए भी बहुत बहुत हानिकारक है, स्ट्रेस के साथ मिलकर. तो ये फियर है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसके बाद. आप उस बात से बहुत ज़्यादा डरते हैं. एंड अवॉइड कीजिए आप एम्बैरेसमेंट एट ऑल कॉस्ट्स. याद रहे कि ये ड्रीम्स जो हैं आप देख रहे हैं, आप जब ज़िंदगी में सोकर उठते हैं, जब आपके लिए लाइफ में सिचुएशंस जो होती हैं उसमें कभी कभी ऐसी फ्रेंड्स आपको पता होता है इन्हें आप अवॉइड करना चाहते हैं, कुछ फैमिली, कुछ फ्रेंड्स, कुछ कॉलीग्स को. शायद अगर आप अपनी ड्रीम में इस तरह का एक यू नो इंडिकेशन देखते हैं तो मेक श्योर दैट आप एक, वो तो ड्रीम है लेकिन अगर आप पर्सनल लाइफ में आपको पता है कि सो एंड सो पर्सन आपको इफेक्ट कर रहा है, आपको उससे दूर रहना है या कुछ करना है, या कोई सिचुएशन ऐसी है जहां आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके हाथ ऊपर हो गए हैं, उस समय आप क्या करेंगे? ठीक उसी समय आप कहते हैं कि चलो भागो, है ना. तो आप ये भागते हैं तो आपके पीछे वो लगता है आपको कोई भाग रहा है. सो इंश्योर दैट आप अपनी सैनिटी मेंटेन करें. एंड डेफिनेटली यही कह सकती हूँ दैट ये सिचुएशंस जो होती हैं, ये इश्यूज जो होते हैं, ये जो सिचुएशंस जो होती हैं विच यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, वो आपको बार बार यू नो वापस लौट कर आती हैं. मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम, इट कुड बी पॉसिबल, है ना. तो चलो ये तो हो गया, लेकिन आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है. सिक्स वर्ड स्टोरी कोई अगर आपके पास है तो ज़रूर बताइए. अगले घंटे पर मैं आपको मौका दूंगी आपकी सिक्स वर्ड स्टोरी को बताना.

मैं एक ऐसे फिल्म की तरफ आपको लेके चलती हूँ थ्रोबैक में, जहाँ पे ओपनिंग क्रेडिट्स जो थे वहाँ पे एक मोंटाज ऑफ लविंग कपल्स था। अब ये जो कपल्स थे उनमें कपल था एक यश चोपड़ा और उनकी वाइफ लेट यश चोपड़ा जी और पैमेला चोपड़ा, उसके बाद यश चोपड़ा, यश जौहर, हीरू जौहर एंड यू नो द सेवंथ कपल। अगर आप कभी ध्यान से देखें तो आदित्य चोपड़ा विद हिज देन वाइफ पायल चोपड़ा ये भी उसमें थे। ऑफकोर्स वी नो दैट आदित्य चोपड़ा इज़ नाउ मैरिड टू रानी मुखर्जी, लेकिन पायल चोपड़ा जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी वो उसमें सेवंथ कपल आप देखेंगे तो आपको वो ज़रूर वो नज़र आएंगे। तो चलिए इसी फिल्म का ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: वैसे थैंक यू सो मच, आपका कॉल आया और आपने मुझे याद दिलाया आज इंडिया सेलिब्रेट कर रही है अपना इन नेशनल फ्लैग डे यानी कि तिरंगा अडॉप्शन डे जो कि 22 जुलाई के दिन होता है और दिस कोमेमोरेट्स द हिस्टोरिक डे ऑफ 1947 जहां पे ये मॉडर्न ट्राइकलर को कंट्री का इंडिपेंडेंट नेशनल फ्लैग बनाया गया था. तो ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इसका एक डिस्प्ले की गाइडलाइंस भी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन दिस सॉन्ग गोज राइट नाउ फॉर दिस.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 15 overnight, temperature of 8 is going to be the forecast for today. 5:29 पर सनसेट बताया जा रहा है और ये क्लाउडी डे रहेगा, कुछ आइसोलेटेड शावर्स के साथ सदलीज जो हैं धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी. इट फील्स लाइक 14 डिग्रीज राइट नाउ.

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल, हाउ आर यू। और प्रोग्राम की जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपसे कहा था कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि कुछ भी हो, छोटी मोटी भी चीज़ हो, वो कितने मायने रखती है, क्योंकि हर किसी का एक समय ज़रूर आता है। जैसे ठंड की रातें जो बढ़ती चली जाती हैं तो उसमें सूखे पत्तों की कीमत भी बढ़ती चली जाती है। वक्त वक्त की बात है और ये समय सबका आ जाता है, है कि नहीं। अब इसे आप किसी भी अंदाज से ले लें कि ये सूखे पत्ते क्या कर लेते हैं। सूखे पत्ते वैसे उस ओस भरी जो गार्डन होती है, घास होती है, उसको कवर भी कर देते हैं। कोई ठंड में ठिठुर रहा होता है तो वो जो सूखे पत्ते होते हैं वो उसको कवर कर देते हैं। कभी कभी वो पक्षी जो होते हैं या वो जानवर जिनको थोड़ी सी पनाह चाहिए होती है, कुछ अपने आप को ढकने के लिए वक्त चाहिए होता है, तो वो भी सूखे पत्ते काम कर देते हैं। तो वो काम कभी भी आ सकते हैं। तो यानी कि समय कभी भी किसी के लिए भी आ सकता है। तो ये मत सोचिए कि आपका समय नहीं आएगा, आपका समय ज़रूर आएगा। और ये बात आपको याद दिलाते हुए मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक आ जाती हूँ स्टूडियोज में कशिश फूस के सौजन्य से। 10 से 12 बजे के दरमियान मंडे टू फ्राइडे आपके साथ ये मैं बातचीत करती हूँ। हम पवार का दिन है, आज आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका बर्थडे आप आज मना रहे हैं तो डेफिनेटली आप अरमान मलिक, जो एक बॉलीवुड के कमाल के सिंगर हैं, अ वेरी हम्बल गाय, इनके साथ आप अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैनिफेस्टेशन जो है वो आज भी लोगों को फैसिनेट करता है। हमारे थॉट्स, हमारे इंटेंशंस, किस तरह हम अपने गोल्स को विजुलाइज करते हैं, ओके, किस तरह हम उन्हें लिखते हैं, या फिर लगता है कि जब तक हम ये नहीं लिखेंगे तो कुछ मूव नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे।
1: बचाओ क्या?
2: बच्चों को यहाँ पर

0: पे शिद्दत के साथ करते हैं.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: I know that. आपको पता है ये गाना आमिर खान ने गाया है, राइट? लेकिन आमिर खान के साथ साथ उस समय, क्योंकि सारेगामा लिटिल चैंप्स में आ रहे थे अरमान मलिक, जो उनके आज उनका बर्थडे है, तो वो भी इस गाने में है.
3: चिकी चक्का चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकु रे चकला कभी को चिको सिली सिली सिली गो भगड़ दुम चकला दुम चिकी चक्का चो.

0: Nutritious Foods. Eat better, live better.
1: तो जब बात कर रहे थे अबाउट मैनिफेस्टेशन, तो ऐसे कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देते हैं अगर उसको रियलिटी में बदलना होता है. समटाइम्स यू वांट द रिज़ल्ट एंड आपको पता है ये चेंज इज़ रिक्वायर्ड. सो एक इजी चीज़ है टू ड्रीम अबाउट अ जॉब, अ हेल्थियर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पीसफुल लाइफ, बट हर मीनिंगफुल डिज़ायर आपका पूरा नहीं होता. और कभी कभी आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो कुछ सिचुएशंस की वजह से शायद एक चैलेंज भी बन जाता है. और ये मैनिफेस्टेशंस बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल चीज़ें आपके लिए बन जाते हैं. एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं कहना चाहती हूँ, समटाइम्स सीक्रेटली हम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. वी टेल आवरसेल्व्स कि अरे इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, इतना ज़्यादा होप मत बढ़ाओ, और हो सकता है इसके बाद आपको चोट लग जाए. बट कॉन्स्टेंटली प्रिपेयरिंग फॉर डिसअपॉइंटमेंट, एक्चुअली उससे क्या हो सकता है, इट कैन मेक यू मोर हेजिटेंट टू टेक रिस्क. तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको अप्लाई करनी चाहिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहिए. होप इज़ नॉट बींग फुलिश, इट्स ऑफन द फर्स्ट स्टेप जब आप एक बहादुरी का स्टेप उठाते हैं. आप एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन इज मोस्टली मिसअंडरस्टूड कह सकती हूँ, जहाँ पे आपको कंट्रोल करना एवरी डिटेल ऑफ आपकी ज़िंदगी किस तरह से अनफोल्ड होने वाली है. कभी भी एक परफेक्टली प्लान स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती ज़िंदगी हमारी. और जब हम एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट आउटकम से ऑब्सेस हो जाते हैं, हमें लगता है हम बाकी की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भूल जाते हैं कि ये भी आस पास हैं, तो एक ये क्लोज डोर अच्छा नहीं रहता. और हो सकता है आपकी जो ड्रीम है वो पॉसिबल ही ना हो. कभी कभी एक रीडायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अपने डिज़ायर्स को जब आप किसी इंटेंशंस के साथ होल्ड करते हैं और आप ओपन रहते हैं फॉर डिफरेंट अदर पाथ्स, तब वो स्पेस होती है आपकी ग्रोथ के लिए. कभी कभी आप बहुत टाइम लेते हैं कुछ चीज़ को विजुलाइज करने के लिए, अपने सक्सेस को विजुलाइज करने के लिए. बट ड्यू टू टेल योर सेल्फ के वॉट वर यू डूइंग पूरे दिन भर में, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली इस आइडिया में रहता है, आई एम नॉट गुड इनफ, ये यू नो पीपल लाइक मी कभी बढ़ नहीं सकते हैं, या प्रॉब्ली मैं तो फेल ही होने वाली हूँ या होने वाला हूँ. इस तरह के

0: बिलीफ आपके कॉन्फिडेंस और आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. मैनिफेस्टेशन जो होता है इज नॉट अबाउट प्रिटेंडिंग एवरी नेगेटिव थॉट जो कि आपको लगता है रात भर में गायब हो जाते हैं. इट ग्रेजुअली, जैसे कहते हैं ना, इट ग्रोज विद इन यू. ये एक सेल्फ डिफीट के जो बिलीफ्स होते हैं उनको, उनके थॉट्स को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करता है, सपोर्ट देने की कोशिश करता है, आपको खुद ये मैनिफेस्टेशन एम्पावर करने की कोशिश करता है. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो मैनिफेस्टेशन के ब्लॉकेज के बारे में बात करती हूँ. हम इस परफेक्ट साइन, परफेक्ट टाइम का या परफेक्ट फीलिंग का वेट करते हैं कि चलो अब शुरू करते हैं. बट कभी कभी ये ड्रीम्स अपने आप ही मूव होने लग जाती हैं जब हम छोटे छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स भी लेते हैं. तो कहीं कहीं आप एप्लीकेशन भेजते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, वो स्किल्स सीखते हैं. और जब आप वो स्किल सीखने की कोशिश करते हैं तो आप वो हेल्प लेने की कोशिश करते हैं. एक्शंस इमीडिएट क्या एकदम से रिजल्ट आपको दे ही नहीं सकते, बट एक मोमेंटम ज़रूर आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं. और ये मोमेंटम हमेशा एक पॉसिबिलिटी में बदल सकते हैं. तो इस बात के लिए एक थम्स अप. यस, आई एम श्योर यू आर विद मी. सिक्स वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट.
1: ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहां पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप तो
3: आए आए बताओगे यार.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Mecca's weekly deals are back. That means more of your favorites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their three Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
9: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
10: What if your next holiday wasn't just a holiday,
1: but the adventure everyone talks about?
10: Imagine chasing waterfalls,
1: wandering lush rice terraces,
10: catching unforgettable sunsets,
1: and relaxing at iconic beach clubs.
10: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
1: discovering incredible temples,
10: tasting world-famous street food.
1: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
11: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88-600.
12: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six-word story.
0: So, thank you so much. आपने मुझे सिक्स वर्ड की स्टोरी भेजी है और आपने लिखे भेजा, ब्लेसिंग्स ऑफन कम इन स्ट्रेंज पैकेजेस. ब्लेसिंग्स ऑफन कम इन स्ट्रेंज पैकेजेस, विच इज़ सो सो सो ट्रू. आई एम टोटली विद यू ऑन दिस, जहाँ पे कह सकते हैं ब्लेसिंग्स कभी भी आ सकते हैं, किसी भी पैकेज में बनकर आपके लिए किसी भी तरीके से आ सकते हैं। लेकिन इस समय के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ आपको अब लेके जाती हूँ, जहाँ गरबा नाइट विद राज गढ़वी जो है ये होने वाला है 1 अगस्त के दिन महात्मा गांधी सेंटर में। टिकट्स जल्दी बिक रहे हैं, eventstickets.co.nz के जरिए आप टिकट खरीद सकते हैं और स्वप्निल शाह से बातें भी कर सकते हैं 02243947 36 के जरिए। और एक डबल पास जीतना चाहते हैं आप अगर, तो आपको RG लिखना है, यानी कि राज गढ़वी का शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि ये आपके लिए सेंसेशनल लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो RG लिखे 5599 पे, आपका नाम हम डबल पास के लिए बिल्कुल ऐड कर देंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
12: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

लेकिन हम तो बताएंगे कि बोल दो ना जरा। अरे हम बता देते हैं, अरमान मलिक का बर्थडे है और हम बड़े प्यार से इसे सेलिब्रेट करें, वन ऑफ द क्यूटेस्ट बॉलीवुड सिंगर्स। अच्छा चलिए, कम्युनिटी में क्या आपकी खास हो रहा है जरूर हमें बताएं, buzz@hamfm.com पे आप हमें ईमेल करें अगर आपका कम्युनिटी इवेंट बिल्कुल फ्री है। न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको एक कम्युनिटी फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट में इनवाइट कर रहे हैं 22nd and 23rd of August के दिन एट द बर्किनहेड स्काउट्स हॉल, और आपके स्किल्स पार्टिसिपेट करने के हैं तो रजिस्टर कीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए NZCA प्रेसिडेंट पंकज मोंगा से संपर्क करें 021-090-85067। फीजी गिरमिट फाउंडेशन एंड फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशन आपके लिए हेल्थ व्हील वेलबींग एक्सपो लेकर आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल फ्री इवेंट है। A1 इवेंट सेंटर में ये होने वाला है एट पापाटोईटोई 26th of July के दिन, संडे के दिन सुबह 10 से 3 बजे तक, जहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, BP, डायबिटीज़, किडनी, ECG, आई टेस्ट, इंफॉर्मेशन एंड आपके लिए एजुकेशन करियर के लिए गाइडेंस भी मिलने वाली है। MIT ऑकलैंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, न्यूजीलैंड पुलिस रिक्रूटमेंट, और साथ साथ इन्फॉर्मेशन आपको तरह तरह के लाइक एल्डर केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, किडनी, हार्ट केयर, डाइटिशियन एडवाइस और फ्री फन फॉर द होल फैमिली। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या होगा बच्चों का, तो किड्स एक्टिविटीज़, फेस पेंटिंग, लाइट रिफ्रेशमेंट्स, हैम्पर्स, गिव अवेज, बहुत कुछ होने वाला है। तो यहाँ आपको पहुँचना ही पहुँचना है, मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए भी आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है।

0: अनगुद।
1: वैसे एक बात तो है कि स्काई सिटी जो है इट्स रीच्ड इट्स कंडीशनल डील जहां पे they are going to sell the Grand Hotel जो located है between Central Auckland's Albert Street and Federal Street. तो ये information जो आई है अभी अभी मैंने कहा आपके साथ ज़रूर share करती रहती हूँ. और ये एक overseas buyer हैं who's out of New Zealand. अब ये किसके पास गया है क्या गया है okay let me try and see if I can find that out. तो Mainland Capital and Russell Property Group ने confirm किया ये इन्होंने खरीद लिया. एक joint statement इन्होंने किया है and of course इसमें कौन सा ब्रांड आने वाला है ये अभी तक हमें नहीं पता बट आई थॉट डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ. चलो ये तो शेयर कर ही दिया है लेकिन कुछ और शेयर करना था और वो था श्री राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ 1st and 2nd August के दिन होने वाला है. सुबह 7 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा सैटरडे के दिन और 10 बजे ऑन द संडे. महाप्रसाद हर रोज़ आयोजित भी किया जाने वाला है. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट श्री राम लीला आपके लिए 8 अगस्त के दिन लेकर आ रहे हैं तो ज़रूर इसका हिस्सा आप भी बनना चाहेंगे. हाँ रेस्क्यू मी रिसाइकल मी क्या सोचा क्या ला रहे हैं कुछ आइडिया दो ना.
0: क्या

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना चाइल्ड केयर, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं।
2: गो बनानास चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
1: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
2: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: Please use your imagination for the following ad.
4: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by.
3: Imagine winning $35 million this Wednesday. Play in store or online.
5: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
6: Dash!

रेस्क्यू मी, रिसाइकल मी, थैंक यू, थैंक यू सुनीति, आपने मुझे कॉल करके बता दिया। तो आप क्या करते हैं, आप स्टिच करती हैं स्क्रैप क्लोथ्स जो हैं और इनको रीयूज करती हैं ग्रोसरी बैग्स और थ्रो पिलोस, या फिर कभी कभी एक कोजी सी बेडिंग का इस्तेमाल करती हैं फॉर पेट्स। तो ये आप कभी कभी एनिमल शेल्टर में जाकर दे आती हैं अगर आपको लगता है कि ये पेट्स के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मोस्टली आप रीयूज़ कर लेती हैं जैसे कि जीन्स टाइप के मटेरियल होते हैं उनको ग्रोसरी बैग्स में। ऑफ कोर्स आजकल तो देखिए प्लास्टिक के बैग्स अलाउड ही नहीं है, और जब हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं ग्रोसरी बैग्स के लिए, ग्रोसरी लेने के लिए या सामान खरीदने के लिए, तो वो बैग्स देते हैं, उससे अच्छे खुद के बैग्स ही लेके जाओ। वैसे मेरे पास घर पर नहीं, मेरी गाड़ी में हमेशा एक स्टैंड बाय बैग ज़रूर रहता है, क्योंकि आई एम अ शॉपाहॉलिक और मुझे जब शॉपिंग करनी होती है तो मैं हाथों में कैरी नहीं करती। आई प्रेफर मैं वो बैग वहाँ से ना खरीदूँ, मैं जो स्टोर होता है आई प्रेफर मैं खुद का बैग डेफिनेटली लेके जाऊँ। तो यस, कभी कभी किसी ना किसी के लिए ये बातें ज़रूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातें और भी बहुत ज़रूरी होती हैं, और उन बातों में आते हैं हमारे पॉडकास्ट जो कभी कभी बैरियर ब्रेक कर देते हैं। तो अगर आपने अभी तक शनि लाल का एक एपिसोड नहीं सुना है, LGBTQ+ rights, racism, representation and search of equality में ड्राइव शो ने बहुत खूबसूरती के साथ इनके साथ बात की है। 5599 पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, हाँ, यू नो, पता लगाने के लिए। एक जो मिथ्स होती हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, वर्क डिस्क्रिमिनेशन, मिस इन्फॉर्मेशन होती है सराउंडिंग ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी एंड प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, इसके बारे में भी इन्होंने बात की है। Definitely you'd like to know. 5599 पे आप ड्राइव लिखकर जरूर भेजें।

सो थ्रोबैक मैं आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक में छोड़े जाती हूँ आशा भोसले जी की आवाज़ में, और इसी के साथ साथ कहती हूँ कि भाई कीजिए स्वीकार, काशिका का नमस्कार, आज का दिन कहलाता है हम्प बार या बुधवार, जो भी इसे कहना चाहे। मेरी 6 वर्ड की स्टोरी जो आपने भेजी थी वो मैंने हमारे हम के स्टोरी में ऐड कर दी है, तो अगर आप कभी भी कोई स्टोरी अपनी भेजते हैं तो प्लीज़ मुझे अपने नाम के साथ ही भेजिएगा, एंड इट्ल बी नाइस कि मैं आपको टैग कर सकूं या आपसे यू नो हेलो हाय कर सकूं। ठीक है, चलिए मैं अभी के लिए चलती हूं, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूं। झूम तो है मस्त मौला हमारे अपने आ रहे हैं नन अदर देन केतन द सिंगर, ऑफकोर्स इनका गाना तो आपने सुन ही लिया होगा। तो चलिए अभी चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात करती हूँ। दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज, टेक केयर, बाय बाय।